सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 30 दिवसीय योग शिविर में हम हर बार हर रोज एक नए शब्द के साथ एक नए आसन को लेकर के आ रहे हैं और हम सभी मिल करके साथ में कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज भी एक नया शब्द लेकर के आए हैं एक नए आसन के साथ में, जो कि है प्रशस्त। प्रशस्त चक्की आसन। प्रशस्त का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है उपासना, जीतना, किसी की सराहना करना, लेकिन हम योग की भाषा में अगर जाएं तो हमें योग से प्रशस्त की उपासना और सराहना करना हमें बहुत सारे ऐसे योग आसन के साथ में जोड़ता है। तो आज हम जिस शब्द के साथ प्रशस्त को जोड़ने जा रही हैं वो है चक्की आसन, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को सुव्यवस्थित और संचालन करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रशस्त, जैसा कि बताया कि हम चक्की आसन के साथ साथ हम कई ऐसे आसनों की उपाधि में हम प्रशस्त को लगा सकते हैं, जैसे वृक्षासन, मंडूक आसन, और जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं चक्रासन में। तो ऐसे ही नए नए आसन और नए नए प्राणायामों के साथ जोड़ करके प्रशस्त की एक नई प्रस्तुति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशस्त है क्या। प्रशस्त का शाब्दिक अर्थ जैसा बताया कि एक संस्कृत शब्द है प्रशंसा करना। एक विशेष शेखालेखों से भी अधिक जानकारी की गई है और उसमें भी इस शब्द का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। आसन के साथ प्राणायाम उपसर्ग जब हम इसे यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम आसन प्राणायाम को तो कर लेते हैं लेकिन हम उनके बारे में उचित जानकारी नहीं ले पाते हैं। प्रशस्त उपासना, प्रशंसा करना और एक नए आसन के साथ में एक नए शब्द की उत्पत्ति को जोड़ना या एक नया रूप है। चक्की चलाना, जिस तरीके से हमने आपको बताने जाएंगे आज हम आपको, क्योंकि जब हम किसी आसन किसी प्राणायाम को करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नए रूप के साथ साथ हम एक नई ओर चले जा रहे हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न एक्सरसाइजेस, विभिन्न प्राणायाम, विभिन्न कसरतें हर एक के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ को कहा जा सकता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो हम कई बार कई आसन प्राणायाम कसरत हम नहीं करते हैं और विशेषज्ञ भी हमें यही सलाह देते हैं कि हम उन्हें ना करवाएं या ना करने दें। लेकिन चक्की आसन अपने आप में एक ऐसा आसन है जो कि सभी के लिए और सभी वर्ग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्की आसन को हम कह सकते हैं बटरफ्लाई इसका दूसरा नाम, क्योंकि ये उसी प्रारूप में उसी आकार में होता है। प्रशस्त नाम क्यों जोड़ा गया चक्की आसन के लिए, क्योंकि यह अपने आप में एक प्रशंसा का विषय है, एक उपासना का विषय है। वो इसलिए क्योंकि यदि जब हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं उपासना करने के लिए तो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी वैर भाव और अपने मन को शुद्ध करते हुए हम उपासना और उनके साथ में बैठ करके हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही चक्की आसन के आगे प्रशस्त नाम को जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि चक्की आसन एक संपूर्ण आसन है। तो आइए हम सभी मिलकर के अब करने जा रहे हैं चक्की आसन। चक्की आसन को बटरफ्लाई भी कहा गया है, यानी कि जैसे बटरफ्लाई इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का जैसे तितली आसन। तितली के आकार में हमें बैठना है। किस तरीके से, क्या विधि है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस किस को यह आसन किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, हम ये सब जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, यानी कि

हम किसी स्वच्छ वातावरण में और शांत वातावरण में एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण होता है आसन, प्राणायाम, कसरत के लिए कि हमें उचित वातावरण मिले और हम अपने मन को शांत कर सकें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाहरी ऐसी गतिविधियों के कारण से मन चंचल हो उठता है। कई बार ये भी देखा गया है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है बाह्य गतिविधियों को देखते हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाह्य गतिविधियाँ हमारे मन को विचलित कैसे करेंगी, हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, हमारा तो आसन आरंभ है, लेकिन मन हमारा नहीं लग रहा है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हम 1 से 1.5 मिनट के लिए एकाग्रचित हो जाएंगे ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। कहा जाता है, और आप में से सभी लोगों ने यह एक लाइन सुनी होगी कि मन इतनी तीव्र गति से दौड़ता है जो कि एक घोड़े के वेग से भी बहुत ही तीव्र होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसलिए मन को एकाग्र करना सबसे प्रथम और पहली सीढ़ी है आसन प्राणायाम की। तो आइए हम सभी मिलकर के 1 से 1.5 मिनट तक पहले मन की गति को स्थिर करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आज का आसन, आज का प्राणायाम, प्रशस्त्र चक्की आसन। तो हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे कुछ इस तरह। ओम।

श्वास भरने के बाद में जब श्वास खाली होती है तो उस श्वास को थोड़ी तीव्र गति से या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंबी रफ्तार से हम श्वास को छोड़ेंगे। उसका कारण सिर्फ यही है कि श्वास जब तक टूटे हमें ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि अंत तक ला करके ही रहनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम ओम को एक लंबी स्वर में लेकर के जाते हैं तो हमारी नस नाड़ियों में, हमारी श्वास की गतियों में बहुत ही आराम मिलता है। तो आइए हम सीधे चलते हैं अब आसन की ओर। आसन के लिए हमारा मन बिल्कुल एकाग्रचित हो चुका है। साफ चद्दर या हम योगा मैट बिछा लेंगे। उसके बाद में हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए मुद्रा आसन करेंगे। हम अपनी अनामिका उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के नीचे, यानी कि अनामिका उंगली और अंगूठा ऊपर, और एक से दो बार ओम का उच्चारण करते हुए मन की एकाग्र शक्ति को बढ़ाते हुए चक्की आसन शुरू करते हैं। पद्मासन की स्थिति में बैठने के बाद में दोनों पैर को, यानी दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ लाना है, जिस तरीके से एक तितली का आकार होता है। उसके बाद में हम अपने हाथों से, यानी कि हम अपने हाथों की हथेली से पैर के पंजों को पकड़ लेंगे और अंगूठा ऊपर, हाथ की हथेलियां नीचे। घुटने के बल और जांघों के बल से हम अपने पैर को चलाएंगे और हाथ से पैर के पंजों को पकड़े रहेंगे। घुटना और जांघ हमारे दोनों इस तरीके से चलेंगे जैसे एक तितली अपने पंख खोलती है और बंद करती है। श्वास लेंगे, मध्यम गति से आती जाती रहेगी और ओम का उच्चारण यदि आप चाहें अपने मन को एकाग्र करने के लिए तो आंखें बंद करके ओम का उच्चारण या भवरी का गुंजन कुछ ऐसे चलता रहेगा। ये है भवरे का गुंजन। यदि ओम का उच्चारण आप नहीं करना चाहते हैं तो आप भवरे का गुंजन इस तरीके से करें और चक्की आसन को कम से कम ढाई बार, यानी कि ढाई बार हम लोगों की योग भाषा में कहा जाता है ढाई सेत। ढाई सेत का मतलब होता है कि आप इसको एक से ढाई मिनट तक आप इसको स्टार्टिंग की प्रारंभिक अवस्था में हम इसको कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में एक से ढाई मिनट तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नए आसन, नए प्राणायामों को हम अभी सीखते और समझते होते हैं। जब हम सीखते और समझते हैं तो हमें कोई भी प्राणायाम करने के लिए उचित समय का उपयोग करना चाहिए। अब हम सीधे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। दोनों पैर आगे की तरफ खोल लें और हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए घुटना चलाते हुए, यानी पैर दोनों बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ अप के घुटनों पर और घुटना अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करके इस तरीके से अंतिम स्थिति पर आएंगे, यानी चार से पांच बार करके हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में आ जाने के बाद में हम देखेंगे कि हमें इसका पूर्ण लाभ तुरंत ही मिलने लगेगा। आइए अब हम चक्की आसन के फायदे जानते हैं। चक्की आसन के वैसे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। कमर के लिए, हिप्स के लिए, जांघ के लिए, घुटनों के लिए सबसे ज्यादा, और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए तो ये सर्वप्रथम एक औषधि का काम करता है। आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक की दवाइयों में असर जो है, सभी लोग कहते हैं कि अगर हम उस दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो फायदा अगर थोड़ी देर से करती है लेकिन वह नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। हमारी योग की भाषा में भी यही कहा गया है कि आप अगर योग से जुड़े हैं तो योग आपको फायदा अगर नहीं होगा तो नुकसान की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। चक्की आसन आप सभी वर्ग के लोगों के लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सभी वर्ग के लोग इसे बहुत ही आराम से और इसका जो लाभ है वो पर्याप्त रूप में पा सकते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि बताया कि रीढ़ की हड्डी के लिए, दूसरा घुटनों के लिए, तीसरा जांघों के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और चाहते हैं कि हम स्लिम ट्रिम, आजकल जैसा कि ट्रेंड है कि सभी लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज करें हम थोड़े पतले हो जाएं,
तो मात्र एक चक्की आसन ऐसा है कि आपकी बेली फैट यानी कि पेट के जो ऊपरी हिस्से को होता है निचले हिस्से को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। मात्र एक चक्की आसन ऐसा है जो कि आपकी पेट, रीढ़ की हड्डी, जांग, घुटने, पैर के तलवे, हाथ की हथेलियां, घुटने, कंधे, इन सभी के लिए एकमात्र है चक्की आसन जो अपने में पर्याप्त है, तो सभी को करना चाहिए। आइए हम कुछ बता देते हैं सावधानियां। सर्वप्रथम सावधानियां ये हैं कि जिन्हें रीढ़ की हड्डी में पहले से ही कुछ दर्द हो तो यह आसन आराम से करें, यानी कि आप सबसे पहले 30 सेकंड तक करें। 30 सेकंड में अगर आपको कोई भी इसका दुष्परिणाम लग रहा है, यानी कि आसन करने के बाद में पूरे दिन में आपको अगर उसमें दर्द हो रहा है तो अगले दिन से आप थोड़ा सा इसको रोक दें। रीढ़ की हड्डी में जिन्हें दर्द है वो थोड़ा सा आराम करके करेंगे। जिन्होंने घुटने में दर्द है उन्हें घुटने मोड़ने की बजाय सीधे रख करके और 2.5 मिनट की जगह पर 1 से 1.5 मिनट से शुरू करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द भी इससे जाता रहेगा। तीसरी सावधानी ये है कि जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना है, क्योंकि यह आसन बहुत ही प्रेशर देकर के करना होता है, तो महिलाएं इसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और इसे इस आसन को ना करें। चौथी व महत्वपूर्ण स्थिति होती है सभी बालिकाओं और महिलाओं के लिए, जो कि है पीरियड की अवस्था। उसमें भी इस आसन को ना करें, कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और उसके बाद पुनः हम इस आसन को कर सकते हैं। बाकी यह हर वर्ग के लिए हर समय आप जिस भी समय लगे कि आपने यह आसन करना है, बस खाना खाने के 5-6 घंटे पूर्व यह आसन आपको करना है। खाना खाने के बाद में यह आसन नहीं करना है, चाहे वो शाम को कर सकते हैं चाहे आप इसे प्रातःकालीन कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रशस्त चक्की आसन, जो कि अपने में महत्वपूर्ण होते हुए संपूर्ण शरीर के लिए आवश्यक है और संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सहायक सिद्ध है। तो इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द, एक नए आसन की ओर। हर बार की तरीके से 30 दिवसीय जो कि योग शिविर है उसमें हम एक नए नए शब्द के साथ आते हैं, तो आप भी जुड़िए एक नए शब्द, एक नए आसन की ओर। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।

स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप नित सवेरे आकर के योग की उपाशाला में आसन व प्राणायाम करते होंगे। आसन व प्राणायाम की श्रेणी में आज हम आपको कराने वाले हैं आयुर्वेद में वात पित्त व कफ से आराम देने वाले आसन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेदिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष ही हमारे शरीर को शांत करने के लिए रोगों की जड़ में रहता है। जब यह दोष सम अवस्था में हो तो शरीर स्वस्थ रहता है और यदि एक भी दोष विषमता को प्राप्त होता है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अनुवांशिक तथा जन्मजात रूप से व्यक्ति के शरीर में किसी एक अवस्था दो दोषों की प्रमुखता हो सकती है, जिसके कारण हमारे शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। अतः किस प्रकृति में कौन सा आसन करना चाहिए वह हम आज आपको बताने वाले हैं। वात प्रकृति, पवन मुक्तासन समूह की क्रिया करनी चाहिए, शक्ति बंध के आसन करने चाहिए, वज्रासन, वीरासन एवं धनुरासन, चक्रासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसन जो हैं, वह हमें नित प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे वात प्रकृति जो है वह धीरे धीरे शांत होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में नौकासन, भुजंग आसन, शंभालासन, उद्यान बंध और महाबंध, यह तीनों बंध एक साथ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से पित्त प्रकृति जो है वह शांत होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि पित्त प्रकृति क्या होती है। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से पेट से संबंधित कई रोग जो है वो हो जाते हैं। और बाहर का खाना यानी कि ऊटपटांग खाने से जो हमारे पेट में पित्त बनती है, गैस बनती है, जिसकी वजह से यह पित्त प्रकृति कहलाते हैं, जिसमें यह आसन प्रमुख रूप से करना चाहिए। मंडूक आसन करना चाहिए, उद्यान बंध लगाना चाहिए, भुजंग आसन करना चाहिए और सूर्य नमस्कार नित्य प्रतिदिन ये सारे आसन एक साथ करने चाहिए। अगला हम बताने वाले हैं कफ प्रकृति। आजकल कई लोगों को जिस तरीके से अभी पहले कुछ साल पहले कोरोना ने दस्तक दी थी, तो कफ हर किसी के गले में या जैसे कहते हैं कि खांसी कफ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो कफ को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे आसन प्राणायाम आज हम कराने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको काफी आराम मिलने वाला है। सबसे पहले हम उसमें बता दें जो कि प्रमुख आसन है, प्राणायाम है, उसमें सबसे पहला है कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति, अग्निसा। यह प्राणायाम तीन ऐसे हैं जो कि कफ प्रकृति को ठीक करते हैं और यदि हम इसका उपयोग हमेशा से करते रहेंगे, नित प्रतिदिन हम करते रहेंगे, तो देखेंगे कि यह जड़ से खत्म होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आसनों की बात अगर की जाए तो ध्यान पंथ, पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और तीन बंध में से उद्यान बंध जो है यह मुख्य रूप से करना चाहिए। आयुर्वेदिक में तीनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन आता है। उपयुक्त तीन प्रकृति एक दोषज है। इसके तीन दोषज हैं जो कि वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति कहलाती है। इनके लिए दोनों प्रकार की प्रकृति के आसन करना चाहिए। चौथी प्रकृति हमारी संकाधिक कहलाती है। इसके लिए तीनों दोषों के आसन करने चाहिए। इस प्रकार हम अपने शरीर को योगाभ्यास के माध्यम से हमेशा निरोग रख सकते हैं। वात पित्त व कफ को शांत करने वाले आसन आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे आपको कि यह आसन हमें कब करने हैं, कितनी देर करने हैं और श्वासों की गति क्या होगी।
जो भी आसन वात पित्त और कफ के लिए आज हम कराने जा रहे हैं, वह सारे आसन मुख्य रूप से अगर हम प्रातःकालीन करेंगे तो हमें इसका जो लाभ है वो दुगना मिलता है। समय आपके अनुसार, यदि आप प्रथम अवस्था में कर रहे हैं यानी आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप 1-1.5 मिनट लेकर के आप 3-3.5 मिनट तक कर सकते हैं, और यदि आसनों का आपके पास कई दिनों का है तो आप यह जो समय अवधि है वह 5-6 मिनट 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। श्वासों की गति मध्यम रहेगी, ना तीव्र ना ही धीरे और ना ही तेज। तो सबसे पहले हम आज कराने वाले हैं वात दोष को शांत करने वाले आसन। सबसे पहले हम कराएंगे उसमें ताड़ासन। ताड़ासन दोस्तों बहुत ही आसान सा है। सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऊपर करके, पंजों को आपस में जकड़ करके दोनों हाथ ऊपर और पैर के पंजों पे खड़े हो जाना है। शुरुआत करेंगे 1-1.5 मिनट तक, और उसके बाद हम 3-3.5 मिनट तक कोशिश करेंगे कि हम उस अवस्था में खड़े रहें। उसके बाद आता है योग मुद्रा। योग मुद्रा होती है आप बैठ करके एकांत चित होकर के मुद्रा यानी कि उंगलियों और अंगूठों से मुद्रा बना करके बैठ सकते हैं। एकांत चित होकर के आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, गर्दन सीधी, और ध्यान हमारा रहेगा अपने दोनों आंखों के मध्य। उसके बाद हम कर सकते हैं नौका आसन, जो कि पीठ व पेट के बल होता है, और उसके बाद हम कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का एक समूह है जिसको हम आराम से एक एक बार करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वात दोष को शांत करने के लिए आसन। अब हम करने जा रहे हैं पित्त दोष को शांत करने के लिए आसन, जिसमें सबसे पहले हम कराने जा रहे हैं नौका आसन। नौका आसन हम विपरीत नौका आसन करेंगे, यानी पेट और पीठ के बल पर हम नौका आसन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन भी बहुत ही आसान है। पीठ के बल पहले लेट जाना है, उसके बाद में पेट को ऊपर की ओर उठा करके पैरों की एड़ियों को पकड़ना है। श्वास मध्यम रहेगी। उसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन यानी हम इसका दूसरा नाम कह सकते हैं कोबरा की स्थिति, यानी सर्प की जो कि अवस्था होती है, आकार होता है, हम उसे भुजंग आसन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन में आपने देखा होगा कि सूर्य नमस्कार के अंतर्गत यह एक आसन आता है। तो यह सारे पित्त दोष को शांत करने वाले आसन हैं। आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कफ दोष को शांत करने के लिए आसन। कफ दोष को शांत करने के लिए सबसे पहले अभी हमने बताया था कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम अभी हमने पहले ही आपको करवाया हुआ है। कपालभाति भी आपने पहले की सीरीज में किया हुआ है। तीसरा हम इसमें करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन किस तरीके से होगा मैं बता देती हूँ। सीधे आप पहले खड़े हो जाइए और एक पैर के पंजे को लेकर के दूसरे पैर के घुटने पर आपको लाना है। पहले वर्षों में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जिस तरीके से ध्यान करते थे खड़े होकर के, ठीक उसी प्रकार से आपको उस दशा में आ जाना है। उसके बाद त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करना है आपको, सीधे खड़े हो जाना है, दाहिना हाथ बाएं पैर को छुए और सीधे खड़े हो जाएं, फिर बायां हाथ दाएं पैर को छुए, उसके बाद आपको सीधे खड़े हो जाना है। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन और धनुरासन। कफ दोष को शांत करने के लिए मुख्यतः यह आसन और प्राणायाम किए जाते हैं। योग के संतुलन को विभिन्न प्रकार से देखा गया है। चित्त की अवस्था यानी मुनि व्यास ने
चित्त की पांच अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें यदि हम अगर आसन कर रहे हैं तो यह पांच अवस्थाएं मुख्य रूप से होनी चाहिए। पहली है मूड अवस्था, दूसरी है क्षिप्त अवस्था, तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, चौथी है एकाग्र अवस्था और पांचवी है निरुद्ध अवस्था।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: भगवान शनि की सर्व फलदायी स्तुति मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देती है। रवि पुत्र शनि देव जो नील वर्ण वाले हैं, जो छाया और मार्तंड भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो यम के अग्रज हैं, ऐसे भगवान शनि को जो बारंबार नमस्कार करता है उस पर शनि की असीम कृपा हो जाती है।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आयो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या बात है, बुमरो बुमरो बुमरो। वैसे इस गाने से आपको एक और बात याद आई होगी। यस, बचपन वाला मोबाइल छैया छैया, जिसमें एक गाना बुमरो बुमरो भी होता था। ऑलराइट, सो एक बार वापस से आप सभी का वेलकम करते हैं सैटरडे मॉर्निंग में। आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। सो वैसे आज की सुबह कोई ऐसी सुहानी सी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर देखना है कि धूप कैसी होती है, वैसे तो आपने हमेशा देखा है, लेकिन अगर देखना है सुबह सुबह भी कैसी होती है, यानी वो लोग जो 8, 8:30, 9:30 को भी सुबह नहीं मानते, कहते हैं अभी तो दिन निकलना बाकी, अभी तो धूप उस तरह निकली नहीं होगी, उनके लिए ज़रूर है कि भाई वो आकर के एक बार देख ले, उनका सोचने का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाने वाला है। यस, इतनी तेज़ धूप है फिलहाल, और जैसा कि लगातार कई दिन से बारिश हो रही थी, और कहीं ना कहीं बारिश का मज़ा भी कई लोग ले रहे थे, और कई कंप्लेंट्स कर रहे थे कि भाई इतनी भी बारिश ना हो कि हम अपना काम ना कर पाए। सो फिलहाल लीजिए, आज पूरी तरह से जो है वो धूप निकल आई है प्रॉपर वाली। सो अब देखना ये कि आज का दिन आप कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज तो आपके पास कोई बहाना नहीं है, आज तो सूखा सूखा दिन है। और स्पेशली वो लोग जो आधे से ज़्यादा डिप्रेशन बस इस बात का हो जाता है कि यार हमारे कपड़े कैसे सूखेंगे, खैर जिसमें हमारा भी नंबर आता है, मैं भी सोचता हूँ धूल तो इतने सारे दिए हैं, सुखाना कैसे है यार। सो ये प्रॉब्लम फ़िलहाल आज सॉल्व हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा आज की मॉर्निंग, तो फटाफट से देखिए, मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद अंदाज़ा होने वाला है कि ओहो हो आज ऐसी मॉर्निंग है। यस ऑफ कोर्स ऐसी मॉर्निंग है। सो चलिए फ़िलहाल आपको आज ही का यानी सैटरडे मॉर्निंग का थॉट बताते हैं कि आज का मॉर्निंग थॉट क्या है जो आपके लिए स्पेशली आ चुका है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के संग। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

यस यस यस यस। और देखिए ना, वक्त जो है वो हो चला है फिलहाल आपको बताने का कि आज सैटरडे मॉर्निंग है, और आज सैटरडे मॉर्निंग का थॉट क्या है जो आपके लिए स्पेशल आया हुआ है। तो चलिए भाई, बहुत सारे जो है थॉट्स को मिला करके बहुत सारी ज़िंदगी के जो सार होते हैं, मतलब थॉट्स तो ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जिधर सोचना भी मुश्किल ही लगता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता था क्या। सो डेफिनेटली, और मुझे लगता है सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको महसूस होती है वो आपका किया हुआ अपनी तरफ से दिया गया बेस्ट। किसी भी चीज़ को लेकर के आपने अपना बेस्ट दिया है तो फिर कोई चिंता होती ही नहीं, वो इतना अच्छा महसूस होता है। सो फिलहाल आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? आज का थॉट ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि आप कहेंगे इतना ईजी था, ओ माई गॉड ये था कहाँ। ऑब्वियस सी बात है, यही था, बस आप तक पहुँचाने की देरी है। तो दरअसल आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि खुशी हमेशा एक ऐसा विकल्प है, खुशी हमेशा एक ऐसा विकल्प है जिसे आप हर दिन चुन सकते हैं। जी हाँ, हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ चॉइस यू कैन मेक एवरी डे। यानी खुशी हमेशा ही एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी चॉइस है जिसे आप हर दिन चुन सकते हैं। यानी खुशी का दिन नहीं आता है कि खुशियों भरा दिन आया, खुशियों भरा दिन नहीं आता है, वो तो बस आप अंदर से जब खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपको चीज़ें सारी की सारी बेहतर लगने लगती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आज का थॉट ऑफ द डे बता रहा है। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है कि भाई खुशियां जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये दरअसल बाय चॉइस आप एवरीडे लाइफ में अपने चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुशियों को हर रोज़ चूज कर सकते हैं। और ऐसे भी न जाने कितने लोगों के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर मैं संडे में इसी बात को बात करूं तो मुझे लगता है ऐसे कई लोग बताएंगे कि हाँ, हम हर रोज़ अपने दिन को कैसे खुशनुमा बनाते हैं खुद से। मतलब आपको उनकी बात सुनने के बाद ये अंदाज़ा होगा कि वो खुद से अपने दिन को बेहतर बना रहे हैं, खुद से वो चीज़ों को चॉइस कर रहे हैं, और वो हैप्पी हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सच में बाय चॉइस होती है कि आप अपने हर दिन को खुशी के साथ भरना चाहते हैं क्या, यानी खुश रहना है क्या। तो ये आपके पास एक चॉइस है, आप उसको चूज कर सकते हैं, आप उसको चुन सकते हैं, और ये एक दिन नहीं बल्कि हर दिन चुन सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई हो सकता हो कि कुछ ख़ास ही ना हो दिन में, तो फिर करना क्या है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा, सबका अपना खुश होने का जो तरीका है वो अलग अलग है, हर कोई अपने अपनी तरह से खुश होता है। आपको अपना वाला देखना है कि आप कैसे खुश होते हो। और ये हमेशा याद रखिएगा, खुशी जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में या बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं होती है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। क्योंकि इवेंट्स तो हमारी लाइफ में गिने चुने ही आते हैं, त्यौहार भी आते हैं तो हर महीने या हर दूसरे महीने पड़ते हैं या तीसरे चौथे महीने पर, लेकिन दिन आपका रोज़ गुजर रहा है, लाइफ तो हर रोज़ आपकी ऑफकोर्स बीत रही है। और ये चॉइस सबसे अच्छी बात है कि खुश रहना आपके पास एक चॉइस की तरह है। अब आप अपने मन से, अगर अपने दिल से चाहें तो खुद को खुश रख सकते हैं, ये बाय चॉइस है, इसमें तो आपको कोई भी रोक ही नहीं सकता है। यस, तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे सुन लेने के बाद आपका फ़िलहाल का क्या थॉट है ये भी हम जान लेते हैं। इस खूबसूरत से नगमे के उस पार वापस लौटेंगे तो देखेंगे भाई क्या कुछ लिख भेजा है आपने और आपका क्या है मानना।

क्या बात है भाई, क्या बात है। इस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। फिलहाल आपने ट्यून किया हुआ है फ्रिक्वेंसी।

हाँ जी, तो जो सबसे पहला मैसेज आया है वो आशु जी का है, लखनऊ से। प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार सर जी, आपको भी प्यारा सा नमस्कार। और आप लिखते हैं, रात रात सुख सुख की बीत गई गई, दिन निकला है मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से, किसी का बुरा ना होवे। क्या बात है, बहुत प्यारी बात लिखी है आपने, थैंक यू सो मच आशु जी। और इसके बाद अरविंद जी हैं फ्रॉम मनकापुर, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। लिखा है कि क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दिए को बुझा देता है। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग, यस ऑफ कोर्स। एंड महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान लिखते हैं, गुड मॉर्निंग नमस्कार अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग नमस्कार आपको भी, और आपका भी दिन शुभ हो महेंद्र, ऐसी हम पूरी पूरी दुआ करते हैं। सविता जी लिखती हैं हरखापुर गोंडा से, सुप्रभात सभी को, आज वजीरगंज जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, चलिए आपका वजीरगंज जाने का जो ये टूर है, जो आपकी यात्रा है, वो काफ़ी सुखमय हो। और इसके बाद अच्छा कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिए अपनी पसंद का, मेरी पसंद के ही सारे प्ले हो रहे हैं, डोंट वरी, अब तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे गानों की जो वाइब है वो चेंज होती जाती है। एंड आशु जी लिखती हैं, यदि कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए, और यदि आप सबसे खुश हैं ये निश्चित है कि आप लोगों की बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। क्या बात है, एंड थॉट को लेकर के आपने रिएक्शन दिया है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी पसंद आया। एंड सविता जी का भी रिएक्शन आ चुका है, और आपने लिखा है कि मैं तो खुशी देखने पाने और चुनाने जा रही हूँ सर, पेड़ पौधों को देखते ही हो जाती हूँ खुश, और कल बताऊँगी सुविचार, बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, थैंक यू सो मच। और आपकी ये हिंदी देखकर कसम से बड़ा दिल खुश होता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। और इत्तेफाक से भाई परसों चुकी हिंदी दिवस है, और आज सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में हिंदी दिवस भी मनाया जाना है, क्योंकि भाई परसों छुट्टी है और आज ही इसको सेलिब्रेट किया जाना है। एंड इसके बाद प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। महेंद्र लिखते हैं, अदनान सर जी मेरे हिसाब से खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में मिले, खुशी तो हमारा नज़रिया है जिसे हम हर दिन चुन सकते हैं। ज़िंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख लें, अपनों के साथ मुस्कुराने का वक्त निकाल लें, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, तो शायद ज़िंदगी खुद ही थोड़ी खूबसूरत लगने लगती है। मेरे लिए खुशी का मतलब है कम में संतोष, अपनों के साथ मुस्कान, और हर दिन के लिए शुक्रिया। क्या बात है, इस पर तो पूरा पूरा थॉट बताया गया था कि जो आप हर दिन के लिए शुक्रगुजार होते हैं, डेफिनेटली आपके लिए दुआओं का पूरा संसार बसा हुआ जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुशी एक नज़रिया है, कोई इवेंट नहीं है कि आएगा तभी हो पाएंगे। ये हमारी च्वाइस है कि हर दिन को अगर हम चूज़ करते हैं तो सच में खुश हो जाते हैं, या वही पुरानी कंप्लेंट कल वाली उठा करके जो सालों से करते चले आ रहे हैं रोज़, वही अपने करियर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, जो भी है। और मुझे लगता है ये सब कुछ बेहतर किया जा सकता है, और करते भी और होता भी है, बशर्ते हम अगर कंप्लेन करने की बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू कर दें। वैसे हाँ, कंप्लेन से याद आया, बाकी चीज़ों की आप कंप्लेन करिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट लाएँ ख़राब निकला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको यूज़ करिए, डोंट वरी, बट आप जो प्रोडक्ट है, मतलब आपको जो बनाया कुदरत ने, वो तो भाई लाजवाब बनाया है। पहले उसको समझिए, यानी खुद को समझिए, और उसके बाद फिर देखिए कि भैया क्या चीज़ हैं आप, आपको खुद ही नहीं पता। हाँ, सच बता रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत के बाद आइए खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंचाए देते हैं, वापस से आने वाले हैं, और उसके बाद बातचीत का दिल शुरू कर लेंगे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वैसे आपको जो इंतजार होता है वो इस बात का कि भाई हम कब आए और ये कहे कि बस अगले म्यूजिकल ब्रेक में हम वापस से आकर के आपको सिटी की अपडेट देने वाले हैं, राइट। तो चलिए, आज भी काफ़ी कुछ है और साथ ही कजरी तीज को लेकर के जो डायवर्जन किया जा रहा है वो आज से ही प्रभावी होने वाला है। तो इसलिए आज आपको ये गुंडा अपडेट जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस दो दिन के बीच में अगर आप भी निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डायवर्जन कहाँ से कहाँ का है, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आप पहले ही उस रूट का प्लान करके निकले जहाँ भी आपको जाना है। सो ये हम बताने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, इस गाने के उस पार। तो सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गुंडा शो, वापस से आ रहे हैं और ले चलेंगे सिटी अपडेट की तरफ, और आज है बहुत कुछ सिटी में आपके लिए।

0: हाँ जी सुभाई, वक्त आ गया है आपको सिरी की अपडेट्स की तरफ ले जाने का और बताने का कि भाई आज सिरी अपडेट में आपके लिए क्या है। सो आज काफ़ी कुछ है जो आपको जानना चाहिए और यस ऑफ कोर्स सिरी की अपडेट्स आज आपको रूट डाइवर्जन भी बताने वाली है कि कहां से कहां का रूट और कितनी टाइम के लिए बंद रहेगा और आप फिलहाल अपने उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए किस तरह प्लान कर सकते हैं ये भी हम बताने वाले हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि देखिए आज की जो पहली अपडेट है सिटी से वो है लोक अदालत को लेकर के, राष्ट्रीय लोक अदालत। सो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं अंकिता सिंह ने बताया है कि प्रशासन है या फिर बैंकिंग और न्याय विभाग से जुड़े करीब 1,65,000 मामलों का निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया है। लोक अदालत का उद्घाटन सुबह 10 बजे से जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह करेंगे। सो आज सुबह 10 बजे से हो रहा है लोक अदालत का आज आयोजन, जिसमें प्रशासन से जुड़े, बैंकिंग से जुड़े, न्याय विभाग से जुड़े करीब 1,65,000 मामलों का निस्तारण किया जाएगा। एंड इसके अलावा आपको बता दें जो दूसरी अपडेट आ रही है वो ITI के सेकेंड फेज के सिलेक्शन रिजल्ट्स की आ रही है। सो राजकीय और निजी ITI सेशन 2026-27 के जो सेकेंड फेज का चयन परिणाम जारी कर दिया है। मनकापुर ITI के जो प्रधानाचार्य हैं राकेश शुक्ल ने बताया कि चुने हुए कैंडिडेट्स 12 से 17 सितंबर तक संबंधित संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और कैंडिडेट्स scvtup.in पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन के लिए जो है बुलावा पत्र, मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्रों की प्रमाणित प्रतियां और 2 फोटो लानी साथ में ज़रूरी होगी। सो वो लोग जिनका सेकेंड फेज़ ITI के दूसरे चरण में परिणाम में वो चूज़ किए गए हैं, चयनित हो गए हैं, उनके लिए है कि वो scvtup.in पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है उधर चलते हैं, और अगली अपडेट जो है वो फ़िलहाल ये है कि निर्यात की बात है। अबू धाबी और दुबई भेजी जाएंगी सब्जियों की पहली खेप, बल्कि भेज दी गई है। सो आपको बता दें कि गोंडा के खेतों में उगने वाली जो सब्जियां हैं कि पहली खेप परसों के बाद, कल जब शुक्रवार आया तो कल के दिन दुबई और अबू धाबी भेजी गई। सो झंझरी के कलंदपुर तोर के किसानों ने 2 टन ताज़ी सब्जियां लखनऊ एयरपोर्ट भेजी, वहां से इन्हें दुबई और अबू धाबी भेजा जाएगा। सो एक्सपोर्ट शुरू होने से किसानों को जो है वो स्थानीय मंडियों से बाहर बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। सो पहली खेप में लौकी, भिंडी, करेला, मिर्च और परवल समेत 2 टन सब्जियां भेजी गईं। सो नॉर्थ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड वाराणसी के साथ हुए एग्रीमेंट के तहत रोज़ाना 10 टन तक सब्जियों की आपूर्ति की जाएगी। किसानों से सीधे उपज खरीद कर उसकी पैकिंग और ज़रूरी प्रक्रिया के बाद निर्यात किया जाएगा। सो इससे क्या हुआ है कि भाई फ़िलहाल आसपास की मंडियों में इससे पहले किसान बेचते थे, लेकिन जब एक्सपोर्ट हुआ है तो उन्हें नया बाज़ार और उनको बेहतर उसका दाम मिलने की उम्मीद सीधे सीधे जग गई है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मजदूरी कराने कुरुक्षेत्र ले जा रहे 12 बच्चे ट्रेन में ही मिले हैं। जी हाँ, सो बिहार के मोतिहारी से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की चावल मिल में मजदूरी कराने के लिए ले जाए जा रहे 12 बच्चे RPF को ट्रेन चेकिंग के दौरान मिले हैं, और बच्चों को लेकर जा रहे 2 युवकों को टीम ने गिरफ्तार भी फिलहाल कर लिया है। मामले में 2 ठेकेदारों के नाम भी सामने आए हैं। ठेकेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में दर्ज भी की गई है। ऑफ कोर्स, एंड इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है 241 बैंक शाखाओं पर लटके ताले को लेकर के। जी हाँ, सो बैंक कर्मियों ने हड़ताल निकाल कर रैली निकाली है और परेशान हुए हैं जो खाताधारक। फिलहाल 500 करोड़ के लेन देन का है भी ये प्रभावित हुआ है। सो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर ज़िले के 21 बैंक और 241 शाखाओं में कल यानी शुक्रवार को एक दिन की हड़ताल रही। इससे तकरीबन 500 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। सो पासबुक अपडेट, KYC और रुपए निकालने जैसे ज़रूरी काम फिलहाल नहीं हो सके। इसके चलते जो खाताधारक थे इनको मायूस होकर लौटना पड़ा। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इंडियन बैंक के रोडवेज में मौजूद अंचल कार्यालय से रैली निकाली। गुरु नानक चौराहा होते हुए रैली बस अड्डा चौराहा पहुंची। यहां सभा में बैंक बचाओ देश बचाओ और वी वांट 5 डेज बैंकिंग के नारे लगाए गए। इसके अलावा अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कुछ इवेंट्स को लेकर के।
सो सुबह 7 बजे से एटिया थोक के जय गुरुदेव नगर में साधना शिविर का आयोजन आज किया गया। इसके अलावा तलबगंज ब्लॉक में सुरक्षा जवान और सुपरवाइज़र भर्ती के लिए शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। एंड इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, फ़िलहाल 299 स्मार्ट क्लास निष्क्रिय हैं उसको लेकर के। जी हाँ, सो ज़िले के परिषदीय पीएम श्री और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो स्मार्ट क्लास चल रही है उसकी सिचुएशन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने फिलहाल गंभीरता दिखाई है और ज़िले के कुल 541 स्कूल्स में से 725 स्मार्ट क्लास जो हैं वो चल रहे हैं। 1 से 10 सितंबर तक की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से 426 स्मार्ट क्लास जो हैं वो एक्टिव हैं, 299 स्मार्ट क्लास जो है वो अभी डीएक्टिवेट दिख रहे हैं। सो बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी निष्क्रिय स्मार्ट क्लास को तत्काल सक्रिय कराया जाए और निरीक्षण में सामने आया कि कई स्कूल्स में स्मार्ट क्लास डिवाइस को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी कुछ जगहों पे ऑन होने के बावजूद इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। सो फिलहाल बीएसए ने कहा है कि डिवाइस को कम से कम 1 घंटे तक इंटरनेट से कनेक्ट रखने का हेलो एजेंट ऐप से डेटा सिंक होकर विभागीय पोर्टल पर प्राप्त होगा। अगर इंटरनेट से जुड़े रहने के बाद भी डिवाइस एक्टिव नहीं दिख रहा है तो हेलो एजेंट ऐप के पुराने वर्जन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में स्कूल्स में तकनीकी टीम के सहयोग से ऐप अपडेट कराया जा रहा है। सो जो भी संबंधित विद्यालय हैं वो 7084 और 1661 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हेलो एजेंट ऐप अपडेट करा सकते हैं। सो ये जो अपडेट थी ऑफ कोर्स ये 299 स्मार्ट क्लास के नहीं शुरू होने से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑफ कोर्स 12 घंटे गुल रही है 100 गांव की बिजली को लेकर के। सो तेज़ हवा और बारिश के बीच में अगर मैं बताऊं बृहस्पतिवार की रात की बात 11 बजे, सो लव्वी वीरपुर से रघुराजनाथ नगर टिकरी और मोहनपुर उपकेंद्रों की जो आपूर्ति है वो ट्रिप हो गई। सो बहाली के दौरान रघुराज नगर टिकरी उपकेंद्र का 33 kV जो दोनों उपकेंद्र है पैनल वो तेज़ धमाके के साथ दग गया था। इससे दोनों उपकेंद्रों से जुड़े 100 से ज़्यादा गाँव में बिजली फिलहाल गुल हो गई थी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि मगरमच्छ देखने के लिए भी भीड़ उमड़ पड़ी। जी हाँ, सो भगवानपुर बैराज के पास में बानी से बाहर एक बहुत सारा विशाल काय सरसप दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल होने के बाद में कल उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सो दूर दूर से लोग बैराज पर पहुंचे और सरसप की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतज़ार करते रहे। हालांकि मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं होने से लोगों में एक चिंता भी दिखी। सो तुलसीपुर से पहुंचे कलीम और ताहिर ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद वो मगरमच्छ देखने बैराज गए थे और भोजपुर थारू निवासी जो हैं उन्होंने बताया कि खुले में पहली बार इतने बड़े सरसप को देखने की उत्सुकता उन्हें यहां खींच लाई। और वहीं कई और लोगों ने बताया कि भाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद वो मौके पर पहुंचे। सो इसके अलावा आपको ले चलते हैं अब अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट जिसका हमने बताया था कि भाई आज से रूट डाइवर्जन जो है वो प्रभावी हो रहा है, जिसको लेकर के आपको जान लेना चाहिए कि आखिर रूट कहां से कहां चेंज किए जा रहे हैं। सो यस ऑफ कोर्स, और ये अपडेट आपको हम अब बताने वाले हैं कि भाई ये रूट डाइवर्जन कहां से कहां का हो रहा है। तो सबसे पहले जान लें कि कजरी तीज मेले में जो है वो सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और 12 सितम्बर की सुबह यानी आज की सुबह 8 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक भारी हल्के जो वाहन हैं के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान जो ज़रूरी सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर भारी वाहनों का गोंडा में जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सो एसपी अभिषेक ने बताया है कि लखनऊ से बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जाने वाले जो वाहन हैं इनको जरवल रोड से कैसरगंज की तरफ डाइवर्ट करके बहराइच प्रयागपुर के रास्ते भेजा जाएगा। इन ज़िलों से वाहनों को बहराइच, प्रयागपुर, कैसरगंज, जरवल रोड, बाराबंकी होकर लखनऊ जाना होगा। बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती से जुड़े
जो अयोध्या जाने वाले भारी वाहन हैं इनको बलरामपुर से उतराला रोड डुमरियागंज बस्ती होकर भेजा जाएगा और अयोध्या से इन ज़िलों की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को लोलपुर से बस्ती की तरफ डाइवर्ट करके बस्ती डुमरियागंज उतराला मार्ग से भेजा जाएगा। सो फिलहाल हल्के वाहनों के लिए भी बदले हैं मार्ग। आपको बता दें बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती से अयोध्या जाने वाले जो हल्के वाहन हैं उनको उतरौला रेहरा बाजार मनकापुर कोल्हमपुर लोलपुर नवाबगंज मार्ग से भेजा जाएगा। अयोध्या से इन ज़िलों की तरफ जाने वाले वाहन लोलपुर पुल से कोल्हमपुर मनकापुर उतरौला मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। लखनऊ से गोंडा शहर आने वाले छोटे वाहनों को जरवल रोड से भंभुआ भौरीगंज परसपुर डेहरास होकर भेजा जाएगा। अयोध्या की तरफ आने वाले जो भारी वाहन हैं उनको लोलपुर के रास्ते ज़िले में एंट्रेंस दिया जाएगा। सो फिलहाल ये जो है अपडेट थी रूट डाइवर्जन को लेकर के, एंड आई होप कि ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर आप बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच या लखनऊ जा रहे हैं तो इस रूट डाइवर्जन का पूरा ख्याल रखें ताकि आपका वक्त भी बचे और आपको असुविधा का सामना भी ना करना पड़े। इसके अलावा हमने आपको और भी कई सारी अपडेट्स दी जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम की थी। आई होप कि ये अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुँच गई है और आपके ज़रूर काम आने वाली है।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

चलिए भाई, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। अगर आपको भी रात में भूख शूख लगती है तो कोई बात नहीं, इतना चिंता करने की बात नहीं, और बिल तो उसमें वैसे भी नहीं जाने वाला। आप सोचेंगे ऐसा क्या है कि भैया हम रात में खाना बनाएं और उसके बाद बिल भी ना जाए। मतलब रात का मतलब लेट नाइट के लिए भी अब कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल सौर ऊर्जा से रात में भी बन सकेगा खाना, और सोलर कुकर को जो है वो मिल चुका है पेटेंट, और ये कहीं और नहीं, ये इलाहाबाद में ही बनाया गया है। जी हाँ, सो क्या है पूरी बात, ये तो हम आपको इस सॉन्ग के बाद में ही बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए अब आपके लिए हो गया है काफ़ी ज़्यादा आसान। अभी तक तो सोलर पैनल्स ही सुने थे, अब सोलर कुकर का भी ज़माना आ चुका है। वैसे आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे अगर आपके पास आ जाता है सोलर कुकर?

0: भाई मेरे लिए तो काफ़ी है अगर सोलर कुकर मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो खाता नहीं हूँ और बहुत कम में ही गुजारा हो जाता है। तो चलिए, फिलहाल आप क्या बनाकर खाने वाले हैं सोलर कुकर में, और ये किसने बनाया है, कहाँ बना है, और क्या काम करेगा और कितना काम करेगा, ये सारी बातें कौन जानता है? मैं जानता हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चुगली करता हूँ, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई साहब। तो चलिए आप बताते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले बात है कि भाई ये सविता दुबे जी ने रिस्पॉन्ड दे दिया है, अगर उनको ऐसा कुकर मिलेगा तो वो भात खाएंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये तो सोलर ऑफकोर्स कुकर है, और इसमें भात कैसा बनेगा ये तो खैर अभी हम भी गारंटी ले नहीं सकते जब तक हम देख ना लें।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

हाँ जी, तो जैसा कि हम बताने वाले थे आपको कि भाई अब सोलर कुकर का ज़माना आ चुका है, और इस ज़माने में मैं बता दूं फिलहाल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सोलर कुकर तैयार किया है जिसमें रात में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना पकाया जा सकेगा। सो वैज्ञानिकों ने इसे जो है वो पिछले एक महीने में भी पेटेंट प्रदान कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये जो MNNIT के जो एम्प्लॉयड है मैकेनिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय भारती और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल देव और लुकालप्पू रामू और अमन कुमार अग्रणी ने इसको तैयार किया है। अ फेज चेंज मटेरियल एंड रेडिएंट हीटिंग बेस्ड सोलर कुकर नाम से डेवलप्ड इस टेक्निक में पैराफीन मोम को फेज चेंज मटेरियल यानी PCM के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सो इससे क्या होता है, ये दिन में सूरज की गर्मी सोख करके उसे स्टोर कर लेता है और धूप ढलने के बाद भी खाना पकाने लायक तापमान बनाए रखता है। तो इस तरह से आपका खाना जो है वो बन जाएगा रात में भी। चलिए ताली बजाइए। इसके बाद जो हम बता दें कि इसके जो नतीजे मिले वो काफ़ी शानदार मिले। सो परीक्षण में जो है कुकर पर हुए परीक्षण में 500 वॉट वर्ग मीटर PCM का तापमान 81 डिग्री सेल्सियस और 1000 वॉट वर्ग मीटर पर 108 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सो कुकिंग बर्तन का जो तापमान है वो 88 डिग्री से 116 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्थिर रहा, और ये तापमान खाना पकाने के लिए काफ़ी होता है। एंड इसके अलावा बता दें कि पॉली कार्बोनेट से बनी है दीवारें। सो कुकर की जो साइड फ्रंट और ऊपरी ढकने वाली दीवारें हैं वो पॉली कार्बोनेट शीट से बनी हुई है जिससे धूप अंदर तक पहुंचती है, और एल्यूमिनियम की जो आयताकार कैविटी के काले रंगा उसे रंगा गया है। सो हर कैविटी में दो बर्तन एक साथ रखे जा सकते हैं, और पीछे और एक नीचे का हिस्सा फाइबर रिनफोर्स्ड प्लास्टिक यानी FRP से बना है जो ऊष्मा की हानि को कम करता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो तकनीक है ये काफ़ी सस्ती और उपयोगी भी है। सो ये तकनीक उन इलाकों के लिए फ़ायदेमंद होगी जहां बिजली की अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है या नहीं हो पाई है। सो पैराफीन मोम लागत जो है कम होने से और इसकी 210 किलो जूल पर किलोग्राम तक सूर्य ऊर्जा का जमा करने की क्षमता है जो है ये चलते रहने से सोलर कुकर पारंपरिक कुकर के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती और भरोसेमंद माना जा रहा है। फिलहाल ये तो हम बना कर ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये कुकर रख लेना चाहिए। कहे कि रात बिरात खाने का मन होता है और गैस ऐसा नहीं होगी, अगर फिर से कहीं कुछ मसला हुआ तो उसके लिए ये सौर ऊर्जा से चलने वाला जो सौर कुकर है ये काफ़ी बढ़िया है। एंड मुझे तो लगता है देखते ही आपको थॉट आएगा कि लाओ इसमें कपड़ा रख दे, क्योंकि इतना अच्छा खासा स्पेस है ना, तो आपको हो सकता है और भी ज़्यादा ख्याल आए कि भैया इससे ये भी हम कर सकते वो भी कर सकते। हालांकि ये सब करना नहीं होगा, करना खाली आपको खाना ही बनाना होगा, ये सब कहाँ आप सोच रहे हैं यार। तो भैया आपको फिलहाल सुन लेने के बाद में कैसा लग रहा है सोलर कुकर के बारे में, और आप भी बता दीजिए अगर आपको मिल जाए सोलर कुकर तो आप पहला खाना पहली डिश क्या बनाने वाले हैं इस सोलर कुकर से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट खोज मानी जा रही है समय को देखते हुए। एंड इसके विषय में अब आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, ये आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ आने के बाद हम बताने वाले कि भाई नुकीला दांत भी कर सकता है मुंह में कैंसर का रास्ता तैयार। अब आप सोचेंगे नुकीला दांत कैंसर, कहाँ से भैया मैच हो रहा है? ऑफकोर्स मैच नहीं हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे रीज़न बन रहा है, यानी ये नुकीला दांत कैंसर की वजह बन सकता है मुँह के। कैसे हम बताते हैं आकर के वापस से आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: बच्चों, ईमानदारी का इनाम क्या होता है?
1: सर, ईमानदारी का इनाम बहुत बड़ा होता है।
0: बाप बेटे, गोलू तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। शाबाश, अब जरा उदाहरण तो बताओ।
1: सर, कल ना मैंने अपने पापा को ना ईमानदारी से बताया कि मैंने टीवी तोड़ दी।
2: ओह नो।
1: और बदले में मुझे दो बड़े बड़े थप्पड़ मिले।
3: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान। सो इतनी सारी बातचीत के बाद में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बातें जो है वो हमेशा हमारे पास आपके लिए रहती हैं, और ये जो बातें होती हैं दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा काम की होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें आपका बहुत कुछ भला हो जाता है। सो फिलहाल आइए आपको हम ले चलते हैं अगली बात की तरफ, और अगली बात भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे जाहिर सी बात है बाकी बातें होती हैं तो इतनी सारी बातों के बीच में अब आपको ले चलना है ये बताने के लिए कि भाई कुछ और बातें जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही है, आपके लिए बेताब है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये गोंडा शहर की धड़कन है, और अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी बातें बताने के लिए, बहुत छोटी छोटी सी हैं। होता है क्या है ना कि हमारी जब डेली लाइफ की बातें हम करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी होता है चीज़ों को चेंज करना, उसको महसूस करना, अपने अंदर बदलाव लाना, एंड ज़्यादा नहीं सोचना होता है। बहुत ज़्यादा सोच करके हम सिर्फ टेंशन और डेटाज ही कलेक्ट करते हैं। बस हम आराम से खुद के साथ कंफर्टेबल रहे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें फिर आराम से इजीली हो सकती है, मुमकिन है फिर सारी चीज़ें लिटरली।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

मुझे लगता है अगर कुछ चीज़ों को सिर्फ समझ लिया जाए तो आपके लिए वो इतनी आसान कर देगी हर चीज़ को कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। जैसे अपनी बॉडी को अगर हम ये मान ले कि ये हमारी सारी बातें सुन सकती है, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हमारी बात ये सुन रही है। सो अपनी बॉडी से भी हम बात कर सकते हैं कि जो महसूस हो रहा है उसे खुल करके कह सकते हैं, जो कहना है उस पल में कह सकते हैं। कभी कभी अपने ही बॉडी की बेचैनी भी हमें बेहतर सुनने में मदद करती है। सो अगर हम खुद को ये मान के चलते हैं कि हमारा शरीर भी हमको सुन सकता है और हम जो कहते हैं उसको समझता है, तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो साफ नज़र आता है। एंड शुक्रिया बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले, किसी भी लेसन को ख़त्म करने से पहले ये मान लें कि उसने हमें क्या सिखाया है। सो ग्रैटिट्यूड रखना, उसके लिए शुक्रगुजारी रखना, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है बिनी बनाई जो बातें होती हैं उनसे कड़वाहट के बिना। जी हाँ, बिना किसी कड़वाहट के ये हमारी आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा अपने मन की इच्छाओं पर कागज़ को लिखना, जी हाँ, छोटी सी आदत है लेकिन बड़ी ही इफेक्टिव है। अगर ये आदत हमारे अंदर आ जाती है, लिटरली हम जिस जगह बैठे हैं, जहाँ पे हैं, अगर उसको कागज़ पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो इससे होते क्या है, इसको लिखने के बाद ध्यान से पढ़ना होता है और याद रखना होता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक साफ नीयत है जिससे हमारा मन एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। अगर हमने कुछ सोचा है अपने लिए और उसको हम लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख करके हम ये सोचें और ये देखें कि हमारे लिए एक क्लियर पाथ दिखा रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन सामने ला रहा है। ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही असरदार बात है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा असर करती है। एंड इसके अलावा एक आदत जो है वह बहुत छोटी सी है, जिसको सुनकर के आप भी हैरान होंगे, कहेंगे अरे भाई इससे क्या मतलब है, बट एक्चुअल में मतलब है, दरअसल जो छोटी सी आदत है कि मुश्किल वक्त में अपने हाथों को धो लें आप। जी हाँ, सो क्या होता है ना कि ठंडे पानी से अपने हाथों को जब आप धोते हैं, और उससे बातचीत भी याद रखिए जिससे अभी अभी आप परेशान हुए हैं, यानी उस बात को आपको याद रखना होता है जिससे अभी अभी आप परेशान हुए हैं और जिसकी वजह से आपने हाथ धोया है। एक गहरी आपको सांस लेना है और ख़ुद को एक नई शुरुआत देना है। यकीन मानिए, जब कभी आप किसी चीज़ से बहुत घबराए हुए हों, आप आइए आराम से, हाथ धोइए ठंडे पानी से, और उसके बाद उस बात को ये याद रखिए जिनसे अभी अभी आप परेशान हुए थे, और उसको लेकर एक गहरी सांस लीजिए और ख़ुद को एक नई शुरुआत दीजिए कि जस्ट इस घटना के जस्ट बाद आपकी फिर से एक नई पारी शुरू हुई है, आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इट विल वर्क, अगर आप करते हैं तो इसका असर ज़रूर होगा। ये बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका असर जो होता है लाइफ में हमेशा के लिए हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डाली है, और आज भी आदत इतनी अच्छी है जिससे कि मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। देखने में तो बड़ी ही छोटी सी बात है कि भाई उठ कर एक गिलास पानी पी लिया, लेकिन इसका फ़ायदा जब लॉन्ग टर्म में मैं देख रहा हूँ इतने वक्त बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत अच्छा किया। और ये अगर ना होता तो आज जो हमको 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो क्लैरिटी मिल रही है इस काम करने को लेकर के, वो शायद मिल ही ना पाती, इसको हम कभी महसूस ही ना कर पाते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये छोटी छोटी सी आदतों को अपने अंदर लाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं, जब हम बड़ी एक फेज़ में नज़र डालते हैं, तो हमको नज़र आता है कि कहीं ना कहीं हमने बेहतर किया है अपने लिए। और ये हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी अपने लिए ज़रूर बेहतर करें, क्योंकि हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी अपनी खुद की है, हम खुद से इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, हम खुद से आगे बढ़ेंगे, हम खुद ही इन चीज़ों को फील करने वाले हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई इन चीज़ों को कैसे हम फील करें और किस तरह से हम
देखते हैं। यस ऑफ कोर्स, किस तरह से हम देखते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल मुझे लगता है कुछ ऐसी छोटी सी आदतें जो आपने अपनाई होगी कभी, शायद इसी शो में सुन करके या किसी के कहने से या कभी ख़ुद से ही, तो ज़रूर आपको उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता होगा। और आज भी शायद कुछ ना कुछ उन आदतों से आप आज भी जुड़े हों और उसका बेनिफिट जो है आपको आज भी मिल रहा होगा, राइट? सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है लाइफ, लाइफ बहुत ही सिंपल सा है और उसको जितना सिंपल बनाए रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतरीन होता है। और लाइफ सिंपल कैसे होती है? ज़्यादा सोचे बिना बस हर उस बेहतर काम को करते जाना जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है, जो आपको बेहतर महसूस करा रहा है ना? चलिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। और जैसा कि जाने से पहले एक बार बताया था मैंने कि भाई आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर नुकीला दांत भी कर सकता है मुंह के कैंसर का रास्ता तैयार। यस, और ये कोई बात नहीं है, दरअसल रिसर्च में फ़िलहाल सामने आया है और ये सच में बड़े कंसर्न वाली बात है। यानी हम लोग में से ऐसे कई लोग होते हैं जिनके दांत जो होते हैं वो नोकीले होते हैं, लेकिन दरअसल नोकीले दांत कई बार ये मुसीबत का सबब, इवन कैंसर का रास्ता तैयार कर सकते हैं। कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं, ताकि इस तरह की अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक बेहतर सजेशन दे करके उनकी चीज़ों को आप ज़रूर बचा लें।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो बताने वाले हैं भाई ये नुकीला दांत किस तरह से मुंह के कैंसर का रास्ता तैयार कर सकता है। भाई आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपके में हो, मुझ में हो, किसी की भी हो सकती है। ये जो बात है, दरअसल मुंह के कैंसर का नाम जब आता है तो सबसे पहला जहन जो जाता है वो तंबाकू और गुटखा और पान मसाला जो खाते हैं, जाहिर सी बात है उस पर ख्याल जाता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि मुंह में लगातार जो चुभता या रगड़ता हुआ नुकीला दांत होता है ये भी ख़तरा बन सकता है। ठीक से फिट ना होने वाला डेंचर या इम्प्लांट के बाद जो है वो हमारी जबान और गाल से लगातार होने वाला घर्षण भी जो है मुंह के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो ये बात जो है कल यानी शुक्रवार को शहर आए दिल्ली एम्स के जो पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर SVS देव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुंह के कैंसर के लिए तंबाकू बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन इसे सिर्फ एक कारण माना नहीं जा सकता है। मुंह में लगातार होने वाला घर्षण भी समस्या पैदा कर सकता है। अब इसमें होता क्या है? खराब या नुकीले दांत, ठीक से फिट ना होने वाला डेंचर और इम्प्लांट के बाद जो जबान होती है या गले से गाल से बार बार टकराने वाला दांत जो है चोट की वजह बन सकता है। अभी फिलहाल दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में सर्जिकल अंकोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर देव ने बताया कि मुंह में होने वाला हर छाला कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई छाला लंबे वक्त तक ठीक नहीं हो रहा है या सफ़ेद या फिर लाल धब्बा बना हुआ है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में चिकित्सकीय जाँच और ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी कराना ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई वक्त पर जांच बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हर महीने के चौथे सैटरडे को जो है वो टेस्टिंग भी होती है। फिलहाल आपको हम बता दें कि दूसरी स्टेज तक इलाज की अच्छी संभावना होती है। डॉक्टर देव के मुताबिक कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए इलाज के परिणाम उतने बेहतर होते हैं। स्टेज टू तक बीमारी का पता चलने पर भी बड़ी संख्या में मरीज पूरी तरह जो है वो स्वस्थ हो सकते हैं और इनके हिसाब से वक्त पर इलाज मिलने पर 70-80-90% तक के जो मरीज़ हैं उनके स्वस्थ होने की संभावना भी रहती है। तंबाकू फिर से शुरू करना भी ख़तरनाक होता है। जी हाँ, फिलहाल इलाज के बाद कुछ मरीज़ जो है दोबारा से पान, तंबाकू या दूसरे जो नशीले प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये गंभीर गलती हो जाती है, इससे बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में दोबारा कैंसर डिवेलप होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इलाज के बाद तंबाकू को पूरी तरह से दूरी ज़रूरी है। रोकथाम का हथियार जो है वो जागरूकता है। तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसे में लोगों को इनके ख़तरों के बारे में लगातार जागरूक करते रहना ज़रूरी है, ख़ास करके यंगस्टर्स को तंबाकू और गुटखे की शुरुआत से ही दूर रखना होगा ताकि इसकी लत ही ना लगे। इसकी शुरुआत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है न जाने कितने सारे पेशेंट्स हैं, न जाने कितनी सारी फैमिली है जो कैंसर जैसी भयावह बीमारी में फंसने से बच सकेगी। और ये शायद हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझे कि भाई ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हमको होना चाहिए कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम शुरुआत में तो नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाकर के वही बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए बनती है। इसलिए अगर हम शुरुआत में ही ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं अपने घर वालों को, अपने यहाँ के बच्चों को, अपने यहाँ के कोई भी फैमिली के जो सदस्य हैं उनको, तो इन चीज़ों से हम कहीं ना कहीं बच भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वैसे इसको लेकर के आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और फिलहाल कई और सारे मैसेजेस चैट बॉक्स पर आ चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे आप जागते जा रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा से। आप सभी का एक बार वापस से वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी एक वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो पे जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। इतनी सारी यार बातें बताइए और स्पेशली हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। देखिए हम आ करके बताते हैं कि भाई किस तरह से अपने सेहत का ख्याल रखना है, कैसे कैसे बात करनी है, क्या है और आदतों में कौन कौन से छोटे बदलाव ला करके हम जो है अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं, जिसके विषय में भी आपसे हम बातचीत करते रहते हैं और आप तक सारी बातों को हम पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातों में आप इस शो को सुनते सुनते कहीं ना कहीं आज इतने दिनों बाद कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपके में अंदर ज़रूर आ रहा होगा और आप भी मान रहे होंगे कि हाँ यार रोज़ सुन लेने से काफ़ी कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि आप अपना ख्याल रखने का ध्यान आपको भी वापस से आ ही जाता है। राइट, आना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल एक ऐसी बात जो कि हेल्थ से ही जुड़ी है, लेकिन हमने आपसे कई सारी बातें बताई है एंड इन्हीं सारी बातों के बीच में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि दही के साथ नहीं बनाने चाहिए। अक्सर हम लोग दही के साथ कई सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, तो कौन कौन सी वो सारी चीज़ें हैं आइए इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार आकर के हम बताते हैं कि दही के साथ किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहिए, वरना ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाएगा। सच में

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजेदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और देखिए ना कितनी सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद होती हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, Arjun Khan.

हाँ जी, तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं जिसको हम करते हैं अक्सर दही के साथ मिक्स करके, हालांकि इसको बिल्कुल भी नहीं करना होता है, जैसे कर्ड एंड क्यूकम्बर। सो अक्सर जो है हम देखते हैं कि भाई दही के साथ मिला करके खाना हमको बड़ा ही अच्छा लगता है और दही हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि दही में ऐसे कई सारे ऑफकोर्स पोषण न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो खीरे का इस्तेमाल अपने आप में होता है डाइजेशन के लिए, दही का भी होता है, लेकिन इनको मिलाना जो है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भाई बहुत सारे घरों में, इवन मेरे घर में खुद ही इस तरह से कई बार मिलाया गया कि खीरा और दही एक में किया गया। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो खीरा और दही मिलाते हैं ये ब्लोटिंग की वजह बनता है, यानी इससे पेट फूलता है। सो एक साथ दही और आपको खीरा नहीं मिलाना। इसके अलावा दूसरा जो ऑड कॉम्बिनेशन है दही के साथ वो है बनाना। जी हाँ, सो ये जो दही प्लस बनाना होता है यानी केला और दही, ये भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए। सो अक्सर हमने देखा है कि भाई कई जगह ऐसा बनाया जाता है जिसमें दही के साथ में केले को मिक्स किया जाता है, और ये जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इससे म्यूकस हो सकता है, यानी म्यूकस मतलब बलगम जिसे बोलते हैं या श्लेष्म जिसे कहते हैं, जो बॉडी के अंदरूनी परतों जैसे नाक, गले और फेफड़ों के जरिए एक चिकना तरल पदार्थ बन जाता है। सो अगर हम दही और केले का इस्तेमाल करते हैं तो म्यूकस बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल मछली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करिए, वरना एलर्जी की प्रॉब्लम पूरी तरह से हो सकती है। कई बार गलती से इंसान को लगता है हेल्दी फूड है तो खा रहे हैं, सो मछली के साथ में अगर आप लेते हैं इसको तो ये आपके लिए एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी दही आपको साथ में नहीं लेना है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो एक और ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस पे ध्यान तो नहीं जाता, बहुत छोटा सा लगता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, सो नींबू के साथ में सिट्रस अगर मिलाते हैं, सिट्रस में जैसे दही के साथ में नींबू मिला दे या खट्टे फल, तो ये जो है एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। दही के साथ अगर खट्टे फल मिला रहे हैं तो ये एसिडिटी बढ़ाने का काम करेगा, और ये भी हमारे लिए जाहिर सी बात है ठीक नहीं है। तो यहाँ पे सिट्रस मतलब वो हैं जो थोड़े से खट्टे या नींबू वंश में जो आते हैं या खट्टे फल जो होते हैं उनको सिट्रस कहते हैं। तो सिट्रस नहीं मिलाना होता है दही में, नहीं तो ये भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम दे जाते हैं। सो हमने क्या क्या बताया, आई होप कि आपको याद होगा। हमने सबसे पहले बताया कि भाई दही और क्या, खीरा। यस, यू आर राइट। सो दही और खीरा, ये जो है पेट फूलने की बीमारी यानी ब्लोटिंग का रिस्क इससे होता है। खीरे के बाद में दूसरा जो ऑड कॉम्बिनेशन है दही और केला, इससे क्या है कि बलगम बनता है। इसके अलावा दही और मछली, ये एलर्जी क्रिएट कर देती है। इसके अलावा दही और सिट्रस यानी खट्टे फल या नींबू दही के साथ मिलाना, सो ये भी कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ा देता है। तो ये जो ऑड कॉम्बिनेशंस है, आई होप कि इनसे हम बच के भी रहेंगे और ये जानकारी हम अपने घर तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि अगर ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन होता है तो ऑफकोर्स ये फ़िलहाल इसको छोड़ दिया जाए। एंड इसके बाद जो है फिलहाल आपको हम बताते हैं, कुछ मैसेजेस भी आपके आ गए हैं, हमारे साथ में कुछ श्रोता भी जुड़ गए हैं। सो सबसे पहले हम बता दें, गीता जी ने लिखा है, ओ हम तो खीरे का रायता बनाकर खाते हैं आज से, तौबा तौबा। जी हाँ, फिलहाल ये एक ऑड कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड इसके अलावा आपने कहा फिश के साथ दूध दही सब बैंड है। यस ऑफकोर्स, फिश के साथ तो बिल्कुल बैंड होता है, क्योंकि ये फिर आपके लिए एलर्जी पैदा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग, आपको भी आपका स्वागत है अजय जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। मुस्कान मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। इरफान शाह मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी लिखती, नाइस जानकारी दांतों के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजय जी पटना से, गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर
फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस, आपने लिखा सर तो पीती थी, अब हस्बैंड को भी डाल दी है ये आदत, और रोज़ एक गिलास गुनगुना पानी पीना, अगर घर में नींबू है उसका रस भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है, ये और ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और बहुत अच्छी बात बताई, ऐसा लिखा है सविता जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको भी पसंद आया ये सारी बातचीत, थैंक यू सो मच। कि भाई आप लोग जो है इन सारी बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे आपको जो भी फ़ायदा होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा संजय जी पटना से बोलते हैं कि दूध के साथ में नमक भी नहीं खाना चाहिए, बेशक सही बात है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि अक्सर हम लोग चाय में भी जैसे चाय के साथ में नमकीन खाते हैं, चाय के साथ नमक का बहुत ही गंदा, बहुत ही ऑड जो है वो कॉम्बिनेशन, इससे भी बचना होगा। फिलहाल आज का शो कैसा रहा हमको ज़रूर बताइएगा, आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और अपनी हेल्थ के बारे में भी आपने जान लिया है, एंड आई होप कि आप लोग बेहतर महसूस कर रहे होंगे। चलिए फिलहाल फटाफट से बता दिए कि आज का शो आपके लिए कैसा था, और फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद अपने गोंडा FM पर। आप आ रहे हैं बैक टू बैक बहुत सारे शोज आपके लिए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार बहनों, भाइयों, दादियों, नानियों और प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी अपनी जया। आज हम बात करेंगे उस खुशी की, जिसका इंतज़ार घर को रहता है, जब किसी घर में आने वाली होती है नन्ही किलकारी। लेकिन खुशी के साथ साथ जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। और आज हमारे साथ हैं समता दी, आशा कार्यकर्ता किरण दी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव की सबसे अनुभवी गीता काकी।
7: राम राम बिटिया, बड़ा अच्छा विषय चुना है। हम लोगों के समय तो जानकारी बहुत कम थी।

0: बच्चा भगवान भरोसे पल जाता था, लेकिन अब तो अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, तो अच्छी अच्छी बात सीख भी लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल काकी, आज हम गांव के अलग अलग घरों में चलेंगे और जानेंगे कि गर्भवती महिला की देखभाल कैसे होती है,
2: और यह भी कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है।
3: तो चलिए बहनों, सबसे पहले चलते हैं राम दुलारी के घर।
4: अरे आइए आइए दीदी लोग, बड़ा अच्छा लगा।
0: कैसी हो बहू, क्या हाल चाल है?
4: ठीक हूँ काकी, लेकिन कुछ दिनों से उल्टी, कमजोरी, नींद बहुत आ रही है।
1: अच्छा, मासिक धर्म रुका है?
4: हाँ दीदी।
2: तो फिर जांच करवानी चाहिए।
4: अम्मा कहती हैं कि हम लोग के समय कहाँ जांच होती थी।
5: हाँ भाई, हमारे जमाने में तो खेत में काम करते करते बच्चे पैदा हो जाते थे,
0: और उसी कारण बहुत सी बहुओं की जान भी चली जाती है। ये जाने हो कि नहीं अम्मा?
5: हाँ, यह बात तो सही कह रही हो।
1: देखिए अम्मा, अब सरकार भी कहती है कि गर्भ ठहरते ही पंजीकरण कराएं, कम से कम 4 बार जांच जरूरी है।
5: क्या देखते हैं डॉक्टर?
1: खून की जांच, वजन, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, शुगर, बच्चे की धड़कन, सब कुछ।
5: अच्छा, इतना सब?
4: लेकिन दीदी, लोग कहते हैं ज्यादा अस्पताल जाने से कमजोरी बढ़ जाती है।
2: अरे नहीं नहीं बहन, अस्पताल जाने से कमजोरी नहीं, जानकारी बढ़ती है।
3: समता दी, एक बात बताइए कि गर्भवती महिला को क्या क्या खाना चाहिए?
1: सबसे पहले सुबह उठकर एक गुनगुना ग्लास पानी पिएं, फिर भीगे चने या मूंग, दूध, मौसमी फल, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दही और गुड़।
0: हमारे समय में गुड़ और चना बहुत खिलाया जाता था।
1: बिल्कुल काकी, वह बहुत अच्छा है।
5: लेकिन मेरी पड़ोसन कहती थी कि ज्यादा खाओगी तो बच्चा बड़ा हो जाएगा और प्रसव में दिक्कत होगी।
1: यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। बच्चे का विकास माँ के अच्छे पोषण पर निर्भर करता है। कम खाने से बच्चा कमजोर होगा, माँ कमजोर होगी, खून की कमी और प्रसव में अधिक खतरा होगा।
4: अच्छा, तो मुझे डरना नहीं चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, तुम्हें खुश रहना चाहिए। गीत सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, परिवार से बातें करो, मन प्रसन्न रखो, क्योंकि माँ जैसा सोचती है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है।
0: हाँ बिटिया, हम लोग कहते थे कि गर्भवती औरत को कभी रुलाना नहीं चाहिए।
3: वाह काकी, कितनी सुंदर बात।
5: हाँ, यह गलती होती है।
4: अम्मा मैं थोड़ा बहुत काम तो करूँगी ही।
1: हाँ काम करो, लेकिन भारी सामान मत उठाओ, फिसलन वाली जगह मत जाओ, बहुत देर तक भूखी मत रहो, पर्याप्त आराम भी जरूरी है।
0: और पति लोग भी सुन लें।
5: हमारे बेटे को भी समझना पड़ेगा।
3: देखिए श्रोताओं, जच्चा बच्चा की देखभाल केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब अगले पड़ाव में हम मिलेंगे एक ऐसे परिवार से जहां घर वाले पोते की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन क्या बेटी आने पर खुशी कम हो जाती है? क्या आज भी सोच बदलने की जरूरत है? यह जानेंगे कार्यक्रम के अगले

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज। अभी हम रामदुलारी के घर से निकले हैं, अब चलते हैं पास के टोले में, जहां परिवार में नई खुशखबरी की चर्चा है, लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी है।
1: अरे, ये तो कमला चाची का घर है।
2: हाँ, चलिए यहीं चलते हैं।
3: अरे बिटिया लोगे, आओ आओ आओ।
4: कैसी हैं चाची?
3: सब तो ठीक है बेटवा, लेकिन मन थोड़े थोड़े परेशान है।
1: क्यों बहन?
3: हमार जोन पतोहिया ही 5 महीने से पेट से ही, सभे कहत है कि भगवान करे यह बार पोता हो जाए।
1: और अगर पोती हो जाए तो?
3: हाँ बहिनी, ये बुरा तो नाए है, लेकिन कहा नहीं जात है कि खानदान चलावे खातिर बेटा के जरूरत होता है।
5: अच्छा कमला, एक बात बताओ, जब तुम बीमार पड़ती हो तो सबसे पहले कौन दवा लेकर आता है?
3: हाँ, हमार बिटिया ही ना, सुनीता।
5: त्योहार पे सबसे पहले फोन कौन करता है?
3: बस वही।
5: और तुम्हारे घुटनों में तेल कौन मलता है?
3: हाँ हाँ, बिटी वे लगावती।
5: तो फिर बताओ, बेटी पराया धन कैसे हुई?
2: चाची, आज बेटियाँ कहाँ पीछे हैं? कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर है, कोई सेना में अफसर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई अपना व्यापार चला रही है, और कोई गांव की प्रधान है।
0: और देखिए, हमारे आसपास की बेटियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: हमारी ब्लॉक की रीना बिटिया नर्स बन गई है।
2: बगल वाले गांव में पूजा पुलिस में भर्ती हुई है।
5: और हमारी पोती मोबाइल से पूरा बैंक चलाती है, हमको तो पढ़ना भी नहीं आता, वही सब काम करती है।
3: बात तो सभी सही कहा थो, लेकिन ये बताओ कि समाज का कही आखिर?
0: समाज धीरे धीरे बदलता है चाची। पहले लोग कहते थे लड़की पढ़कर क्या करेगी, आज वही लोग अपनी बेटियों को शहर भेज रहे हैं। पहले कहते थे बहू अस्पताल क्यों जाएगी, आज कहते हैं अस्पताल में ही बच्चा होना चाहिए।
2: और सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
5: अरे हमारे जमाने में तो लोग सोहर भी लड़कों के लिए ही गाते थे, अब तो बिटिया के लिए ढोलक भी बजनी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, उसकी मुस्कान एक जैसी होती है, उसका रोना एक जैसा होता है, उसकी उंगली पकड़कर चलना एक जैसा होता है, तो प्यार अलग क्यों?
3: हाँ बहिनी, आज तो तोहरे सभे मिलकर हमारा आँख खोल दी हूँ। अब चाहे पोता हुआ और चाहे पोती, हम तो दुइनों के यक्के मेर स्वागत करब। हाँ,
0: बहुत सुंदर बात। अब जरा राम दुलारी के पति से भी बात करते हैं।
6: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते। तुम्हें पता है तुम पिता बनने वाले हो?
6: जी।
1: डरना नहीं, अच्छा पिता वही है जो गर्भावस्था से ही अपनी पत्नी का साथ दे, पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाए, दवा समय पर दिलाए, भावनात्मक सहारा दे, घर के काम में हाथ बटाए।
6: मैं कोशिश करूंगा।
5: कोशिश नहीं बेटा, पूरा का पूरा वादा करो।
6: वादा करता हूँ काकी, मैं बेटी और बेटे में कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा, अगर बेटी भी होती है तो उसे खूब पढ़ाऊंगा।
0: बस यही सोच नए गाँव की पहचान बनेगी।
2: एक जरूरी बात, गर्भवती महिला को तनाव नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, डरावनी बातें नहीं, उसे अच्छा माहौल चाहिए।
5: हम लोग कहते थे कि गर्भवती बहू के सामने शुभ बातें करो, और अब डॉक्टर भी यही कहते हैं।
0: संगीत के इस प्यारे लोकगीत के बाद अगले भाग में हम जानेंगे गर्भावस्था के 7वें, 8वें और 9वें महीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। बने रहिए गाँव की गूंज के साथ।
1: हम

0: नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज। पिछले भाग में हमने जाना था कि गर्भावस्था में अच्छा भोजन, नियमित जांच और परिवार का सहयोग कितना आवश्यक है। आज राम दुलारी का 9वां महीना चल रहा है, घर में उत्सुकता है, दादी पोते के सपने बुन रही हैं, लेकिन भगवान ने क्या लिखा है ये तो वही जानता है।
1: बहू धीरे धीरे चलो, अब तो 9 महीने पूरे होने वाले हैं।
2: जी अम्मा, बच्चा बहुत हरकत करता है।
3: अरे ये अच्छी बात है कि बच्चा स्वस्थ है।
4: अस्पताल का बैग तैयार कर लिया?
2: बैग?
4: हाँ, एक जोड़ी साफ कपड़े, बच्चे के कपड़े, तौलिया, दस्तावेज, आधार कार्ड, अस्पताल की पर्ची, पानी की बोतल।
1: अरे इतना सब?
4: हाँ अम्मा, प्रसव कभी भी शुरू हो सकता है।
0: श्रोताओं, यह बहुत जरूरी जानकारी है कि प्रसव से पहले अस्पताल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए।
5: दीदी मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ, पहली बार पिता बनने वाला हूँ मैं।
3: जब बच्चा गोद में आएगा तो डर भाग जाएगा।
1: लेकिन भगवान पोता ही दो।
3: अरे बहन फिर वही बात,
4: इच्छा रखना गलत नहीं लेकिन बच्चा स्वस्थ होना सबसे बड़ी बात है।
6: और आज बेटियाँ किसी से कम नहीं है।
1: हाँ अब समझ गई हूँ, पर गांव वाले क्या कहेंगे?
0: गांव वाले तो हर बात कहेंगे, जब बेटी डॉक्टर बन जाएगी, अफसर बन जाएगी, तब वही लोग मिठाई खाने आएंगे।
2: अम्मा, ओ अम्मा।
1: अरे क्या हुआ बहुरिया?
2: पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
1: अरे राम राम राम राम राम। अरे बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ।
5: क्या हुआ?
1: लगता है समय आ गया है अस्पताल जाने का।
5: एक काम करता हूँ, समता दीदी को बुलाता हूँ।
7: घबराइए मत, ये बताइए दर्द कितनी देर में आ रहा है?
2: 10-10 मिनट पर।
4: तुरंत अस्पताल चलते हैं।
1: दाई को बुला लो।
4: नहीं अम्मा, घर पर प्रसव में खतरा हो सकता है, अस्पताल चलिए।
5: अरे भैया रिक्शा कहाँ मिलेगा?
6: मैंने एम्बुलेंस नंबर मिलाया है।
0: श्रोताओं ये बात याद रखिए कि जब प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो देर नहीं करनी चाहिए, अस्पताल जाना सबसे सुरक्षित उपाय है।
7: मरीज को अंदर लेके जाएं।
5: बहन जी सब ठीक होगा ना?
7: घबराइए नहीं, डॉक्टर बहुत अनुभवी हैं।
1: हे भगवान सब कुशल करना।
3: अरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो।
4: देखो अम्मा, पहले कितनी महिलाएं घर पर प्रसव के दौरान चल बसती थीं, अब सुविधाएं हैं इसीलिए उनका उपयोग करना चाहिए।
5: माँ मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: मुझे भी।
3: अरे दादी बनने जा रही हो तो जरा मुस्कुराओ भी, ऐसा चेहरा काहे बना रखा है?
1: मैं सोच रही थी।
3: तो बताओ।
7: तो लोग कहेंगे कि पोती हुई है।
3: लोग कहेंगे और फिर चुप भी हो जाएंगे, लेकिन वह बच्ची तुम्हें दादी कहेगी, तुम्हारे बाल संवारेगी, तुम्हारी दवा लाएगी, तुम्हारा चश्मा ढूंढेगी और तो और तुम्हारे साथ मंदिर भी जाएगी और तुम कहोगे कि मेरी बिटिया सबसे प्यारी।
1: सच कहती हूँ।
4: हम लोग भगवान से स्वस्थ बच्चे की प्रार्थना करें, लड़का या लड़की तय करना इंसान के हाथ में नहीं और इसका महत्व भी नहीं होना चाहिए।
5: बहन जी
8: बधाई हो, बधाई हो।
3: क्या हुआ? अरे ऐसे मुंह काहे लटकाए हो, अभी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अब भगवान ने लक्ष्मी भेजी है तो चेहरा क्यों उतर गया? अरे सोच बदलो बहन, सोच।
4: और याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं समाज की शक्ति हैं, शिक्षिका हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रधान हैं, जज हैं, फाइटर पायलट हैं, खिलाड़ी हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश की राष्ट्रपति भी बेटी ही होती है।
5: मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा।
0: यही है नए गांव की पहचान, जहां किलकारी की आवाज़ सुनकर ये नहीं पूछा जाता कि बेटा हुआ है या बेटी, बल्कि ये पूछा जाता है कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं ना। अगले भाग में हम मिलेंगे नन्ही बिटिया से और जानेंगे जन्म के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, पहला पीला दूध क्यों अमृत है, शहद और घुट्टी सबसे पहले क्यों नहीं देनी चाहिए और काजल लगाने से क्या नुकसान हो सकता है, और फिर मनाएंगे छठी का उत्सव। बने रहिए गांव की गूंज के साथ। लाल

0: नमस्ते श्रोताओं, अभी अभी राम दुलारी के घर नन्ही बिटिया आई है। अस्पताल के बाहर परिवार की खुशी लौट रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बहन जी, जरा मेरी पोती को दिखाइए।
2: नहीं नहीं, आप घबराइए मत, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। देखिए ना, बिटिया कितनी प्यारी है।
1: अरे बिल्कुल आपके बेटे पर गई है।
3: तुम अभी भी उदास थी।
1: गीता, सच कहती हूँ, जब इसने मेरी उंगली पकड़ी ना, मन पिघल गया।
4: माँ, मैं भी गोद में लूँ क्या बच्ची को?
2: बच्चों को गोद में लीजिए, लेकिन पहले हाथ साबुन से धो लीजिए।
4: जी, बिटिया की उंगली कितनी कोमल और कितनी सुंदर लग रही है।
3: यही उंगलियाँ एक दिन लिखना सीखेंगी, चित्र बनाएंगी, किताब पकड़ेंगी, तुम्हारा हाथ थामेंगी
1: और शायद डॉक्टर बन जाए।
5: क्यों शायद?
6: दीदी, बच्ची रो रही है।
2: उसे माँ के सीने से लगाइए, फिर बच्ची नहीं रोएगी।
6: अभी?
2: हाँ, जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना बहुत अच्छा होता है।
3: हमारे समय में तो 2-3 दिन बाद दूध पिलाते थे।
5: काकी, पहले जानकारी कम थी। ये पहला दूध बहुत ताकतवर होता है, इसे अमृत भी कहते हैं। इससे बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है।
1: लेकिन मेरी दादी कहती थी यह गंदा दूध होता है।
5: नहीं अम्मा, अब डॉक्टर कहते हैं कि यही बच्चे का पहला टीका है,
1: इसे फेंकना नहीं चाहिए।
6: अच्छा।
7: अरे बहन, थोड़ा शहद लाई हूँ, जन्म के बाद चटा दो।
3: हम भी तो यही करते थे,
5: लेकिन अब यह नहीं करना चाहिए।
7: क्यों?
5: 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी भी नहीं।
1: पानी भी नहीं?
5: नहीं, माँ के दूध में सब कुछ है, पानी भी, पोषण भी और सुरक्षा भी।
7: अच्छा, तो घुट्टी?
5: नहीं, घुट्टी भी नहीं। पेट दर्द की दवा भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना चाहिए। बच्चा रोता है तो हमेशा भूख, गीलापन, गर्मी या गोद की जरूरत भी हो सकती है।
7: लो बहन, ये काजल बना लाई हूँ, बड़ी बड़ी आँखें होंगी और नजर नहीं लगेगी।
1: हाँ लगा दो।
3: हम भी लगाते थे।
5: अम्मा जरा रुकिए, आजकल वातावरण में बहुत प्रदूषण है, बाजार के काजल में सीसा भी हो सकता है, संक्रमण का खतरा होता है उसमें।
8: कई बार बच्चे अपनी आंख मल लेते हैं, आंखों में जलन हो जाती है, डॉक्टर भी काजल लगाने से मना करते हैं।
7: तो नजर कैसे उतारें?
3: प्यार से, दुआ से, मुस्कान से। नजर उतारने के लिए बच्चे की आंख में कुछ डालना जरूरी नहीं है।
5: बिल्कुल, बच्चे को साफ कपड़े पहनाइए, माँ को अच्छा भोजन दीजिए, यही सबसे अच्छी सुरक्षा है।
4: आज मैं बहुत बदल गया हूँ। पहले सोचता था कि बेटा होगा, लेकिन जब इसने मुझे रोकर देखा तो मुझे लगा भगवान ने मेरी दुनिया ही बदल दी।
0: तो श्रोताओं, आपने देखा, जानकारी से सोच बदलती है, प्यार से परिवार बदलता है, और जब परिवार बदलता है तो पूरा गाँव बदल जाता है। राम दुलारी की नन्ही बिटिया अब 6 दिन की हो चुकी है। आज घर में छठी की तैयारी चल रही है, तो चलिए चलते हैं उनके घर।
7: आज तो बड़ा सुंदर सजाया है घर।
1: हाँ बहन, हमारी पोती की छठी है।
3: अब तो सचमुच दादी बन गई हो।
1: हाँ गीता, पहले मन में थोड़ा भेद था, लेकिन अब लगता है घर में सचमुच लक्ष्मी आई है।
4: माँ तो बस दिन भर उसी को गोद में ले रहती हैं।
1: अरे क्या करूं, मुस्कुराती है तो मन खिल उठता है।
5: राम दुलारी कैसी हो?
9: पहले से ठीक हूँ।
8: खाना ठीक से खा रही हो?
3: क्या क्या खाती हो?
9: दाल, हरी सब्जी, मेवा और पंजीरी।
5: बहुत अच्छा, लेकिन घी बहुत ज्यादा मत खाना, संतुलित भोजन जरूरी है।
1: हम लोग तो जच्चा को केवल घी और गोंद के लड्डू खिलाते थे।
5: वो भी अच्छा है, लेकिन फल, सब्जियाँ, दालें, पानी भी उतनी ही जरूरी है।
0: श्रोताओं याद रखिए, प्रसव के बाद माँ को पौष्टिक भोजन और भरपूर आराम दोनों चाहिए होता है।
7: आज छठी है और कहते हैं कि आज भाग्य लिखने वाली देवी आती हैं।
3: यही तो हमारी सुंदर परंपरा है, इसे प्रेम से मनाइए।
5: लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, नवजात को भीड़ में ज्यादा ना ले जाएं, सभी लोग हाथ धोकर ही बच्चे को उठाएं।
8: और अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार हो तो बच्चे से दूरी बनाए रखें।
7: अच्छा एक बात पूछूं?
5: हाँ।
7: बच्चे को थोड़ा पानी दे सकते हैं?
5: नहीं, 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी नहीं, शहद नहीं, घुट्टी नहीं, ऊपर का दूध भी नहीं।
1: अब तो मुझे भी याद हो गया है।
3: अरे टीकाकरण कब होगा?
8: जन्म के समय कुछ टीके लग जाते हैं, आगे भी समय समय पर टीके लगवाने पड़ेंगे।
1: हमने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है।
3: क्या नाम?
1: आशा।
5: बहुत सुंदर।
8: आशा यानी उम्मीद।
3: और हर बेटी उम्मीद ही तो होती है।
0: बेटी घर का उजाला है, वह माँ की सहेली है, पिता का अभिमान है और दादी की मुस्कान है। मेरे

0: कितना प्यारा गीत। सचमुच हमारी बेटियां सपनों का संसार हैं।
1: पहले लोग कहते थे कि लड़की बोझ होती है, अब मैं कहती हूँ लड़की सबसे बड़ा सहारा होती है।
2: हाँ, मेरी बड़ी बेटी हर सप्ताह फोन करती है, दवा पूछती है।
0: छठी केवल पूजा नहीं होती है, ये संकल्प का दिन भी होता है। संकल्प ये है कि बेटा बेटी समान है, माँ का सम्मान करेंगे, टीकाकरण पूरा कराएंगे, स्तनपान को बढ़ावा देंगे, अंधविश्वास छोड़कर ज्ञान को अपनाएंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, और हमारी नन्ही बिटिया आशा अब 12 दिन की पूरी हो चुकी है। आज घर में बरही की तैयारी चल रही है, तो आइए चलते हैं राम दुलारी के घर।
2: अरे गीता, जल्दी आओ, आज बरही है।
1: आ गई बहन? अरे वाह, घर तो खूब सजाया है।
2: हाँ, पहले सोचती थी पोता हो जाता तो अच्छा था, अब तो लगता है भगवान ने मेरे बुढ़ापे का सहारा भेजा है।
3: अम्मा तो रात को भी उठकर उसे देखती ही रहती हैं।
2: क्या करूं, उसकी मुस्कान देखकर थकान ही चली जाती है।
3: राम दुलारी, तुम्हारी तबीयत कैसी है?
4: ठीक हूँ, लेकिन कभी कभी बिना वजह रोना भी आ जाता है मुझे।
5: बहुत अच्छा किया जो बता दिया।
2: अरे इसमें बताने वाली क्या बात, बच्चा हुआ है, कमजोरी तो होगी।
3: कमजोरी तो होती है अम्मा, लेकिन कभी कभी नई माँ बहुत उदास भी हो जाती है।
1: क्यों भाई क्यों?
3: शरीर में बदलाव होता है, नींद पूरी नहीं होती, बच्चा बार बार उठता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं।
0: श्रोताओं, अगर जच्चा बार बार रोए, चिड़चिड़ी हो जाए, किसी से बात ना करे, हमेशा थकी रहे, तो उसे डांटना नहीं चाहिए।
5: उसे आराम चाहिए, प्यार चाहिए, बातचीत चाहिए और सहयोग चाहिए।
0: राम दुलारी, ये बताओ इस समय तुम खाना क्या खा रही हो?
4: दूध, मूंग दाल, सब्जी, फल, पंजीरी और दही।
1: पानी कितना पीती हो?
4: पहले कम पीती थी।
3: हाँ, स्तनपान कराने वाली माँ को पर्याप्त पानी पीना चाहिए, और बहुत जरूरी भी है।
2: हम लोग तो कहते थे ठंडा पानी मत पियो।
3: गुनगुना या सामान्य पानी ठीक है, केवल पानी कम नहीं होना चाहिए।
5: और माँ को बहुत जल्दी भारी काम में नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 6 सप्ताह तक आराम जरूरी है।
1: यही तो सवा महीना कहते हैं।
0: देखिए श्रोताओं, हमारी परंपरा में भी बहुत ज्ञान छिपा है, लेकिन हमें वैज्ञानिक जानकारी के साथ उन्हें अपनाना चाहिए।

0: श्रोताओं, आज हमारी नन्ही आशा सवा महीने की हो गई है। घर में फिर से रौनक आई है, आंगन में महिलाएं बैठी हैं, चौपाल जमी है। चलिए हम भी बैठकर कुछ मजा करते हैं।
1: अरे बहनों, आज तो आशा खूब मुस्कुरा रही है।
2: रात में जागती है, लेकिन जब मुस्कुराती है तो सारी थकान दूर हो जाती है।
3: सवा महीना पूरा हो गया है, अब एक बार माँ और बच्ची दोनों की जांच करा लेना चाहिए।
4: हाँ, अगले हफ्ते अस्पताल ले जाऊंगा।
5: बहुत अच्छा, टीकाकरण कार्ड भी साथ रखिएगा।
6: दीदी एक बात पूछूं, बच्चे 2 साल बाद हों तो क्या अच्छा रहता है?
3: बिल्कुल, 2 बच्चों के बीच कम से कम 2-3 वर्ष का अंतर माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है।
1: हमारे जमाने में ये जानकारी कहाँ थी?
3: इसीलिए तो हम सब मिलकर जानकारी बांट रहे हैं।
4: इसका मतलब ये है कि परिवार नियोजन केवल औरतों की जिम्मेदारी नहीं है।
3: बिल्कुल नहीं, पति पत्नी दोनों की साझी जिम्मेदारी है।
0: यही तो समझदारी है। अब हम गाँव के कुछ बेटियों की बात करते हैं।
5: हमारी ब्लॉक की सीमा डॉक्टर बन गई है।
3: पड़ोस के पुलिस की शालिनी पुलिस अधिकारी है।
1: मेरी नातिन कंप्यूटर चलाती है, बैंक का काम भी वही करती है।
7: मेरी आशा भी खूब पढ़ेगी।
4: और अगर वो कहे कि अगर उसको खिलाड़ी बनना है
2: तो खिलाड़ी बनेगी।
1: अगर कहे कि पायलट बनना है
4: तो फिर वो पायलट बनेगी।
7: और अगर अध्यापिका बनना चाहे तो?
0: श्रोताओं, बेटियां सपने को पंख देती हैं। उन्हें अवसर दीजिए, विश्वास दीजिए और शिक्षित करिए।
3: और माताओं से एक विनम्र निवेदन, यदि प्रसव के बाद अत्यधिक उदासी, बेचैनी, घबराहट, नींद न आना या हमेशा रोने का मन करे तो उसे छिपाए नहीं,
5: डॉक्टर से सलाह लीजिए।
1: माँ भी एक इंसान है, उसे भी सहारे की जरूरत होती है।
7: अब मैं बहू को आराम भी करने दूंगी
4: और मैं अपनी बेटी को घुमाने भी ले जाया करूँगा।
2: अब मुझे डर नहीं लगता।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, सहयोगी परिवार और जागरूक समाज। आशा आई अंगना में, खुशियों की बरसात हुई। बेटी है भगवान का उपहार, जीवन की सौगात हुई। पढ़े लिखे आगे बढ़े, हर बेटी का यही अधिकार। हंसता गाता गांव हमारा, यही हमारा सत्कार। कितना प्यारा संदेश है। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है।
1: भाई आज मैंने बहुत कुछ सीखा,
7: मैं भी बदल गई हूँ।
4: और मैं अपनी बेटी का सबसे अच्छा मित्र बनूंगा।
2: और मैं उसे आत्मविश्वासी बनाऊंगी।
3: और हम सब मिलकर गांव की हर माँ तक ये जानकारी पहुंचाएंगे,
5: ताकि कोई माँ कुपोषित ना रहे, कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे, कोई परिवार अंधविश्वास में ना फंसे।
0: प्रिय श्रोताओं, जच्चा बच्चा की देखभाल केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। याद रखिए, गर्भावस्था में नियमित जांच कराइए, पौष्टिक भोजन खाइए, संस्थागत प्रसव कराइए, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराइए, 6 महीने तक केवल माँ का दूध दीजिए, काजल, शहद, घुट्टी और बिना सलाह की दवाइयों से बचिए, टीकाकरण समय पर कराइए और सबसे बढ़कर बेटा बेटी में कभी मतभेद मत कीजिए। किरण मिलकर हाथ बढ़ाएं, हम स्वस्थ गांव बनाएं, हम माँ मुस्काए बच्चा हंसे, ऐसा घर सजाएं हम, बेटी बेटा एक समान, यही हमारा हिंदुस्तान। ज्ञान, प्रेम और सम्मान से रोशन हो हर एक मकान। हम फिर मिलेंगे गांव की गूंज में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
10: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
9: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
10: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
9: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
11: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
12: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
13: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
14: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
15: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
16: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
17: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
18: मतलब?
17: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
19: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
11: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
10: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
9: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
10: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
9: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
20: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
21: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
20: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
21: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
20: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज गोंडा।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम और वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान एसटी लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई कैसे हैं आप सब, फटाफट से बताएं अपना हाल चाल क्योंकि आज मौसम है ज़बरदस्त और दिन भी है बहुत मस्त और मूड तो है ज़बरदस्त क्योंकि आज है आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला डे यानी कि सैटरडे। आज है सैटरडे सैटरडे सैटरडे और सैटरडे हमारा होता है फुल ऑन ऐसा दिन जिस दिन मस्ती भी होती है, थोड़ा सा हम रिलैक्स भी होते हैं और जो सबसे अच्छी लगती है ना हमें वो होती है हमारी सैटरडे मॉर्निंग। यानी कि आपकी सैटरडे मॉर्निंग से ही ये शुरू हो जाता है ना कि अरे वाह संडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, फिर सैटरडे की शाम आती है तो हम रिलैक्स होते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आराम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं सैटरडे इट्स वेरी रिलैक्स वाला डे। तो आज इस रिलैक्स वाले डे को हम सेलिब्रेट करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आपके अपने वाले शो ज्ञान असली लाइव में जिसमें की आती है आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत तहे दिल से स्वागत है उनका भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं और उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं। फटाफट से आइए, मैसेजेस कीजिए, अपनी अटेंडेंस लगाइए और बताइए कि आप सभी का हालचाल कैसा है, कैसे हैं आप सब और क्या महसूस कर रहे हैं आज के इस प्यारे से दिन पे। प्यारा सा दिन है आज और आज इस प्यारे से दिन के साथ एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि आज सैटरडे है इसलिए प्यारा सा दिन है, लेकिन सिर्फ सैटरडे है इसीलिए प्यारा सा दिन नहीं है, आज कुछ और भी है। तो आज के दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है, आज के दिन में बहुत ही खूबसूरत सा एक

पहले बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम सभी बचपन से महसूस करते हैं। तो आज उसी फीलिंग को लेकर के बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ और इस लाइन के बाद बताती हूँ कि आखिर आज है क्या। तो पोइट्री कुछ इस तरह शुरू होती है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। घर के सबसे प्यारे कोने में जो मुस्कुराते रहते हैं, घर के सबसे प्यारे कोने में जो मुस्कुराते रहते हैं, वो दादा दादी नाना नानी दुआओं के सागर बहते हैं। जब भी छूते हैं सर को वो हर एक डर मिट जाता है, उनके हाथों की छुअन से सीधा दिल को सुकून आता है। मोबाइल की दुनिया छोड़ो, ज़रा उनके पास भी बैठो तुम। मोबाइल की दुनिया छोड़ो, ज़रा उनके पास भी बैठो तुम। पुरानी यादों के संदूक से हंसी किस्से कुछ समेटो तुम। वो परियों की कहानी सुनाना, वो लोरी गाकर सुलाना। आज फिर से ली वो पल की छड़ी हाथों में, आज फिर से ली उन पलों की छड़ी हाथों में। झुर्रियों से भरे उन हाथों में तजुर्बों की एक किताब है, उनके दिए संस्कार इस दुनिया में कहाँ हिसाब है। डांट में भी छुपा है प्यार, आँखों में बस है दुलार और दुलार। सच कहें तो बुज़ुर्गों से ही सचता हमारा परिवार है। आज चलो एक वादा कर ले, उनका दिल न दुखाएंगे, हर दिन थोड़ा वक्त निकाल कर उनके पास हम जाएंगे। जिनके होने से रोशन है घर, वो सबसे अनमोल खजाना है। दादा दादी नाना नानी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। दादा दादी नाना नानी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज दादा दादी और नाना नानी की बातें क्यों हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज है ग्रैंड पेरेंट्स डे। यस, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि घर के जो बच्चे हैं वो मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ें। अपनी जड़ों से जुड़ने का मतलब है यानी कि वो अपनी दादा दादी नाना नानी इनके प्रति जो प्यार उनके दिल में है, जो सम्मान है, जो लगाव है, उसे कहीं ना कहीं उनको बताएं, उनसे बात करें, सेलिब्रेट करें। ग्रैंड पेरेंट्स डे जो आज के दिन यानी कि 12 सितंबर को मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चों के दादा दादी नाना नानी, उनके प्रति बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, हमेशा ये समझें कि उन्हें रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ प्यार से रहना है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बच्चों का और उनके दादा दादी का जो एक बॉन्ड है वो आगे जाए। इसलिए आज के दिन ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। और वैसे भी अगर आप बच्चों से पूछेंगे बिना कि बिना किसी शर्त के उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो उनके मन में जो सबसे पहला नाम आएगा वो उनके दादा दादी और नाना नानी का ही आएगा। आज की इस दुनिया में यानी कि कहीं ना कहीं फ़ोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स में हम खोए रहते हैं। सिर्फ आपकी एक मुस्कान के लिए आपके दादा दादी नाना नानी इंतज़ार करते हैं। आज भी उनके पास कहानियों का खजाना है, आज भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। वो आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे पास सुनने का वक्त कहाँ है। तो आज के दिन यानी कि सिर्फ हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे उन्हें विश करने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उन्हें हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे विश कर रहे हैं, तो आज के दिन अपना थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास बैठिए, उनके हाथ थामिए, उनसे उनके बचपन के किस्से सुनिए, उन्हें के बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। याद रखिए, आपका दिया हुआ थोड़ा सा समय और प्यार उनके चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ला सकता है, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं मिल सकती। तो रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM और ज्ञानश्री लाइव शो की तरफ से और मैं मेरी तरफ से भी जितने भी इस वक्त बच्चे सुन रहे हैं हमें और या उनके ग्रैंड पेरेंट्स सुन रहे हैं, सभी को सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, विश यू अ वेरी हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे आप सभी को। क्योंकि हमारे जो दादा दादी और नाना नानी होते हैं ना, वो हमारे सिर पे एक छांव की तरह होते हैं, जिनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूरी हैं।
और जो बच्चे सुन रहे हैं उसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर उन्हें दीजिए और ढेर सारा उनके साथ समय बिताइए। तो आइए लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, शॉर्ट सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए सुने और बने रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शहर की धड़कन और धड़कन का दिल धड़काने वापस आ चुकी हूँ लेकर के आपका अपना फेवरेट वाला प्रोग्राम, जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक हमने बात की बहुत ही प्यारे से हमारे रिश्ते के बारे में, जो होता है हमारा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत। अब आइए लेकर के चलते हैं कि हमारा जो सैटरडे का थीम होता है, यानी कि सैटरडे मस्ती वाला डे, जिसका की थीम होता है आज के दिन बॉलीवुड न्यूज़, कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस फिल्म ने किए हैं कितने साल कंप्लीट। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में और बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं अवार्ड्स पे। हाल ही में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बहुत सारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है स्त्री 2 के लिए। स्त्री 2 साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के लिए आज की रात के लिए विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड भी मिला है। वाह। और इसी के साथ अक्षय कुमार और बाकी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्हें की अवार्ड मिले हैं। तो आइए अब बताते हैं आपको कि कौन कौन सी फिल्म है जो कि आज धमाल, मतलब जिसने किया है बहुत ही धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल। तो आइए बताते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म, अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म जो कि है हैवान, हैवान, उनकी फिल्म हैवान ने कल यानी कि 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन करीब 3 करोड़ की ओपनिंग की है, यानी कि पहले ही दिन फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की कमाई की है, और जिससे अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि फिल्म जो है वो धूम धूम धूम मचाने वाली है, यानी बहुत सारा कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे धमाल करने वाली है। और बॉक्स ऑफिस को तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस पे तो धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल होने ही वाला है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, जो कि है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर द मूवी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी और रवि किशन स्टार्टर, इस फिल्म भी इसी हफ्ते खूब चर्चा में रही है, जिसको लेकर के जो दर्शक हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, मिलीजुली बातें हैं, किसी को फिल्म बहुत अच्छी लगी है, सभी ने देखी है और सभी ने इन्जॉय भी काफ़ी किया है, और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल किया है। तो आइए अब बताते हैं आपको कि आज किस मूवी की एनिवर्सरी है। तो अगर बात करें पुरानी यादों की, कुछ जाएं पुरानी गलियों में, तो आज यानी कि 12 सितंबर को बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा रशिका जोशी की फिल्म भूल भुलैया, जानकी बुआ, ढोल या ब्रिज द बॉस जैसे कॉमेडी किरदारों के लिए आज पूरा बॉलीवुड उन्हें याद करता है। रशिका जोशी एक बेहद ही कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, और उन्होंने ये सारी जो भी फिल्में दी हैं उन सभी की आज एनिवर्सरी है, आज यानी कि 12 सितंबर को। कंगना रनौत की मुख्य भूमिका वाली तमिलनाडु की फिल्म जो कि सीएम जयललिता की बायोग्राफी थी, उसने भी इसी हफ्ते 10 सितंबर को अपनी रिलीज डेट को पूरा किया है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं उसकी भी एनिवर्सरी इसी 10 को सेलिब्रेट की गई है। सो आइए अब बात करते हैं कि क्या कुछ अच्छे काम, कहते हैं ना कि हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं वो मूवीज़ में हमें एंटरटेन करने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे जेस्चर करते हैं जिनको कि हम सुन सकते हैं और उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार और सारा अली खान की। इसी हफ्ते अपनी फिल्म हैवान की रिलीज के मौके पर अक्षय और सैफ ने मुंबई में एक विशेष स्क्रीनिंग की। इस स्क्रीनिंग में फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाओं के लोग भी जुड़े थे जिनकी की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है, काफी इंस्पायर हो रहे हैं लोग इससे। और मैं बता दूं कि इसी हफ्ते सोशल मीडिया पर सारा अली खान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है जिसमें वो चुपचाप सड़कों पर जरूरतमंद लोगों के लिए की मदद करती हैं, उन्हें खाना और मदद देती नजर आईं। सबसे खास बात यही है कि उन्होंने मीडिया को इसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया ताकि इसे एक पब्लिसिटी स्टंट ना माना जाए। उनके इस बहुत ही अच्छे एंड कहीं ना कहीं सच्ची बातों के लिए लोग उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उनकी काफ़ी सराहना भी की जा रही है। ये माना जा रहा है कि सारा अली खान ने जो रिकॉर्ड करने से मना किया वो इसीलिए किया क्योंकि उनका मानना ये था कि वो जो भी गरीबों की मदद कर रही हैं और जो भी कर रही हैं वो अपने दिल से कर रही हैं और ये चाहती हैं कि इसकी कोई पब्लिसिटी ना हो, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट ना बने। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को ये लगता है ना कि हम कोई भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग हमें देखें, हम एस्टैब्लिश हों, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें मन की खुशी मिलती है। और यही कहना था सारा अली खान का भी। तो अभी अभी आपने जाना कि किस मूवी ने कितने साल कंप्लीट किए हैं, कौन सी मूवी है जो बॉलीवुड में धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, और हमारे कौन से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं और जिन्होंने किए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे काम। तो हमने ये सारी ही चीज़ें जान ली। अब जानते हैं कि भाई वो कौन सी मूवी या सीरीज़ है जिसने मचा रखा है OTT पर धमाल। तो मैं आपको बता दूं कि द ब्रदर्स ऑफ बॉलीवुड, द ब्रदर्स ऑफ बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स पे धमाल मचा दिया है। आर्यन खान के निर्देशन में बनी ये स्टार्टर ड्रामा सीरीज नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे नेपोटिज्म, संघर्ष और आउटसाइडर की कामयाबी की कहानी को इसमें बेहद शानदार और कॉमेडी के अंदाज में दिखाया गया है जो लोगों को कहीं ना कहीं सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कर रही बल्कि अपने साथ जोड़ भी रही है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो भाई बहुत ही अच्छी है ये, आप भी ज़रूर देखें द ब्रदर्स ऑफ बॉलीवुड। बहुत ही अच्छी है, OTT सीरीज़ है जिसने कि अभी अभी बस कहीं ना कहीं धमाल मचाया है और लोगों में हासिल किया है बहुत सारी तारीफ। और साथ ही साथ में यूथ्स के हों या किसी भी जनरेशन के लोग हों, बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ उनमें पसंद की जा रही है। तो आइए लिसनर्स, चलिए चलते हैं सीधे से एक बहुत ही प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस आऊँगी इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार, तो लेकर के आऊँगी बॉलीवुड के कुछ ऐसे सॉन्ग्स की अपडेट जो कि आपको कर देगी मस्त, क्योंकि भाई हमें सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जानना तो बनता है ना कि इस समय कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ और वापस आएंगे वो भी सॉन्ग के साथ, लेकिन वो होगी कुछ इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9761। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए आप बात करते हैं उन सॉन्ग्स की जिन्होंने कि इस वीक मचा रखा है फुल ऑन धमाल धमाल धमाल धमाल धमाल। तो सबसे पहले मैं जिस सॉन्ग की बात करने जा रही हूँ वो है तेरा मेरा रिश्ता, जो कि फिल्म आवारापन 2 से है और साथ ही साथ है गहरा हुआ, जो कि है फिल्म धुरंधर से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉन्ग्स को ही लेकर के कि आवारापन 2 और धुरंधर का जलवा इस हफ्ते ये नया वर्जन तेरा मेरा रिश्ता जो कि अरिजीत सिंह का गाया हुआ, सॉरी तेरा मेरा रिश्ता और इसी के साथ गहरा हुआ जो कि अरिजीत ने गाया है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि गाना वीकली चैट्स पर टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। और लव सॉन्ग्स का भी अगर कहें तो बोलबाला है कि लिस्ट में लव सॉन्ग्स जो हैं वो लव गानों की थीम भी बेस्ट है, बहुत ही पसंद की जा रही है लव सॉन्ग्स को भी। तो आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में जो कि नेक्स्ट सॉन्ग है अर्ज़ किया है। अर्ज़ किया है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, मैं आपको बता दूँ कि गहरा हुआ एक रोमांटिक ट्रैक है जो प्यार में डूब जाने का एहसास दिलाता है और इसी के साथ साइबा जो है वो मॉडर्न लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखाता है और साथ ही साथ में प्यार में जो इंतज़ार होता है उसे जोड़ता है। अर्ज़ किया है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सर्ट वाली वाइब आपको दे जाता है और साथ ही साथ बेहद रूहानी सा एहसास भी देता है, बेहद प्यारा एहसास देता है। और अगर बात करें सयारा की तो सयारा के नए वर्जन को कश्मीरी और सूफ़ी दोनों ही टच दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कहीं ना कहीं अधूरे प्यार में कैसी बेबसी होती है, उस खूबसूरती को उस प्यार को पूरी तरीके से ये प्रेजेंट करता है। और तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता एक नया वर्जन है जो आज के जनरेशन के साउंड्स का कहीं ना कहीं बेहतरीन मेल है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तेरा मेरा रिश्ता हो या अर्ज़ किया है या फिर गहरा हुआ, ये सारे ही सॉन्ग्स जो हैं वो टॉप ट्रेंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। बॉलीवुड की कहते हैं ना कि जब भी सॉन्ग्स की बात आती है और हमारी ये सॉन्ग को चूज़ करने की बात आती है तो हम हमेशा इस पॉइंट पर सॉन्ग्स को चूज़ करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं कि सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या है, कहीं ना कहीं एक सॉन्ग्स के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि कुछ पुराने गानों के साथ, पुरानी मूवीज़ के साथ और पुराने एक्टर एक्ट्रेस के साथ, पुरानी फिल्म्स के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए कहते हैं कि हर गाने के साथ, हर सॉन्ग के साथ कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा होता है, कुछ मिला होता है, कुछ एक बहुत ही अच्छी सी सिर्फ उनमें फीलिंग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत पसंद आती हैं। इसीलिए नेक्स्ट अगर सॉन्ग की बात करें तो तुम्हारे ही रंग में रंगे हम, जो कि है स्त्री 2 जिसे गाया है वरुण जैन और शेफाली राव ने। सो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग ये भी है। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो कि इस वीक आई हैं सॉन्ग्स की। ये थी सॉन्ग्स की अपडेट्स और साथ ही साथ में अभी आपने जाना कि हमारे बॉलीवुड की गलियों में क्या कुछ चल रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या बहुत पसंद किया जा रहा है और किस किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने किए हैं कौन से बहुत ही बेहतरीन काम भी। सो आइए लिसनर्स आप चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। इस सॉन्ग के उस पार आऊँगी कुछ 90s की अपडेट्स लेकर। 90s की अपडेट्स में क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे कि आखिर हम क्यों जाने वाले हैं 90s में और क्या बताने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद प्यारा वाला, बेहद पसंदीदा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो जिसका की नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अर्शिका। और आज का हमारा दिन है मस्ती डे, मस्ती वाला फुल ऑन डे, जो कि होता है बॉलीवुड की गलियों से गुजरते हुए, यानी कि आज सैटरडे, जिस दिन हम बॉलीवुड अपडेट्स की बात करते हैं, किसे क्या अवार्ड मिला है, किसने क्या अच्छा काम किया है, किस मूवी ने किया है कितना धमाल, ये सारी ही बातें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मूवीज़ जो इतनी देखी जाती हैं, इतनी पसंद की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ हम इसलिए नहीं देखते। और इसी के साथ महेंद्र जी आ गए हैं, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू महेंद्र जी। हम सिर्फ इसलिए नहीं सुनते हैं ताकि मूवीज़ इसलिए नहीं देखते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम एंटरटेन हों, हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि हमें उनमें से कुछ अच्छा मिलता है और कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होना चाहते हैं। तो आज बात करते हैं 90s की कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी मूवीज़ की। तो सबसे पहले जिस मूवी की मैं बात करने वाली हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने 90s की ये मूवी नहीं देखी होगी, यानी कि ये मूवी है भाई हिट, ब्लॉकबस्टर हिट, हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन ज़रूर सभी ने देखी होगी, और आज भी जब टीवी पे आती है ना तो कहीं ना कहीं मतलब क्या ही कहना। और इसका सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना, तो मतलब क्या ही क्रेज़ था उस गाने का, और आज भी है। माधुरी दीक्षित की वो बैंगनी रंग की साड़ी, और मतलब इतनी पसंद की जाती थी, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग उस समय पे वो साड़ी होती थी। और ये गाना तो आज भी मतलब त्योहारों के सीज़न में, शादियों के सीज़न में ज़रूर आता है। और साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर एक और बात है जो बहुत याद की जाती है, और वो है इस फिल्म में टफी नाम का जो स्प्रीट डॉग होता है उसके बारे में। असल में फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जातिया ने जिस पेट यानी कि टफी को इस फिल्म में यूज़ किया है, वो खुद उन्हीं का पेट है। फिल्म हिट होने के बाद टफी इतना ज़्यादा बड़ा स्टार बन गया कि उसे कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स के ऑफ़र भी मिले। फिल्म की रिलीज़ के बाद भारत में इस ब्रीड के जो कहीं ना कहीं जो डॉग्स थे उनकी कहते हैं कि लागत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब लोग वैसे ही डॉग्स चाहते थे, अपने घर पे वैसे ही डॉग्स को रखना चाहते थे अपने पेट के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये गाने, ये सॉन्ग्स और ये फिल्म का तो क्या ही कहना, मतलब एक एक सीन और कहीं ना कहीं शायद एक एक डायलॉग जो है वो हमें पूरी तरीके से याद हो गया है। और मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म ये थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था, और उस टाइम में टिकट की कीमतें बहुत कम होती थी, फिर भी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में महीनों तक की भीड़ लगी रहती थी। लोगों को लोग टिकट्स खरीदने के लिए बिल्कुल ये होते थे कि उनको कितनी जल्दी इस फिल्म की टिकट मिल जाए। और कहीं ना कहीं आज भी वही क्रेज़ है कि जब भी ये फिल्म टीवी पे आती है तो चाहे दीदी तेरा देवर दीवाना हो, चाहे जूते दो पैसे लो, चाहे कोई भी इसका गाना हो, चाहे मौसम का जादू, हम सुनने और देखने के लिए बिल्कुल ये होता है कि जल्दी से ये मूवी आए और हम इसे देख पाएँ। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, जो कि बहुत ही अच्छी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, जो कि है हम साथ साथ हैं। 1999 में आई मूवी हम साथ साथ, जिस फिल्म में सपना यानी कि सलमान खान अन्य के अपोजिट सपना का रोल जो निभाया था वो सलमान खान के अपोजिट माधुरी दीक्षित ने निभाया था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने जो है वो मना कर दिया और इस फिल्म में उन्हें माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में ये रोल निभाया था कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ में उनकी भाभी का रोल जो था वो मोहनीश बहल की वाइफ का जो रोल था वो निभाया था। और साथ ही साथ में सबसे पहले सलमान खान के साथ हम आपके हैं कौन में भी माधुरी दीक्षित रह चुकी थी। और हम साथ साथ में कहीं ना कहीं जो माधुरी दीक्षित हैं उन्होंने यह फिल्म नहीं की थी, जिसकी वजह से सलमान खान के अपोजिट दूसरी हीरोइन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट किया गया था। सो आइए अब बात करते हैं करिश्मा कपूर के रोल की, जो कि इसमें बहुत पसंद की गई। चाहे फिर हम बात करें सैफ अली खान की, उन्हें भी इस मूवी में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फिल्म में इतने सारे सितारे थे, मतलब कहीं ना कहीं आज भी, लेकिन हम नाम नहीं भूलते हैं, सलमान, सैफ, तब्बू, करिश्मा, सोनाली बेंद्रे। लेकिन सेट पे ऐसे कोई, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब सेट लगता था और शूटिंग होती थी तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पूरी एक, कहते हैं ना जैसे जॉइंट फैमिली होती है और भरी पूरी फैमिली होती है, बिल्कुल वैसा ही एक सीन बन जाता था। सभी एक्टर, सभी एक्ट्रेस एक बड़े से हॉल में साथ बैठकर लंच करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, ताकि उनका जो बॉन्ड है, यानी कि जब वो अपना परफॉर्म करें जा करके, तो उनका वो रियल बॉन्ड कहीं ना कहीं नज़र आए। इसीलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ एक मूवी दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, पूरी मल्टी स्टार कास्ट की बॉन्ड होती है, कितनी सारी मेहनत होती है। और अगर बात करें फिल्म के गानों की, तो इस फिल्म का गाना ABCD आज भी बच्चों में और फैमिलीज़ में बहुत पसंद किया जाता है। गाने को जब शूट किया गया था तब सैफ अली खान अपने डांस स्टेप भूल जाते थे, जिसके बाद सलमान खान कैमरे के पीछे खड़े होकर सैफ को स्टेप्स याद दिलाते थे। सो कहीं ना कहीं यही बॉन्ड, यही प्यार जो पर्दे पर भी नज़र आया और बेहद पसंदीदा ये लोगों में पसंद की गई फिल्म जो की थी हम साथ साथ हैं। तो आज इन दोनों ही फिल्म्स के बारे में बताने का मोटिव यही था कि अब हम हर सैटरडे ऐसी किसी न किसी मूवी के बारे में बात करेंगे, उनकी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ पुरानी गलियों से ढूंढ कर लाएंगे पुरानी यादें, पुरानी बातें, क्योंकि जब भी बात निकलती है बॉलीवुड की और उनकी फिल्मों की तो हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग से वापस आएंगे और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले महेंद्र जी का मैसेज है जो कि मैं पढ़ लेती हूँ। उन्होंने लिखा है, सही कहा अंशिका मैम जी, फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी कोई सीख, कोई संदेश या कोई ऐसी बात ज़रूर छिपी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ फिल्में हमें हंसाती हैं, कुछ भावुक करती हैं और कुछ ज़िंदगी का एक नया नज़रिया देती हैं। मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म वही है जिसे देखने के बाद मनोरंजन के साथ कुछ ऐसा सीखने को भी मिले। बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी। तो आइए इसी प्यारी सी बात के साथ लिसनर्स सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100।
5: अब आई हूँ जाने के लिए, क्योंकि वक्त हो गया है जाने का। तो चलिए, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे मिलती हूँ आपके अपने पसंदीदा वाले शो में, जो कि है सुन सहेली। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो को। बाय बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सेहत सही लाभ कई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कोई आम स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, यहाँ हम सेहत के साथ साथ बचत की बातें भी करते हैं। एक स्वस्थ शरीर न केवल जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूत करता है। और इसी संदेश को लेकर आज फिर हमारे साथ हैं सेहतिया भैया।
4: प्रणाम साथियों, सेहत से बड़ा कोई धन नहीं और सही जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज स्टूडियो आते वक्त सविता ताई मिली, चेहरे पर ऐसी खुशी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। मैंने पूछा तो बताया कि उन्होंने हमारे शो पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के बारे में सुना है। उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था, डॉक्टर ने भर्ती और टेस्ट बताए थे, पैसे की चिंता थी, बट अब PMJAY के जरिए उन्हें हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अब ना किसी का एहसान और ना उधार का बोझ।
3: वाह, ये सुनकर तो दिल खुश हो गया। जब शो से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है तो हमारा मकसद पूरा होता है। PMJAY के तहत अस्पताल में भर्ती से पहले के 3 दिन और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की जांच व दवाओं का खर्च भी शामिल है। भारत में हर साल लाखों लोगों का स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करने के कारण आर्थिक दबाव ज्यादा पड़ जाता है, जिससे उनको अपना जमीन जायदाद खेत खलिहान बेचने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में ये योजनाएं एक असली राहत होती हैं और इस जानकारी को पहुंचाने का श्रेय टीकन भाभी और सेहतिया भैया आपको जाता है।
4: अरे अब आप लोग भी बस हर एपिसोड में मुझे ही श्रेय देते रहते हैं। सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जरिया तो आपने दिया है। अरे बस एक मिनट, ये फोन भी ना यार, हर वक्त बज जाता है। जी हाँ, आप आ गए। अच्छा, कहाँ कहाँ हो गया? जिले में सब जगह कूलर नाली सब जगह। अब तो सब सुरक्षित है ना? चलो, बीमारी से बच गए, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आखिर किसके साथ बातचीत हो रही है भैया? कौन सुरक्षित है, कौन बीमारी से बच गया है, जरा बताइए तो।
4: बात ये है कि हमारे गांव में अभी अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी। अच्छा। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए दवा छिड़काव करने के लिए। अब आपको तो पता ही है, जैसे हमारे देश में मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोग प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। इन रोगों का प्रभाव न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा पड़ता है। उसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग से कॉल आया था कि हम हर जगह दवाई का छिड़काव कर चुके हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया थोड़ा माफ करिएगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मेरी समझ थोड़ी सी कम है। आपने अभी वेक्टर शब्द का प्रयोग किया, इसका क्या मतलब है?
4: अरे नहीं नहीं, माफी की जरूरत नहीं है। वेक्टर वो कीड़ा होता है जो इंसान या जानवर से बीमारी लेकर दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। अक्सर ये छोटे मच्छर या फिर मक्खियां जैसे खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। जब ये किसी

0: हर इंसान या जानवर का खून चूसते हैं तो उनके शरीर में बीमारी वाले कीटाणु चले जाते हैं। फिर जब वही कीड़ा किसी और को काटता है तो वो बीमारी आगे फैल जाती है। एक बार अगर कीड़ा बीमारी वाला बन गया तो वो जिंदगी भर दूसरों को बीमारी देता रहता है।
1: ओह अच्छा, तो ये जीव बीमारी फैलाने वाले वाहक होते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश में सबसे आम वेक्टर है मच्छर, बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, और कुछ टिक्स या जू जैसे कीड़े। ये जीव किसी बीमार व्यक्ति या जानवर को काटकर उसके शरीर में मौजूद वायरस या परजीव अपने अंदर ले लेते हैं, और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वही वायरस उसके शरीर में चला जाता है। इस तरीके से बीमारी फैलती है।
1: अच्छा सेहतिया भैया, एक बात और बताइए, इन बीमारियों के उदाहरण क्या हैं?
0: भारत में जो प्रमुख वेक्टर जनित बीमारियां हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है मलेरिया का, जो कि एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, डेंगू एडीज मच्छर से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, और काला आजार बालू मक्खी से फैलता है। डेंगू मलेरिया बारिश में ज्यादा होते हैं, जबकि फाइलेरिया और काला आजार कुछ खास इलाकों में साल भर पाए जाते हैं। समय पर इलाज ना होने पर ये बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं।
1: अच्छा मलेरिया, मुझे तो लगा था कि ये तो बीते जमाने की बात है, तो क्या ये बीमारी आज के समय में भी गंभीर है?
0: अरे किस दुनिया में जी रहे हैं दीदी। मलेरिया भले ही पहले से कम हो गया है, लेकिन ये बीमारी आज भी भारत के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक करीब 1.3 लाख मलेरिया के केस सामने आते रहते हैं हर साल। भारत सरकार ने मलेरिया को 2030 तक पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जब तक अंतिम केस सामने आ रहे हैं तब तक हमें सतर्क रहना ही होगा।
1: मुझे तो बस ये मालूम है कि मलेरिया में ठंड लगती है, पर मलेरिया आखिर होता कैसे है?
0: बुखार और ठंड तो इसके लक्षण है ही, लेकिन मैं आपको और जानकारी दूंगा, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है।
3: इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है।
2: सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है।
0: तो श्रोताओं, मलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये परजीवी उस व्यक्ति के खून में पहुंच जाता है और लीवर में पनपकर शरीर को बीमार कर देता है। मलेरिया के आम लक्षण हैं तेज बुखार आना, ठंड लगना, बदन दर्द, पसीना आना, सिर दर्द और कभी कभी उल्टी और बहुत ज्यादा थकान। बच्चों और बुजुर्गों में ये और भी गंभीर हो सकता है।
1: पर इसका इलाज तो है ना?
0: इलाज आज के समय में बिल्कुल आसान है। सभी सरकार स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका इलाज और जांच बिल्कुल मुफ्त है। जरूरी ये है कि बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं। मलेरिया की पुष्टि ब्लड टेस्ट से होती है और उनके अनुसार दवाइयां दी जाती हैं।
1: मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोता ये जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल भी आने शुरू हो गए। रमेश जी का पूछना है कि उनके पिताजी को डेंगू हो गया है जो मच्छर के काटने से होता है, तो क्या मलेरिया और डेंगू दोनों बीमारियां एक है, बस नाम अलग अलग है?
0: अरे रमेश जी, दोनों ही वेक्टर जनित बीमारियां हैं और मच्छर इनके मुख्य फैलाने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, जबकि डेंगू फैलता है एडीज एजिप्टी मच्छर, और ये मच्छर दिन में काटते हैं, यानी कि मलेरिया वाला मच्छर ज्यादातर रात में सक्रिय होता है और जबकि डेंगू वाला मच्छर सुबह और दोपहर के समय काटता है। इसीलिए हमें दिन और रात दोनों समय सतर्क रहना चाहिए।
1: एक और खास बात मैं बताना चाहती हूँ, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर अक्सर गंदे या स्थिर पानी में, जैसे गड्ढे, नालों या झाड़ियों के आसपास जमा पानी में अंडे देते हैं, और डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, जैसे फूलदान, पानी की टंकी, कूलर, बोतल के ढक्कन या किसी खुली जगह में जमा साफ पानी।
0: बिल्कुल सही, तो दोनों मच्छर पानी में ही पनपते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये डेंगू वाला मच्छर साफ पानी पसंद करता है और मलेरिया वाला मच्छर अक्सर गंदे पानी में पाया जाता है।
1: और डेंगू का प्रमुख लक्षण तेज बुखार होता है। इसके साथ सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकावट और शरीर पर चकत्ते भी आ सकते हैं। गंभीर मामलों में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। एक प्रोमो मैं भी सुनाना चाहती हूँ।
4: 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है,
5: शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है।
4: डेंगू?
5: डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्त स्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें।
0: सही बात है, डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, इसलिए समय पर रोकथाम जरूरी है। इलाज सिर्फ लक्षणों को कम करने पर होता है, जैसे बुखार में पैरासीटामोल देना, खूब पानी पिलाना और आराम करवाना। एस्पिरिन या ब्रूफेन ना देना, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट्स बढ़वाने के लिए पपीते का रस, अनार, कीवी, नारियल पानी, गिलोय और चुकंदर जैसे चीजें देना फायदेमंद होती है। मरीज को एस्पिरिन या ब्रूफेन जैसी दवाइयां बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे खून बहने का खतरा बढ़ सकता है।
1: इसके अलावा घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। सप्ताह में एक बार पानी की जगहों को खाली करके साफ करें। पूरी बाहों के कपड़े पहने, मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। बच्चों को स्कूल भेजते वक्त विशेष ध्यान दें और याद रखें, सफाई ही बचाव है। पर आगे बढ़ने से पहले हम हमारे शहर के डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर की कुछ अहम बातें सुन लेते हैं।
6: मैं रणजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन, महाराजगंज। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया के बारे में जानेंगे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है, हमारे आसपास जो गंदगी फैलती है, जो गंदा पानी इकट्ठा होता है गड्ढे में, नालियों में, तालाबों में, या गंदगी जहाँ होती है, झाड़ झंखाड़ जहाँ होते हैं, वहाँ ये पनपते हैं। और ये पनपने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घातक बन जाते हैं। ये मच्छर काटने से होते हैं और मच्छर जो है ऐसी जगह पे ही अपने लार्वा यानी अंडे देते हैं। और ये मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो एक मादा होती है। अगर इसका हम लोग सही तरीके से बचाव ना करें तो ये बहुत घातक साबित हो जाती है और इसमें जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान भी जा सकती है। मच्छर जो पनपते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में सबसे पहले क्या होता है कि हमें तेज़ बुखार आता है, कपकपी के साथ होता है, ठंड भी लगता है और पसीना भी छूटता है, सिर में दर्द भी होता है। सिर के में दर्द के साथ साथ शरीर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, थकावट भी होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, उल्टी भी होती है, जीभ भी मचलाता है, भूख में कमी भी आ जाती है और दस्त भी होती है, यानी कई बार पेट खराब हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, सांस फूलता है। और एक ये मस्तिष्क मलेरिया भी का रूप हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इसका अगर बुखार कपकपी के साथ आ रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुरंत जो है अपने ही जो नज़दीकी अस्पताल हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जैसा भी हो, वहाँ जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सलाह के बाद डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सबसे पहले खून की जांच कराइए। खून की जांच में ही कंफर्म होता है कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। तो उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत के तुरंत जो है खून की जाँच करानी चाहिए। और खून की जाँच कराने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से जो है उसका जो है इलाज होना चाहिए। यदि मरीज को गंभीर लक्षण हैं तो डॉक्टर उन्हें तरल पदार्थ, दवाइयाँ और अन्य उपचार दे सकते हैं। और बचाव के लिए ये भी है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, मच्छर काटने से बचने के लिए, जैसे मॉर्टिन हो गया, गुडनाइट हो गया, अन्य चीज़ों का भी घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान ना हो रहा हो। इसके बाद जो भी आसपास के गड्ढे हैं, उन गड्ढों को साफ़ कर दें या उसमें मिट्टी डाल दें जिससे उसमें पानी ना रुके। अगर आपके घर में कूलर है या फिर बाल्टी में पानी है तो प्रयास ये करें कि पानी पहली बात तो रुके ना, और बर्तन का पानी रात में निकाल करके उसको पलट के रख दें जिससे पानी ना रुके। और जैसे कूलर का पानी अगर क्या कहते हैं कि नहीं खाली कर पा रहे हैं तो उसमें जो है आप छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना पनपें। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना पनपे, और इसके बाद इससे मलेरिया अगर अपने लार्वे या अंडे नहीं देगा तो मच्छर पनपने के चांस कम हो जाते हैं, जिससे हम लोग इस घातक बीमारी से बच सकते हैं।
7: सब सुन लिया।
6: सभी को, जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उनको भी ये चीज़ें बताना चाहिए कि हम अपनी सावधानी कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। और इसके बाद जो है मलेरिया, जैसे हमने कहा, मतलब अपने स्तर से ना जैसे भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाकर सही उचित सलाह लेकर के अपना इलाज करवा सकते हैं और दूसरों को सलाह दे सकते हैं।
0: चलो अब क्यों ना आपका टेस्ट लिया जाए, देखते हैं आपको हमारी कितनी बातें याद रहती हैं।
1: बिल्कुल भैया, लेकिन सवाल थोड़ा आसान पूछिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी तो टीवी के साथ एक और बीमारी पर
1: अरे आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि श्रृंखला की शुरुआत में हमने फाइलेरिया पर चर्चा की थी। फाइलेरिया जो गंदे पानी और नालियों में पनपता है, जब ये मच्छर काटता है तो माइक्रोफाइलेरिया नाम के कीटाणु शरीर में पहुंच जाते हैं जो धीरे धीरे फैलते हैं। शुरुआत में लक्षण लाया था, क्यों ना श्रोताओं को फिर से वो प्रोमो सुना दें।
2: दो हफ्तों से ज्यादा बुखार कालाजार हो सकता है, इसकी जांच तुरंत अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं। सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच और इसका इलाज मुफ्त किया जाता है, और इसका इलाज एक ही दिन में हो जाता है।
8: भारत सरकार कालाजार के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, और हर रोगी को इलाज पाने के बाद 500 रुपए भी।
0: सबसे आम लक्षण है शरीर के किसी हिस्से, खासकर पैर अंडकोश में लगातार सूजन, इसे आम भाषा में हाथी पाव कहा जाता है, क्योंकि सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: ये सुनने में ही बहुत तकलीफ दे लग रहा है, और अफसोस की बात ये है कि ये एक लाइलाज बीमारी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। फाइलेरिया के बचाव के लिए सरकार हर साल MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाती है। इसमें हर व्यक्ति को DEC और एल्बेंडाजॉल की गोली दी जाती है। ये दवाइयाँ शरीर में छिपे हुए संक्रमण को खत्म करने में मदद करती हैं। इन्हें खाली पेट ना खा के बल्कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए।
1: हाँ, ये दवाएं सिर्फ 2 साल से ऊपर के स्वस्थ लोगों के लिए हैं। गर्भवती महिलाएं या बहुत बीमार लोग इसे ना लें। दवा लेने के बाद थोड़ा जी मचलाना या थकान हो सकती है, जो इलाज का असर है। अगर दवा नहीं लेंगे तो बीमारी बनी रहेगी और आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। ये बताइए कि कालाजार भी वेक्टर डिजीज है ना? क्या ये भी मच्छर के काटने से होता है?
0: हाँ, वेक्टर डिजीज ही है, और कालाजार मच्छर के नहीं बल्कि बालू मक्खी के काटने से होती है। मुख्य रूप में भारत में कुछ खास राज्यों में ही पाया जाता है, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन इलाकों में नमी और गंदगी की वजह से बालू मक्खी बहुत पनपती है, और यही मक्खी इस बीमारी की वजह बन जाती है।
1: बालू मक्खी मच्छर जैसी दिखती है क्या?
0: जी हाँ, लेकिन ये मच्छर से थोड़ी छोटी होती है और बहुत ही चुपचाप काटती है। काटने पर कोई दर्द या जलन महसूस नहीं होती, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये संक्रमित हो गए हैं। ये मक्खियाँ दिन की बजाय शाम और रात को ज्यादा सक्रिय होती हैं, खासकर नम और अंधेरे इलाकों में।
1: और भैया, जब एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं?
0: सबसे आम लक्षण है लगातार बुखार जो 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे और जो दवाइयों से ठीक ना हो। इसके अलावा वजन कम होना, भूख ना लगना, थकावट और खासकर तिल्ली और जिगर का बढ़ना, कई बार पेट फूला हुआ लगता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और जान भी जा सकती है।
1: ये वाकई बहुत चिंताजनक है। सुनते हैं कि इसे काला आजार इसलिए कहते हैं क्योंकि

0: कि इससे त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, लेकिन क्या इसका इलाज संभव है?
1: जी हाँ, सही कहा आपने, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में जांच करवाएं, जहां बहुत आसान है, खून की जांच से ही पता चल जाता है।
0: एक बात कंफ्यूजिंग है, तभी वेक्टर डिजीज के लक्षण मुख्य रूप से बुखार आना होता है, लेकिन बुखार को तो बहुत सारे लोग मामूली ही समझते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं।
1: यही सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को जब बुखार होता है तो वो सोचते हैं कि ये मौसम की वजह से हुआ है या खुद से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बुखार लंबे समय तक बना रहे और साथ में शरीर कमजोर पड़ने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार लोगों को यह जानकारी देते हैं, लेकिन जागरूकता अभी भी कम है।
0: तो चलिए ये बताइए कि बालू मक्खी से कैसे बचा जाए?
1: घर और घर के आसपास साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि बालू मक्खी गंदगी, नमी और अंधेरे में पनपती हैं। खिड़कियां खुली रखें और भारी पर्दे ना लगाएं ताकि मक्खियां छुप ना पाएं। सरकार DDT का छिड़काव कराती है जो असरदार होती है। आप भी खुद DDT का छिड़काव करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बदबू या नुकसान के डर से नहीं करवाने देते। ये गलती ना करनी चाहिए। मेरे पास एक और प्रोमो है, उसको भी सुनते हैं।
2: बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे।
3: चौंकिए मत, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज ना लें।
4: इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया।
2: और सफाई के नंबर 100 में से 100।
0: अच्छा, तो DDT का छिड़काव करवाना सुरक्षित है?
1: बिल्कुल, यही पूरी तरह से सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका है मक्खियों से बचाव का। इसके अलावा मच्छरदानी का उपयोग करना भी फायदेमंद है, खासकर रात में सोते समय। और हाँ, अगर किसी को लंबे समय से बुखार है तो दवाइयाँ खुद ना लें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया। श्रोताओं, साफ सफाई रखें, DDT छिड़काव करवाएं, और अगर लंबे समय से बुखार हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। भैया, अब मैं जानना चाहूंगी कि इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है।
1: सबसे पहले सरकार इन बीमारियों को गंभीरता से ले रही है और इनके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक व्यापक योजना चला रही है, जिसका नाम है NVBDCP, यानी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियों की रोकथाम और अंततः उनका पूरी तरह उन्मूलन करना। इसके तहत इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सरकार कई उपाय करती है, जैसे MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हर साल 2 बार फाइलेरिया के खिलाफ सुरक्षित दवाएं दी जाती हैं, जिन्हें सभी को लेना चाहिए ताकि शरीर में छुपे कीटाणु खत्म हो सके। IRS इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, ये एक कीटनाशक स्प्रे है जो घर की दीवारों पर छिड़का जाता है ताकि मच्छर मर जाए और मलेरिया या काला आजार का फैलाव रोका जा सके। LLIN लॉन्ग लास्टिक इंसेक्टिसाइडल नेट्स, यानी लंबे समय तक असर करने वाली मच्छरदानियाँ खासकर काला आजार प्रभावित इलाकों में बांटी जाती हैं, जो मच्छरों से बचाव का आसान तरीका है। वहीं फंगिंग से डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों की संख्या कम की जाती है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर कीटनाशक धुआं छोड़ा जाता है।
0: तो सेहतिया भैया हमारे राज्य में बहुत से इलाकों में तालाब या पोखरे होते हैं, जो कि बहुत से हमारे मछुआरे भाइयों के लिए आय का स्रोत होता है। बहुत से इलाकों में पर्यटन स्थल भी है, तो ऐसे में पानी की सफाई कैसे की जाए?
1: तो ऐसी स्थिति में एक मछली आती है, उसका नाम है गैंगबूसिया। ये मछली मच्छरों के लार्वा और अंडों को खाकर नाश कर देती है और इस तरह मच्छरों को पनपने नहीं देती है, ना ही मलेरिया के मच्छर और ना ही डेंगू के मच्छर, और साथ ही पानी में अन्य सूक्ष्म जीवों को खाकर पानी को साफ कर देती है।
0: ये तो वही बात हो गई कि एक तीर से 2 निशाने, बीमारी से भी बचाओ और प्रकृति की भी सुरक्षा। तो श्रोताओं, सरकार तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रही है, पर जनता भी तो माने कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
1: आकांक्षा जी, सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जनता उसका पूरा साथ दे। लोगों को चाहिए कि खुद जागरूकता बनाएं और दूसरों को जागरूक करते रहें। जब सरकार की टीम दवा देने के लिए आए तो बिना झिझक दवा लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मच्छरदानी का नियमित उपयोग करें, खासकर सोते समय। अपने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल करें, क्योंकि वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं।
0: मतलब ये है कि इन बीमारियों से लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तभी बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। जागरूकता, सहयोग और समय पर दवा, यही मंत्र है स्वस्थ समुदाय और स्वस्थ भारत का। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही भैया, साफ सफाई और जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है इन बीमारियों के खिलाफ। तो चलिए, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
5: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
6: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
5: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
6: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
5: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगली बार फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, जो है आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन। धन्यवाद।
7: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
8: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
3: और मैं हूँ RJ अंशिका।
2: हाँ जी, और आ गए हैं आपके बहुत ज्यादा वाले पसंदीदा शो, क्योंकि इसमें गानों की होती है बहार, क्योंकि आजकल वैसे भी आज हम बात करेंगे कुछ 80s 90s के जो पोस्टर्स पे अपने अपनी फोटो सब लोग अपलोड कर रहे हैं ना, उसी पे आज मुझे कुछ बात भी करनी है। लेकिन उसके पहले बता दूं कि एक इकलौता ये ऐसा शो है जिसमें हम 90s और 80s के सॉन्ग्स की भरमार लगाते हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जमाना बदल गया, जमाना पुराना हुआ तो क्या हुआ। दिल को जो पुरानी चीजें, जिसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो वो चीजें आज भी बेहद पसंद आती हैं। तो ठीक वैसे ही आज के जो सॉन्ग्स हैं, और हम लोग हमेशा से सुन सहेली में 90s के सॉन्ग्स को प्ले करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
3: सुन सहेली,
2: और मैं हूँ आपकी RJ समता
3: और मैं हूँ RJ अंशिका।
2: तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
3: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आज का दिन तो बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला डे, यानी कि सैटरडे। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, आज बातें होंगी मस्ती की, आज बातें होंगी बहुत सारी न्यू, यानी कि आपको जानने को मिलने वाली है प्यार, क्योंकि आज हम बात करते हैं प्यार पे, यानी कि कोई अच्छी सी ये पोएट्री होगी लव पे, कुछ बातें बातें कुछ इरशाद होंगी वो भी लव पे। सो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ।
2: हाँ जी, और वो होता है हमारा बहुत प्यारा वाला जो कि होता है पोयम।
3: पोयम,
2: तो चले फटाफट देर किस बात की,
3: चलते हैं और आइए कुछ पंक्तियों के साथ चलते हैं। तो आज प्यार पे कविता है, तो कुछ प्यार पे ही कह देते हैं। याद उनकी आती है दिल धड़क उठता है, याद उनकी आती है दिल धड़क उठता है, चोट मुझे लगती है दर्द का एहसास वो पाते हैं। प्यार कुछ ऐसा ही होता है जब ना होकर भी हम एक दूसरे के हो जाते हैं। तो आइए करते हैं इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ प्यार की एक नई शुरुआत आपकी अपनी RJ समता के साथ।
2: थैंक यू सो मच, और चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं
3: जी।
2: तुम्हारी धड़कनों से ही मेरा ये दिल धड़कता है, तुम्हारी धड़कनों से ही मेरा ये दिल धड़कता है, तुम्हारी एक झलक पाने को ये हर पल तरसता है। मोहब्बत में तुम्हारी इस कदर हम खो गए जाना, कि अब हर ख्वाब में बस तुम्हारा रंग सजता है। तुम्हारा साथ मिलना ही मेरी सबसे बड़ी चाहत, तुम्हारी बाहों में आकर मिले इस रूह को राहत। बिना तुम्हारे दुनिया अधूरी सी नजर आए, तुम ही से मेरी हर राहत। कभी जो दूर हो जाओ तो सांसें रुक जाती हैं, तुम्हारी यादें आंखों में नमी बनकर तैर आती हैं, मगर ये दिल भी जानता है कि तुम लौट आओगे, वफाएं मोम की सूरत में पिघलना सीख जाती हैं। लकीरों में लिखा जो भी उसे हम मोड़ लाएंगे, मोहब्बत की नई दुनिया जमी पर हम बनाएंगे। रहेंगे साथ हम हर दम, कसम ये आज खाते हैं, जन्म लेकर दोबारा भी हम ही तुमको ही चाहेंगे।
3: वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट और बिल्कुल फीलिंगफुल लग रही थी। जैसे कहते हैं ना मैम, कि जब हम कोई कविता सुनते हैं तो वो कहते हैं ना, एक एक शब्द बिल्कुल दिल को छू जाता है।
2: हाँ।
3: कुछ वैसे ही लग रहा था, बहुत प्यारी
2: जी, बिल्कुल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के शो को, यानी सबसे पहला सेगमेंट हमारा क्या होता है, OTT सीरियल्स, क्योंकि देर हो गई है आज, इसीलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी हम फटाफट से आज की OTT सीरियल्स को शुरू करेंगे।
3: OTT सीरियल्स के साथ में चलिए आपको एक अच्छी सी न्यूज़ भी बता देती हूँ। आपने, अगर आप सोचिए कि भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन अगर रोहित शर्मा कोई शो लेकर के आ रहे हो तो वो कैसा होगा।
2: खतरों के खिलाड़ी,
3: बिग बॉस भी नहीं, एक न्यू शो है जो कि वो लेकर आने वाले हैं, जो कि है फैमिली फुल हाउस विथ रोहित शर्मा।
2: फैमिली
3: फुल हाउस
2: ओके
3: विथ रोहित शर्मा, यानी कि ये शो ऐसा होने वाला है जैसे आपने, आप सभी ने देखा होगा ना, फैमिली फुल हाउस का मतलब है ये फुली एंटरटेनमेंट गेम शो होने वाला है जो 19 सितंबर 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे और सोनी लिव ओटीटी पे शुरू होने वाला है। रोहित शर्मा खिलाएंगे आप सभी को गेम, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये होने वाला है फैमिली गेम, यानी फैमिलीज आएंगी और अपने फैमिली के साथ सभी गेम खेलेंगे और इसे बहुत सारा इंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो ये है, नेक्स्ट ये है कि कहते हैं ना रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्योंकि रिश्तों के रूप भी बदलते हैं। ये है हमारे नेक्स्ट शो का नाम जो कि हॉटस्टार पे बहुत ही जल्द आने वाला है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं।
2: ओके, ये तो वो लाइन है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए नए नए पैक, हम लोग तो उसको बना के गाते थे,
3: हाँ, मैं
2: नए पैकेट में मिलते हैं कुछ ऐसा होता ना वो सुर, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
3: हाँ पुराने शोज का, हाँ। तो वही कुछ ऐसा ही है लॉन्च जो कि है रिश्तों के रूप बदलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि रिश्ते किस तरह बदलते हैं। और नेक्स्ट ये शो जो हमारा है, ये इसका नाम मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारी भाभी नंबर
2: वन।
3: ये अब आप सोच रहे होंगे भाभी नंबर वन है तो फिर क्या होगा, मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि एक भाभी किस तरीके से यशोदा माँ का किरदार निभाती है, ये आप इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि वो अपने देवर को बचपन से ही पालती हैं और फिर जब उसकी शादी होती है तो उसकी जो वाइफ आती है वो जो होती है थोड़ी सी यू नो टेढ़ी होती है, टेढ़ी इन द सेंस, हाँ, तो वो कैसे अपने बेटे को बचाएंगी और कैसे अपने आप को भी डिफेंड करेंगी, ये आप देखेंगे। सो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग का ये होने वाला है। और बता देते हैं एक और शो के बारे में जो कि है मैं दिल की धड़कन बन के आऊँगा। मैं दिल की धड़कन बन के आऊँगा पूरी तरीके से रोमांटिक ड्रामा है जो कि आप Z5 ऐप पे देख सकते हैं, और इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि पहले तो दो लोग मिलते हैं, सभी कहानियों में होता है, फिर उनमें प्यार होता है, फिर वो बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ एपिसोड बाद फिर मिल जाते हैं, लेकिन इस कहानी में होगा ये कि पहले बिछड़ेंगे नहीं, और सॉरी पहले मिलेंगे नहीं, पहले बिछड़ेंगे और फिर मिलेंगे, यानी कि ये रिवर्स से कहानी शुरू होने वाली है। अच्छा। वो आपको एक एक पैसेज बताएंगे कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं ना उसमें होता है कि वो पीछे से बताते जाते हैं, वो सीन्स सुनते हैं ना उसमें होता है कि वो पीछे से बताते जाते हैं, वो सीन्स चलते जाते हैं,
2: हाँ।
3: कुछ वैसा ही इसमें भी होगा।
2: ओके,
3: सो आप देखें, इंजॉय करें, और आई होप कि आप सभी को वीकेंड पे बहुत सारा मजा आए।
2: जी बिल्कुल, तो चले फटाफट अब जो कि हमारा टाइम हो गया है, आज बातें कम काम ज्यादा, यानी कि आज हम बातें कम करेंगे, सॉन्ग्स की लड़ियां

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का लव राशि फल।
6: बिल्कुल, लव राशि फल कुछ बातें होंगी कि आपकी राशि जो है वो आपके लव के साथ कितना, एक कहते हैं ना कि सामंजस्य से बिठा पाती है। तो आइए बात करते हैं लव लाइफ को लेकर के कि है आज सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। तो आज आपके पार्टनर और आपके बीच में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। किसी छोटी सी बात को लेकर बहस करने से बचें।
5: जी बहस तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और मुझे किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, मतलब मेरे अपने लिए, तो बताऊं?
6: बताइए।
5: समता से बहस जिंदगी तहस नहस।
6: ओह माय गॉड, लाइन तो बहुत अच्छी वाली है।
5: तो किसी खास इंसान ने मुझे कही थी कि समता से बहस जिंदगी तहस नहस, पर पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां थी तुम?
6: डाइवर्ट हो गया।
5: नेक्स्ट,
6: ध्यान ही डाइवर्ट हो गया पूरा। चलिए बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी है आज आपके राशिफल में कि आपको आपके पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना है। और उसके लिए करना ये है कि आपको उसे घर के कामों में हाथ बटाना है।
5: ओके,
6: तो आपको पूरा उनका सपोर्ट मिल सकता है
5: जी।
6: और दूसरा है कि जो लोग भी सिंगल हैं और मेष राशि में हैं, उनको आज कोई उनकी पुरानी फ्रेंड मिलने वाली है और उससे बातचीत शुरू होने वाली
5: है। ओ माय गॉड, ये किसका है?
6: ये है मेष राशि वालों के लिए। अब आते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि उनकी लव लाइफ कहती है कि आपका जो प्यारा सा मतलब प्यारी एक लाइफ है, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पार्टनर के मूड को समझें और उन पर किसी बात का दबाव ना डालें। अब आते हैं वृषभ राशि वालों में जो सिंगल हैं, उनके लिए है, ओहो आज किसी को आप प्रपोज करने का मन बना रहे हैं।
5: किसका है?
6: वृषभ राशि वालों
5: की। मेरा नहीं है ना, तो हम क्यों खुश होंगे?
6: कि आपकी, हो सकता है मैम आपकी राशि में भी कुछ ऐसा ही हो। हो सकता है।
5: मेरी राशि आज सही नहीं निकली है, मैंने पढ़ ली तुम्हारे द्वारा बताई गई राशि, मैं अपने द्वारा बताई गई पढ़ रही हूँ फिर से
6: जी। तो है कि आज किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं, समय बहुत ही अच्छा है, आप बनाएं और जरूर से आपका ये प्रयास जो है वो सफल होगा। अब आइए आते हैं वृषभ राशि वालों के बाद में बारी आती है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए
5: आपने आमेश बताया है और वृषभ नहीं है, वो राशि होती है वृष राशि।
6: वृषभ
5: क्योंकि आगे है फिर।
6: जी मैम, वृष राशि थी। और अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज आपका पार्टनर आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने वाला है, जिससे कि रिश्तों में ताजगी आएगी। और साथ ही साथ है कि जो भी सिंगल हैं, उन्हें आज उनकी कॉलेज का कोई पुराना क्रश मिल सकता है दोबारा। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए है कि आज आपका पार्टनर आपके साथ खुलकर बातचीत करेगा और उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ है कि आपके पार्टनर को लेकर के आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी सवाल हैं, उन्हें सॉल्व होने के लिए थोड़ा सा समय दें। आते हैं कि जो भी सिंगल हैं उनके लिए, यानी कि कर्क राशि में जो सिंगल हैं, वो है कि आज सोशल मीडिया के जरिए किसी दिलचस्प इंसान से आपकी होने वाली है मुलाकात। और फिर होगी प्यारी प्यारी
5: बात।
6: तो ये था चार राशियों के लिए। और अब मुझे लगता है कि समय जो है उसने कर दिया है इशारा कि हमें चलना है और शुरू करना है हमारा गेम।
5: हाँ जी, तो मैं सोच रही हूँ कि आपका गेम स्टार्ट कर दूं। एंड
6: आज भी हम आपको वर्ड्स देंगे और उन वर्ड्स से आपको सॉन्ग्स लिखने होंगे, लेकिन एक बात है कि सॉन्ग्स आप सभी फटाफट लिखें और फटाफट से हमें जवाब दें, क्योंकि क्या होता है ना कि गेम में जब सॉन्ग्स नहीं आते हैं तो फिर हम भी सोचने में पड़ जाते हैं कि क्या बात है आप लोग खेल नहीं रहे हैं या क्या, इसलिए सॉन्ग्स जल्दी जल्दी आने
5: चाहिए। जी, तो पहला वर्ड है आपका न, तो पहला वर्ड है न, और जल्दी से न से गाना सिंह राशि वालों के लिए अभी आप थोड़ा करें वेट, क्योंकि अभी सिंह राशि वालों के लिए जो कि बताया गया है, तो अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा सिंह राशियों के लिए। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल मैम, और वैसे भी सिंह राशि जिनकी भी होती है ना, मतलब मैं सबको ऐसा नहीं कहूंगी, बट सिंह राशि जिनकी भी होती है तो जैसे नाम होता है ना, जिसे कहते हैं मैम राशियों का जो नाम होता है उनका भी असर पड़ता है, तो सिंह राशि होती है तो फिर शेर की जो वो होती है नी दशा होती है, जैसे कहते नहीं है कि मेरी राशि पे शनि की दशा है,
5: हाँ।
6: वैसे सिंह राशि वालों पे शेर की होती है।
5: ऐसा है क्या?
6: ऐसा होता है, फिर कुछ मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ अपोजिट ही हो जाता है, इसलिए सोच समझ के अपनी क्रिया जो मतलब जो आप काम करते हैं वो करने चाहिए।
5: तो अभी तक मुझे कोई गाना नहीं मिला है। नागेश्वर जी, ये कौन सा गाना आपने लिख करके भेजा? ना बाबा ना बाबा ना ना, तो प्लीज ना से कोई अच्छा गाना लिख करके भेजें आप, और जब तक आपके गाने आते हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गाना लगा दूं एंड उसके बाद हम गेम शुरू करेंगे। तो ना से फटाफट गाना अच्छा सा कुछ लिख करके भेजें, आपका गेम स्टार्ट हो गया है। और पहला वर्ड है ना।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि आप सुन रहे हैं वो है नागेश्वर जी का, और इसके बाद में हम सुनेंगे गीता जी के सॉन्ग को। तो आइए एंजॉय करते हैं सुपर से भी ऊपर वाला हमारा सैटरडे जो कि होता है गेम वाला डे।
1: राम

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि आप अभी सुन रहे थे, ये था गीता जी का। और आइए बढ़ते हैं अगली सॉन्ग की तरफ जो कि है प्रीति जी का। तो आइए सुनते हैं प्रीति जी के सॉन्ग को।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए बता देते हैं बाकी बची राशियों को।
4: तो आइए बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर चलें।
3: ओके, सिंह राशि वालों के लिए है थोड़ा बच के चलें, क्योंकि कभी भी वार और तलवार पड़ सकती है।
4: बिल्कुल,
3: हाँ जी।
4: वार और तलवार जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कामों पे डिपेंड करती है, तो थोड़ा उसमें भी संभालना है
3: जी।
4: और आपका जो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी, और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फ्यूचर की अच्छी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वाकई में आपका संभालना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में है कि यदि आपको सिंगल्स के लिए है, जो भी सिंह राशि में है, कि अगर आपको कोई पसंद है तो आज आप अपनी मन की जो भी फीलिंग्स हैं वो उन्हें ज़रूर बता सकते हैं
3: जी।
4: अब आते हैं कन्या राशि वालों के लिए है कि ओ, चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे आप थोड़े भावुक रहेंगे।
3: हाँ।
4: पार्टनर की छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें
3: जी।
4: जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। और जो भी कन्या राशि में सिंगल हैं उनके लिए है कि आज एक नई शुरुआत का दिन है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे सिर्फ तभी। अब आते हैं तुला राशि वालों के लिए है कि आपकी राशि में शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। पार्टनर के साथ आपका आपसी तालमेल और भरोसा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा
3: जी।
4: सिंगल्स के लिए है कि आज किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में आप किसी खास से मिलने वाले हैं। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज आप पूरा दिन काम में बहुत बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे थोड़ा नाराज हो सकता है, लेकिन आप उसे गिफ्ट देकर
3: मना सकते हैं।
4: और है सिंगल्स के लिए कि फिलहाल आपकी लव लाइफ को लेकर आप कोई भी जल्दबाजी ना करें, पूरा परखने के बाद और सोचने समझने के बाद ही फैसला करें।
3: ओह माय गॉड, यानी ये तो थोड़ा आपके लिए वो हो गया कि आप बिल्कुल पहले जांचें, परखें, उसके बाद ही कोई फैसला करें।
4: बिल्कुल। अब आते हैं धनु राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने लहजे को थोड़ा नरम रखना है। हाँ। आपको आपका तीखा रवैया रिश्ते में खट्टास ला सकता है। और धनु राशि वालों में जो भी सिंगल हैं उनके लिए है आज कि किसी पुराने क्रश से दोबारा बातचीत शुरू होने वाली है।
3: ओके।
4: मकर राशि वालों के लिए है कि आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहद शानदार है। पार्टनर के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करें, रिश्ते को और गहरा बनाएं। और सिंगल के लिए है मकर राशि में कि जो भी अपनी शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं उन्हें बहुत जल्द ही अपना पार्टनर मिलने वाला है।
3: ओके।
4: अब आते हैं फाइनली
3: कुंभ राशि पे।
4: जी, कुंभ राशि वालों के लिए है ओह कि
3: अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है,
4: अच्छा है। आज आपको आपकी लव लाइफ में बहुत ही अच्छे से पल मिलने वाले हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे पल बिताएंगे।
3: ये अपने मन से बोल रहे हो कि उसमें लिखा है?
4: उसमें लिखा है मैम, दिखा देते हैं आपको। ऐसे कह देती है मैम तो वो मेरी लय टूट गई, फिर इतने अच्छे से बताने वाली। चलिए फिर से आते हैं,
3: फिर से लय आए, लय ताल के आए, फिर से आप।
4: और साथ ही है कि जीवन साथी के साथ थोड़ी सी आपके विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। शांत रहें और बातों को ज्यादा ना बढ़ाएं,
3: ज्यादा बवाल ना करें।
4: और है जो भी सिंगल है उनके लिए है कि हो सकता है कि आप अपने अकेलेपन से परेशान हो, लेकिन जल्द ही कोई आपकी लाइफ में आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे,
3: आ सकते हैं,
4: होंगे।
3: ओके।
4: और है मीन राशि वालों के लिए लास्ट की आज पार्टनर के साथ ओ माय गॉड आज पार्टनर के साथ
3: कौन है तुम इतना खुश हो जाती हो, पहले मुझे ये बताओ।
4: है मैम, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
4: इसलिए
3: फ्रेंड की फ्रेंडा है
4: नहीं नहीं फ्रेंड ही है फिलहाल तो मीन राशि वालों के लिए है, और वाकई में उसकी मीन राशि है।
3: हाँ।
4: तो ये है कि आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या कैंडल लाइट डिनर का प्लान बन सकता है अगर आप शांत रहेंगे तो। और साथ ही साथ है कि जो मीन राशि में सिंगल हैं, यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं तो आज उनसे बातचीत आगे बढ़ाने का सबसे सही मौका है।
3: तो भाई आपको मिल गया है मौका, और इस मौके को बिल्कुल ना खोएं। चलिए फटाफट सुन लेते हैं आशु जी का सॉन्ग, जो कि बहुत ही प्यारा सा है, कोयल बोली दुनिया डोली। इस प्यारे से गाने को सुनेंगे एंड नेक्स्ट वर्ड चैट बॉक्स में आपको देने जा रहे हैं, इसीलिए आपकी निगाहें जो होनी चाहिए वो चैट बॉक्स पे होनी चाहिए।

0: बिल्कुल दिल में कहीं छिपा लो। और भाई गोंडा में आप सभी को पता है कि हमारे गोंडा में हर त्योहारों की होती है बिल्कुल दिल से धूमधाम। तो दुखरननाथ में आप सभी को पता है कि इस समय रास्ते हो गए हैं ब्लॉक और इतनी ज़्यादा रौनक आज से ही पूरी रात, आज कल पूरा दिन, पूरी रात, परसों सोमवार के दिन तक, मतलब ऐसे लगता है अंशिका जैसे लगता है कि बिल्कुल मेला है और हम लोग घर ही ना जाएं, इतना अच्छा लगता है।
1: यस मैम,
0: तो इस मौज को आप भी इंजॉय करें और अब हम दोनों को दे इजाजत, हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं।

0: 86।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: हाँ जी, तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ। घड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, यानी कि प्रोग्राम चल रहा है अब आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा। और भैया इसी के साथ आज कॉल ट्यून गोंडा में होने वाला है बहुत सारा फन और हमारे साथ जुड़े हैं एक लिसनर, तो आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं वो कौन है। हेलो,
7: एक सुनहरे कल में आपकी हो।
6: ओके,
7: जिंदगी के सफर में हर मंजिल आपकी हो।
6: अरे वाह,
7: एक पल में हंसा दे जो सारे जहां को,
6: जी जी
7: करे वो मुस्कुराती हुई जिंदगी आपकी हो।
6: आए हाय हाय, बहुत शुक्रिया
7: मोहतरमा उन्नति साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब।
6: इस कदर हसीन तरीके से आज तक किसी ने कभी मुझे इवनिंग नहीं बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच, आपका स्वागत करते हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा में।
7: परिचय दूं?
6: जी हाँ बेशक, अपना नाम बता दीजिए।
7: मैं विजय कुमार पांडे, थाना पछवाड़वा, जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किए।
6: क्या बात है। तो भैया अब आप ये बता दीजिए कि गाना कौन सा है आपका और आप कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे?
7: नहीं सुनाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, लेकिन इसी मुस्कुराहट पर कुछ कहना चाहते हैं
6: जी।
7: और इसी मुस्कुराहट पर गाने भी होंगे।
6: ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
7: कहा गया दुनिया में मुस्कुराहट ही इंसान के चेहरे का नूर है
6: जी।
7: वो तिजारत है जिसमें कोई सरमाया नहीं लगता और जिसमें फायदा ही फायदा है
6: जी।
7: कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न चाहते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं
6: जी।
7: उन्हें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है।
6: बिल्कुल।
7: और लोग समझते हैं ये शख्स जो हर वक्त मुस्कुराता है इसे कोई गम नहीं, मगर ये गलत है। किसी को क्या मालूम कि उसकी एक मुस्कुराहट पर उस शख्स का दिल कितनी बार टूट कर बिखर जाता है, मगर फिर भी कुछ लोग अपने ओठों पर मुस्कुराहट सजाए रखते हैं और दूसरों को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं।
6: क्या बात है, बहुत ही डीप बातें करते हैं आप जनाब। वैसे सच में आपने बहुत ही डीप बातें की थी और आपकी इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए आइए अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको गाना सुनाते हैं।

0: ये गाने जो है समर्पित रहेगा अन्नू पांडे, जो
1: जी
0: हमारी मोह भोली बहन है।
1: ओके, चलिए ठीक है। तो भैया अनु पांडे जी को डेडिकेटेड, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और क्योंकि आज हमारी शुरुआत जो हुई है वो मुस्कुराहट से हुई है, तो ज़रा मुस्कुराते हैं। और क्योंकि मुस्कुराने की वजह आप हैं, तो ये आपको सुनाते हैं। सुंदर एक ऑल ट्यून गुना स्टूडियो।

0: और इसी बेहतरीन नगमे के साथ हमारे भैया साथ कोई जुड़ गया है। आइए देख लेते हैं। और जिस तरह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, लगता है कोई बहुत खास हमसे जुड़ा है। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम? ओके, तुम्हारी गुलफ्शा जी आई है
1: जी। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए।
0: अरे बहुत ज्यादा प्यार है।
1: हाँ, हम भी तो बहुत प्यार करते हैं आपको।
0: बस यही तो हम हर बार सुनते हैं और यही सुनना चाहते भी हैं।
1: जी जी, कॉल उठाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: चलिए, अब गुलफ्शा जी आप आई हैं तो थोड़ी सी शरारत हो जाए।
1: जी हो जाए, जब दो शरारती मिलते हैं शरारत तो होती है
0: ना। और इसी ख्याल में हमने सोचा है कि क्यों ना मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन आपको जवाब उल्टे देने हैं। उल्टे जवाब तो दिए होंगे ना कभी?
1: जी, हमेशा देते रहते हैं यार।
0: तो तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल
0: भैया, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि आज आपको सिर्फ उल्टे जवाब देने हैं। ओके, तो आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम ही नहीं है।
0: नहीं हो सकता है, कुछ तो नाम होगा आपका, वो बताना पड़ेगा।
1: गुमनाम है मेरा नाम।
0: तो आप गुमनाम है? चलिए, कहाँ से हैं आप?
1: जी हम हरदोई से
0: हैं। ये आपका सही एड्रेस है कि गलत एड्रेस है?
1: गलत है।
0: ओके, चलिए ये बताइए कि आज आपने क्या खाया था?
1: कुछ नहीं खाया।
0: ये नहीं हो सकता, आपको नाम तो लेना पड़ेगा।
1: नहीं, दिमाग खा रहे हैं किसी का?
0: दिमाग खा रहे,
1: अभी खा रहे
0: हैं। ऑल राइट, अच्छा ये बताइए पीते क्या है?
1: अब
0: वो तो पीने वाली चीज है,
1: वो हमेशा पीते हैं पानी की जगह पे।
0: नहीं, मैं तो ये पूछा ही था ना।
1: मैं उल्टे जवाब दे रहे हैं
0: हम। हाँ, तो देखिए मैंने कहा था पीने वाली चीज, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो भैया आप तो हार गए। जी
1: कोई बात नहीं,
0: चलिए ऐसी हार पे जश्न मनाते हैं और आपको हम आपका पसंदीदा गाना सुनाते हैं।
1: डेडिकेट करेंगे
0: किसको?
1: सबसे पहले आपको।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: फिर रोशनी रावत है और रिंकी पिंकी है अनु पांडे को।
0: ओके, तो भाई इतने सारे लोगों डेडिकेटेड सॉन्ग है, सुनाते हैं, लेकिन उनसे पहले आप ये एंजॉय कीजिए जो हमारे विजय जी ने फरमाइश की थी अरिजीत सिंह की आवाज में।
1: बिल्कुल,
0: स्टे ट्यून्ड।
1: थैंक यू।

0: हाँ जी, और आइए जीना थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, सवालों को थोड़ा और घुमाते हैं और हमारे साथ देखते हैं कि भैया कौन जुड़ गया है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, आवाज से हमको क्यों लग रहा है कि आप रईस साहब हैं?
1: जी साहब,
0: देखा हम बहुत अच्छे से गैस कर लेते हैं, आपको पता ये बात?
1: जी।
0: अच्छा रईस साहब, एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढ रहे हो आप, जैसे कि आपकी गाड़ी की चाबी है या फिर कोई और चीज़, और वो आपको नहीं मिलती है, तो उस वक्त आप कौन सा गाना गाने वाले हो?
1: गाना नहीं गाता, उसको ढूंढने की कोशिश करता
0: हूँ। अरे नहीं, अगर मान लीजिए आपको गाना ही गाना हो, जैसे बॉलीवुड में होता है कि गाना गा के बुलाया जाता है, तो आप कौन सा गाना गाते?
1: कोई भी गाना गा देंगे।
0: ऐसे कैसे कोई भी गाना गा देंगे आप? वो एक स्पेसिफिक गाना जो इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठ रहा हो। गाने का नाम क्या है?
1: सुना देता हूँ दो लाइन आपको।
0: चलिए, यही का तो इंतजार था। बस हम यही सुनना चाह रहे थे कि आप कब सुनाएंगे।
1: ऐसा है।
0: वो इनडायरेक्टली बोला था मैंने बस। बेकरार ओ मेरे,
1: आए हाय तेरे बिन न जाए, आई बहार दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार। बस यही जहन में था फिलहाल।
0: चलिए, वैसे गाना अच्छा था और सच में जब कोई चीज नहीं मिलती है तो उस पे फिट भी बैठ रहा है। एंड हमारे महेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये गाना उनके सिचुएशन पे आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपका गाना बहुत ही अच्छा था और हमने इस गाने को नोट भी कर लिया है।
1: मेरी फरमाइश नहीं नोट करेंगे क्या?
0: चलिए, आपकी फरमाइश ये नहीं थी क्या?
1: नहीं, मेरी फरमाइश नहीं थी, वो माइंड से सुना दिया था आपको।
0: तो कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: मुझे सुनना है पंजाबी होली है।
0: कौन सा? हाँ जी बताइए। गाने का नाम? हाँ, ओके। चलिए, वो लग भी रहा है कि बहुत मजेदार होने वाला है, तो सुनते रहिए जरा आप।
1: ओके, थैंक यू, शुक्रिया।
0: और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, यानी कि अगली फरमाइश की तरफ। और हमारी जो अगली फरमाइश आई है वो किसकी आई है? अरे सर, नहीं पता ना आपको, हम बताते हैं। वो आई है हमारी देवी प्रसाद जी की, तो आप एंजॉय करते रहिए। और अगर उल्टे पुल्टे जवाबों और सिचुएशंस के लिए आप तैयार हो, तो जरा कॉल ट्यून में अपना फोन घुमाइए 6393316429 पर, क्योंकि आपकी आरजू नदी बैठी है आपके साथ करने कुछ शरारत कुछ शैतानी, क्योंकि काम यही है मेरा जानी। फिलहाल सुनते रहिए।

0: और भैया आप एंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश हमारे देवी प्रसाद जी की, एंड हमारे साथ जुड़ी हैं एक मोहतरमा, और आइए उनसे उनका नाम पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं और अपना काम भी पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ।
0: अरे गुड इवनिंग जी, अनु पांडे जी कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी, बताओ आप कैसे हो?
0: आपकी आवाज़ सुन के हम भी अच्छे हो गए।
1: और मैं आपकी आवाज़ सुन के अच्छी हो गई।
0: तो इसको क्या कहते हैं, सेम सेम पिंच पिंच?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, फिलहाल के लिए ये क्योंकि आज है हमारा कॉल ट्यून गोंडा यानी कि बॉलीवुड वाला है, लेकिन हमारे अंदर शरारत कुछ ज्यादा है, तो थोड़ी सी शरारत करें। मैं आपको इंग्लिश में एक डायलॉग देती हूँ, अगर वो हिंदी में होगा तो वो कैसे बोला जाएगा?
1: डायलॉग
0: में कुछ और, तो डायलॉग नहीं देना है तो कुछ और देना है, तो चलिए आप मुझे कुछ अच्छा भैया, देखो हमारी लिसनर की डिमांड गाने के साथ साथ गेम्स में भी आ रही है। चलिए तो उल्टे सीधे जवाब देने हैं, मैं सीधा पूछूंगी, आपको बस उल्टा जवाब देना है। ठीक है? तो आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम तो ना पता है।
0: और आप खाती क्या है?
1: मैं क्या?
0: आप खाती क्या है?
1: मैं हवा खाती हूँ।
0: हवा खाती है? ओह माय गॉड। ओके, आप पीती क्या है?
1: मैं दूध पीती हूँ।
0: जाती कहाँ है?
1: आसमान में।
0: फेवरेट कलर कौन सा है?
1: फेवरेट कलर जो अभी तक बना नहीं।
0: अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता, नाम बताना पड़ेगा आपको। ओके अच्छा ये बताइए, आपको गुलफ्शा जी कैसी लगती है?
1: बहुत अच्छी लगती है।
0: आहा हा हा, आ गया सीधा जवाब। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनु पांडे जी। कौन सा गाना है आपका?
1: मुझको गाना सुनना आए ना क्योंकि मेरा हो गया है ये वाला सॉन्ग।
0: दोबारा बोलिएगा और थोड़ा आराम से बोलिएगा।
1: आए ना कि तू मेरा हो गया है।
0: ओके,
1: और मैं नाम भी लेना चाहूंगी।
0: चलिए आप खुद ही ले लीजिए आज अपना नाम।
1: अरे मैं अपना नहीं लूंगी, अपने दोस्तों का लूंगी।
0: तो बेशक लीजिए।
1: गुलशन सारी भी हो गई, रोशनी रावत भी हो गई, रिंकी पिंकी हो गई, और हसीना भी मंसूरी हो गई, अवनाश भाई हो गए, राकेश भाई हो गए, तनु श्री हो गई, और भगवान सिंह परमार हो गए, विनय कुमार पांडे हो गए, और जितने लोग सुने सभी को बहुत सारे नाम है, मैं नाम भूल जा रही हूँ।
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठना पड़ेगा।
1: हाँ, आपको लगता है लोड करके
0: आज कौन हाजिरी लगाने वाला है अपनी?
1: शिकायत करेंगे, अरे मेरा नाम नहीं लिया।
0: जी जी जी, चलिए हमने रजिस्टर में सबका नाम नोट कर लिया है और आपने बोल ही दिया है, तो बस इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपका गाना आपको सुना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। तो भैया ये तो थी हमारे अनु पांडे जी, और उल्टे पुल्टे जवाबों में वे तो हार गई कि आप जीत सकते हैं। अगर जीत सकते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन्जॉय कीजिए हमारे सुनील जी की फरमाइश को। हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश को लेकर के स्टे ट्यून्ड।

0: कॉलर ट्यून गुड़ना सैटरडे स्पेशल तो लगता है कि गानों के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिसनर्स के लिए बना है। और अगर गाने की बात है तो हमारे पास एक लिसनर है जो कुछ तो गुनगुनाना चाहती है। हेलो
1: मेरी प्यारी
0: प्यारी
1: नमस्कार।
0: oh my God, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना इश्क, नमस्कार। क्या बात है मोहतरमा, आज तक सिर्फ आपका नाम ही सुनते थे, आपसे बात करके हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और हमारे गार्डन में गुलाब नहीं, कमल खिलता है।
1: अरे वो कमल हमें पसंद है।
0: चलिए कुछ तो पसंद आया। तो भैया कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आपसे बात करके पहली बार आपसे बात करके तो और भी बढ़िया लग रहा है।
0: और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस प्लस प्लस हमको अब इंतजार है कि हमें मोदक कब मिलेगा।
1: आपको तो इधर आना पड़ेगा तब आपको मोदक हम खिलाएंगे ना।
0: आप हमको पार्सल करके भेज दीजिए, हम उधर आ गए तो हमारे लिसनर बेचारे रह जाएंगे।
1: ठीक है हम भेज देंगे।
0: चलिए ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनाने वाली हैं हमें?
1: का नाम है आशिकी, उसे गाना है सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाती है, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी।
1: थैंक यू मैम, और मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू। और फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी है, राकेश जी शिमला से, गंगाधर सावनकर जी, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, पुष्करनाथ शर्मा जी है, पंचराम शर्मा जी, गोल्डी जी है, और अनु पांडे जी है, और लासन देव सभी श्रोताओं के लिए।
0: और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा कैलेंडर खोल के बैठी हूँ। चलिए बहुत ही प्यारा गाना और बहुत सारे लोगों को पहुँच चुका है। तो भैया आप जाइए जरा उनके तक, अपना रेडियो खोल के बैठिए और हम आपके लिए पेश करते हैं आप ही की पसंद का गाना आशिकी फिल्म से।
1: ओके बाय
0: बाय बाय। तो भाई ये तो तुम्हारी तनुश्री जी फ्रॉम महाराष्ट्र और उन्होंने फरमाइश कर दी है आशिकी से, तो आइए थोड़ा सा गाना एंजॉय करते हैं। और इतना लंबा चौड़ा नाम था भाई कि आम नाम तो भूल गए, लेकिन आप तक आपका गाना पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून कोटा विद्रार्थी, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।

0: वक्त के हाथों।
1: और भैया महाराष्ट्र से हमारी गाड़ी निकल कर पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर और हमारे साथ जुड़े हैं, कोई तो जुड़ा है हमारे साथ, लेट्स सी। हेलो
2: दीदी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको, मेरी सभी दीदियों को, मेरी माताओं को मेरा प्रणाम, क्योंकि दीदियों को और माताओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हमारा सब कुछ होता है।
1: थैंक यू सो मच, और आपका स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोंडा में। और जम्मू से बैठे बैठे गोंडा में आप जुड़ चुके हैं, कैसा फील आ रहा है?
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके दर्शन करके मुझे और भी अच्छा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ।
1: हम आपको दिख भी रहे हैं, एक सेकंड, मेरा कैमरा कहाँ से ऑन हुआ भाई? वैसे मैं आपको दिखी कहाँ से? मैं नहीं दिखी ना। और हमारे जम्मू जी के हमने फंसा रखा है, यानी कि पुष्कर जी हमारे फंस चुके हैं। चलिए पुष्कर जी, अब आप कुछ बताना चाह रहे थे हमें, जो हमने आपसे कहा था कि आप ऑन एयर आके बताइएगा।
2: जी, तो मैं सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने बहनों का ध्यान रखना चाहिए हमें, हमें जो भी कहीं रास्ते में कहीं दीदी मिले उनका हम अपनी दीदी की तरह सम्मान करें। तो एक कहा जाता है कि भगवान की कृपा से बेटियां हैं तो सब कुछ है, बेटियां हैं संसार में जो है, तो वो बेटियों के बिना संसार नहीं है, तो हमें अपनी दीदियों की और माताओं की कदर करनी चाहिए। तो बाकी वो मैं अपने कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
1: बेशक,
2: मेरे प्यारे प्यारे, सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी दीदी जी आप है, बाकी हमारे प्यारे प्यारे भैया, हमारे अविनाश भैया जी है, हमारी दीदी जी है श्री तनुश्री जी है, अनु पांडे जी है, राकेश जी है, गोल्डी जी है, बाकी पूरन वर्मा जी है, जितने भी सारे श्रोता है सबको मेरा नमस्कार और आप दीदियों को मेरा प्रणाम।
1: ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। और आपका गाना हमने नोट कर लिया है, बस कुछ ही पलों में आपका गाना हम पेश करते हैं, थोड़ा सा इंतजार और सुनते रहिए कॉल ट्यून गोंडा, जुड़े रहिए मेरे साथ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्द मेरा इरादा है जम्मू की तरफ अपना रुख करने का।
2: जब जम्मू आओगे तो तब हमें भी अपने दर्शन आपके, मैं भी चाहता हूँ कि हमें भी आपके दर्शन हो जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जम्मू की वादियों में आप जरा सूरज का मजा लीजिए और हम आपका गाना बहुत जल्द पेश करते हैं, सुनते रहिए। धन्यवाद,
2: बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत। तो भैया ये तो थे हमारे जनाब जो जुड़े थे जम्मू से, और आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी गुलाबशाह जी की फरमाइश, और उसके बाद हम चलेंगे अगली फरमाइश की ओर। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी हमारे पास है बहुत सारे गाने स्पेशली आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: और हमारे उल्टे पुल्टे सवालों को लेकर के हमारे एक लिसनर और आ चुके हैं। लेट्स सी वो हमारे क्या उन उल्टे पुल्टे सवालों से निकल पाते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से पहुंच चुके हैं अविनाश अली, क्योंकि देखिए अभी महाराष्ट्र से पहुंचे थे, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर से पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं।
0: बिल्कुल, आप क्यों पीछे रह जाएंगे, आप भी आइए, आपका भी स्वागत करते हैं। और वहां से बैठ के, त्रिपुरा से बैठ के गोंडा का मजा लेना एक अलग ही बात होती है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: वैसे ये बताइए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो देखिए सुबह तो बहुत बारिश हो रहा था, लेकिन अभी बादलों के बीच में सूर्यदेव जब पूरी तरह से अपने किरणों को लेके पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम अभी फील हो रहा है।
0: चलिए, और यहीं से शुरू करते हैं आपके उल्टे पुल्टे सवाल। सबसे पहले आपके लिए यही सवाल है कि आपने क्या खाया?
1: अरे मैंने तो अभी मिट्टी खाया।
0: मिट्टी खाया, ओके। और आपने पिया क्या था?
1: अभी अभी अभी तो मैंने पिया था, क्या बताए वो। अच्छा ठीक है, मैंने अभी अभी अभी सेब पिया था,
0: मिट्टी खाई थी। ऑल राइट, और ये बताइए कि ओके, तो आपका शहर कैसा है?
1: मेरा शहर बिल्कुल बहुत ही गलत है।
0: नक्शे में कहाँ है?
1: नक्शे में तो एकदम से कोने में रहता है।
0: अच्छा, मम्मी क्या कहती है?
1: मम्मी क्या कहती हैं?
0: हाँ,
1: वो बोलती है कि आप बहुत ही बुरे हैं।
0: ये बात तो सच है वैसे।
1: नहीं, आपके आपके लिए बोलते हैं ना, आप पूछते ना कि आपके लिए मम्मी क्या बोलती है।
0: तो मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो आपकी बात की थी, और मुझे लगता है कि मम्मियाँ ऐसी ही होती है।
1: नहीं, आप आपके लिए बोलते हैं कि यार गुलफ्शा जी बहुत ही बुरे हैं।
0: मैं तो गुलफ्शा जी हूँ भी नहीं।
1: तो इसीलिए तो मैंने बोला ना आपको।
0: भाई गुलफ्शा जी, अगर आप सुन रही हो तो देख लीजिए कहीं त्रिपुरा में बैठ कर आपके बारे में कुछ बोला गया है। ऑल राइट, तो ये बताइए बॉलीवुड की फेवरेट फिल्म कौन सी है?
1: बॉलीवुड की सबसे फेवरेट फिल्म है पत्ता।
0: और ये सही जवाब है कि गलत?
1: ये तो बिल्कुल सही जवाब है।
0: तो चलिए फिर आप हार चुके हैं।
1: पत्ता नहीं, देखिए पत्ता तो मूवी है ही नहीं, तो
0: अब देखिए मैंने जो सवाल आपसे किया था कि ये सही जवाब है या गलत, और आपने कहा ये सही जवाब है।
1: हाँ तो सही जवाब तो
0: हाँ, तो आपको ये बोला था कि ये गलत जवाब है।
1: नहीं, देखिए आपने पूछा था कि अच्छा ये बोले सही जवाब है या भाई गलत, तो मैंने सोचा कि ये पत्ता मूवी क्या गलत जवाब है या सही है।
0: देखिए मेरे सवालों का यहाँ पर सीधा से एक ही मतलब था कि मेरे किसी भी सवाल का आपको सही जवाब देना ही नहीं है, और जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा सही है, तो फिर
1: ठीक है कोई बात नहीं। आपका इसका एग्जाम मैंने पहली बार हिस्सा लिया, तो चलिए इतने तक तो आगे गए, अगले कॉन्टेस्ट फिर तैयार करके अगले हफ्ते।
0: बिल्कुल, और अगले कॉम्पिटिशन में आपको कुछ और जबरदस्त मिलने वाला है।
1: हाँ जी जी बिल्कुल, उसके लिए मैं तैयारी बिल्कुल करके आएंगे।
0: चलिए, और अपना गाना बता दीजिए। अब
1: गाना तो देखिए समय कम है, इसलिए आप मुझे किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, ये अच्छा लगेगा, क्योंकि बातें बाकी दूसरों जो लिसनर है उनके लिए मौका मिल जाएगा फिर से।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एंड ये थे त्रिपुरा से हमारे एक और लिसनर, और हम एंजॉय करते हैं हमारे गाने को जो हमने बीच में ही रोक दिया था। इसके बाद हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: और भैया आज हमको लगता है ना कि गोंडा से कोई कॉल नहीं आने वाली है, क्योंकि आप हमारे पास आ चुके हैं एक और जनाब जो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि गोंडा के तो नहीं है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, और आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: आज मेरी ट्रेन की जो छुक छुक गाड़ी है वो पहले महाराष्ट्र गई थी, फिर गई थी जम्मू और उसके बाद त्रिपुरा, और अब लौट के आ चुकी है एमपी में।
1: जी जी दीदी, और कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा प्रस्तुति है दीदी आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। और मेरे मित्र हैं वहाँ पर से गोंडा से हैं, स्वाति सिंह जी हैं, अनु पांडे जी हैं, और हमारे मित्र अविनाश जी हैं, राकेश जी हैं और तनुश्री हैं।
0: ओके, एंड और कोई बचा है?
1: जी नहीं दीदी, बस।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि ये अपना पसंदीदा गाना आप गुनगुना कर जाएं आज।
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है इंसाफ और सोनू निगम अनुराधा पोडवाल जी की आवाज है, और गाने के बोले तुझे प्यार इतना किए जा रहा है दीदी,
0: और इसे अगर आप अपनी
1: गुनगुना नहीं सकता, मुझे गाना नहीं आता दीदी।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो आप कोई और गाना गुनगुना सकते जो आपको आता हो।
1: दीदी मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ आपसे।
0: हाँ चलिए ठीक है, वैसे हमको बहुत प्यारी लगी आपकी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कॉल ट्यून गोंडा में। एंड भाई ये थे हमारे पास एमपी से जुड़े हुए हमारे भगवान सिंह जी, और मुझे लगता है कि भैया थोड़ा आगे गाना बढ़ा देना चाहिए, अगली फरमाइश को प्ले कर देनी चाहिए। अगली फरमाइश हमारी सबिहा जी की थी, तो उनकी अब फरमाइश पर आप सुनिए आईने की नजर लगना चाहे तुम्हें, और हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के, और हो सकता है तो अगली कॉल को लेकर के। स्टे ट्यून्ड।

0: भैया आज हमको लगता नहीं है कि मैं ऑफ ईयर जा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास से कोई और भी आ गया है, तो क्या ख्याल है, स्वागत करें क्या? जी स्वागत स्वागत करते हैं, और आपका नाम क्या है?
1: हेलो जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते,
1: मैं नरेश प्रजापति, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से।
0: ओ माय गुडनेस, क्या बात है, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा। आज लगता है मेरी छुप छुप गाड़ी गोंडा छोड़ के सब जगह जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये गाड़ी है ना, ये वाकई में ऐसी गाड़ी है कि इसमें ना इतने डब्बे हैं और हर एक डब्बे में अलग अलग राज्य के लिसनर्स सवार हो रहे हैं, और भाई ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है,
0: रुकने का नाम लेगी भी नहीं 4 बजे से पहले।
1: चलती का नाम गाड़ी है।
0: ये तो फिल्म हो गई।
1: हाँ ये तो फिल्म हो गई।
0: चलिए तो आप, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं इंदौर से, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी।
1: जी
0: पहली चीज तो, क्योंकि हमारा वैसे तो ये बॉलीवुड है, लेकिन क्योंकि आप इंदौर से हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आप अपने शहर की सफाई बनाकर कैसे रखते हैं?
1: बिल्कुल सफाई बनाकर रखते हैं, इसके लिए है लोगों की सोच। जी हाँ, सोच है पॉजिटिव, तभी ये सफाई बनाकर रखने में हम कामयाब हुए।
0: ओके, और बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम यही चाहेंगे कि जो भी हमें सुन रहे हो वो आपसे थोड़ा इंस्पायर्ड हो। वैसे तो मुझे पता है मेरे लिसनर बहुत इंस्पायर्ड है।
1: बिल्कुल, और ये मुहिम सब लोगों के द्वारा छेड़ी गई, कोई एक विशेष इसमें मतलब सफलता हासिल नहीं कर सकता, इसके लिए सभी लोगों का योगदान जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।
0: क्या बात है,
1: मंजिल मिल जाएगी साथ चलने से, हम है राही प्यार के।
0: बहुत ही प्यारा सा गाना था आपका, तो चलिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा ऑन योर रेडियो, रेडियो यानसली।
1: जी ओके, थैंक यू
0: थैंक यू। तो भैया ये गाड़ी गई थी इंदौर में, और इंदौर से हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, यूं ही कट जाएगा सफर। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भैया घड़ी के इशारों को जरा मद्देनजर रखते हैं और बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो है हसीना जी का रखवाला फिल्म से रहने दो गिले शिकवे। आइए एंजॉय करते हैं आपका अपना कॉलर ट्यून गोना और हमने बहुत सारी बातें कर ली, बस कुछ ही पलों में आपके चैट बॉक्स में भी चलते हैं क्योंकि हमारे साथ चैट बॉक्स में भी लगातार लिसनर्स बने हुए हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारी हसीना जी की, एंड वक्त है चैट बॉक्स की तरफ रुख करने का। तो नाज़िया अंसारी हमारे साथ जुड़ी हैं और लिख रही हैं कि आज सब गोंडा की ट्रेन में ही बैठे हैं। जी हाँ, और आज हमें बहुत मज़ा आया भाई, इतने सारे लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया है। धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं, एंड इसके अलावा आपका मैसेज है महेंद्र दीपन जी का, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आयश्रुति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आइए बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। कॉलर ट्यून गोंडा की अगली पेशकश जो है आपके लिए, वो है राजू टेलर्स जी की फरमाइश, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। इंजॉय करते रहिए अगर तेरे जलवे नुमाई ना होते, सुंदरिया मुस्कुराते रहिए, और हम मिलते हैं अगले गाने पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: खुदा की कसम ये खुदाई न होती।
1: एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोहम्मद शाकिर जी की, जो सुनना चाहते हैं आज मेरे यार की शादी है। तो आइए उनके यार की शादी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही प्यारा नगमा है। शादी में जब तक ये गाना नहीं बजता तब तक मज़ा नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। आई होप आपको भी लगता होगा। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इन गानों से, तो एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप सुन रहे हैं गुना का अपना FM रेडियो 89.6 FM, रेडियो क्यानस्थली।

ये फरमाइश थी हमारे मोहम्मद शाकिर जी की, और वक्त है अगले गाने को ट्यून करने का। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं हम रही साहिब की फरमाइश, लव तुनक तुनक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे अगले गाने पर अगली फरमाइश को लेकर। क्या महेंद्र दीपन जी, भैया आज आपकी कॉल आई भी नहीं है, कॉल ट्यून गुना में, और वक्त रहता है तो आपके गाने को जरूर से प्ले किया जाएगा, अदरवाइज आप हमें मंडे को जरूर से कॉल कीजिएगा।

वक्त उचला है अगले गाने की तरफ बढ़ने का। अगला गाना हमारे पास आया है अनुजी की फरमाइश पर, यकी आए ना तू मेरा हो गया है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे राकेश जी का है फ्रॉम शिमला, तनुश्री जी का है फ्रॉम महाराष्ट्र, पुष्कर जी का है फ्रॉम जम्मू एंड अविनाश जी का भी है हमारे पास, भगवान सिंह जी फ्रॉम MP एंड इसके बाद हमारे पास कार्तिक जी और साक्षी जी का। कोशिश रहेगी आप सभी के गाने को पूरा किया जाए।

और ये फरमाइश थी हमारे अनु पांडे जी की। बीच में रुकने के लिए चाहेंगे आपसे माजरत, लेकिन अगली फरमाइश की ओर बढ़ने का वक्त हो चला है, जो कि हमारे राकेश जी की है फ्रॉम शिमला। और उन्होंने फरमाइश की है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा। एंड रही बात महेंद्र जी, तो भैया कल होगी मेरी वाली प्लेलिस्ट यानी कि आशिकी का इंडिया टॉप 20, तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल एंजॉय करते रहिए।

माशाल्लाह फैज़ अनवर के लिखे हुए बेहद खूबसूरत बोल आप एंजॉय कर रहे थे। कुमार सानू की आवाज़ में अनुमलिक साहब का म्यूज़िक था। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और हम आपको सुनाते हैं पुष्कर से जम्मू कश्मीर मतलब सॉरी पुष्कर जी की जम्मू कश्मीर से फरमाइश। और हम इतने खुश हो चुके हैं अब कि भैया हमने पुष्कर से बोल दिया जम्मू कश्मीर की फरमाइश है। बस इसी खुशी को बरकरार रखिए, इंजॉय करते रहिए सुंदरिया कॉल ट्यून को डाबित राजू नती।

0: लाल टोपी।
1: और ये फरमाइश थी हमारे पुष्कर जी की फ्रॉम जम्मू कश्मीर। और आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला गाना हमारे भगवान सिंह जी का फ्रॉम एमबी और अविनाश जी की फरमाइश है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तुझे इतना प्यार किए जा रहे हैं। और हम मिलेंगे अगले गाने पर, अगले सॉन्ग को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड मिस्टर ऑप्टिकल जी, आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून कोंडा में।

और इस गाने को यहीं पर रोकने के लिए चाहेंगे आपसे माफी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास आया है साक्षी जी का और हमारी रिंकी पिंकी जी का। साक्षी जी ने फरमाइश की थी जग घूमिया और सेम सॉन्ग हमारे पास रिंकी पिंकी जी की फरमाइश का भी है। साक्षी जी की तरफ से ये गाना डेडिकेटेड है आरजी अभिषेक और दिव्यांश मिश्रा को, एंड आरजी अभिषेक जो उनके बड़े भैया हैं। एंड ओके, तो रिंकी पिंकी जी की तरफ से आया है ये गाना, डेडिकेटेड है मुझे, अनु पांडे जी को, पूनम जी को, गुलबशा जी को, रोशनी रावल जी को और आप सभी लिसनर्स को। तो एंजॉय करते रहिए जग घूमिया और हम मिलते हैं अगले गाने पर लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

साक्षी जी और रिंकी पिंकी की फरमाइश आप इंजॉय कर रहे थे। वक्त है हमारी आखिरी की दो फरमाइशों की ओर चलने का। पहली फरमाइश हमारे इम्तियाज जी की है और इसी के साथ हमारी आखिरी फरमाइश कार्तिक जी की है, जो कि भोलेनाथ का गाना है। और अब चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा, वक्त है आपसे विदा लेने का। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। कल मिलते हैं लेकर के मेरी वाली प्ले लिस्ट यानी कि टॉप 20 सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपने कितना इंजॉय किया, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली विद राजीव नदी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन न लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: शाम के 5 बज चुके हैं और घड़ी ने इशारा कर दिया एक बेहतरीन शो की तरफ। नाम है गोधूली। इसी गोधूली में हम गोंडा की अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं, उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई बातें करते हैं, क्योंकि वो बातें हमारी दैनिक जीवनचर्या में बहुत काम आती है। तो आज एक ऐसे विषय पे बात होने वाली है जिसको एक दिन नहीं, एक हफ्ते

0: घर कर लेती है, बड़ा खर्चा हो जाता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है पोषण की अगर जानकारी होगी तो शायद इन सभी चीजों से बच जाएंगे। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में पोषण विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमा मौर्या मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर से। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो जो लोग तस्वीर खुद की जब खींचते हैं उसके बाद जब मोटापे पे और पतलापे पे बात होती है
1: जी बिल्कुल,
2: कि बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सलूशन मिलने वाला है। और मुझे लगता है कॉमन ये आपकी भी प्रॉब्लम है, ये मेरी भी है
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जब सेंस में ये आता है कि सिर्फ जिम जाना या क्रीम अच्छी सी लगा लेना, साफ सुथरे रहना, इतना काफी नहीं, मतलब सबसे बेसिक होता है कि हम ले क्या रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात,
2: करेक्ट, उसमें पोषण क्या है। तो सितंबर बाकायदा साल का ऐसा महीना डेडिकेट किया गया है जिसको पूरे पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होता है कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों। लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण आप अपने बारे में, अपना परिचय दे दिए, क्योंकि हमारे श्रोता पहली बार आपको 89.6 एफएम पर सुन रहा है।
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर रमा मौर्या माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ, और जो मेरा विभाग है वो है होम साइंस एंड कम्युनिटी स्टडीज़, और मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, और एक विषय विशेषज्ञ के तौर पर भी मैं काम करती हूँ जिसमें मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन से भी डील करती हूँ। तो इस तरीके से मैं लोगों से सीधे जुड़ पाती हूँ और लोगों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व करने में मदद करती हूँ।
2: बचपन में जैसे हम लोग किसी टीचर को देखते थे कि वो मैथ्स वाले टीचर, ये अंग्रेजी वाली मैडम, आपको देख के कोई नहीं कहता पोषण वाली मैडम आ गई।
1: जी बिल्कुल, कहते हैं कि मैम मेरा डाइट प्लान बना दीजिए।
2: डाइट प्लान क्लियर है, इसके लिए तो लाइन लगी होती होगी।
1: जी सर बिल्कुल, कहते हैं कि मैम मेरा डाइट प्लान बना दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोटे होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं पतला होना चाहता हूँ। तो हमारा ये ऐसा ही चलता रहता है, हमारा सब्जेक्ट भी है और हम इस चीज को काफी इंजॉय भी करते हैं और आगे काम भी करते हैं हम इस पर।
2: वाओ, तो ये आप एंजॉय करती हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब जैसा कि मेरा विषय से संबंधित पहला प्रश्न था कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंस पोषण को क्यों।
1: पोषण को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम खुश होते हैं, कहते हैं भोजन खा लो। हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे हो गया, हम कहते हैं भोजन बना दो। बाहर से आए कहते हैं भोजन करना है,
2: करेक्ट।
1: किसी के यहाँ जाते हैं कहते हैं कि अब पानी लाओ, खाना लाओ, चाय लाओ,
2: करेक्ट।
1: तो ये सीधा हमारे, हम कहीं भी पूरी दुनिया घूम ले हम, लेकिन भोजन के ही आसपास घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि लेकिन आज का जो हमारा दौर है वो बहुत बदल गया है, वो बहुत बदल गया है। आज का दौर हमारा बहुत बदल गया है। हम कोई है जो मोटापे से जूझ रहा है, कोई है जो बहुत पतला है, एक ही घर में दोनों वैरायटी देखने को मिलती है। और स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो हमारी किशोरियां हैं, जो दूध पिलाती धात्री महिलाएं हैं, उनको अगर देखते हैं तो उनका अलग प्रॉब्लम होता है। जैसे उन्हें कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, जैसा उनका शरीर पोषित होगा उनका बच्चा भी वैसे ही पोषण पाएगा। और इसीलिए पोषण पर खासतौर से सितंबर के महीने में इसीलिए इस पर जोर दिया गया क्योंकि जो महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं, जो एनीमिया से जूझ रहे हैं, जो कल आने वाले बच्चों को जन्म देने वाले हैं, तो वो उनसे कैसे निपटें। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो दूध पिलाती धात्री महिलाएं हैं, वो कैसे योजनाओं का लाभ उठा पाएं, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया 2018 में पोषण सप्ताह। लेकिन इसको उन्होंने जब देखा कि इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो उन्होंने इसको पूरे महीने मनाने के लिए आगे बोल दिया। तो हम इसको 1 से 30 तारीख तक मनाते हैं और इसमें हम पोषण के लिए जितना भी अवेयरनेस होता है वो उसके बारे में बताते हैं, जैसे हम हेल्दी भोजन कैसे लें, हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारी जो किशोरियां हैं जो जिनको आयरन की स्पेशली कमी है, हर महीने उनको इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, और जो हमारे दूध पिलाती और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कैसे योजनाओं का लाभ ले पाए, उचित पोषण मिल पाए, बच्चे का विकास हो पाए, तो इन सब चीजों के लिए इस पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

0: तो बड़े अच्छे से आपने बड़े ही सरल शब्दों में बता दिया कि भाई जब प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हुआ कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर हम भारत में बात करें तो ऐसे कई आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले प्लस डराने वाले हैं, जिसको लेकर के लगता है कि इसकी जागरूकता भी और ज्यादा फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी बहुत जरूरी है।
0: और जिस पर आपने कहा कि भाई हफ्ते से बढ़कर के पूरे माह की बात हो गई, पहले सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, पूरे माह के रूप में मनाया जाता है, और मुझे लगता है सुनने वालों आपको पूरे साल भर के रूप में मनाना है, इसको हर दिन मनाना है ताकि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल आपको मिल सके। अच्छा, जैसा कि हमारा ये आज का विषय है स्वस्थ पोषण उज्जवल भविष्य, सो पहला जो ख्याल आया मुझे लगता है दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि एक आम इंसान की भाषा में कहें तो आज का जो खान पान है हमारे कल के भविष्य को तय करता है, कैसे ये आपसे जानना है।
1: जैसे हम है ना, देखते हैं अपने आसपास, एक मान लीजिए हमारा शरीर एक इमारत है, तो अगर उस इमारत की नींव कमजोर होगी तो इमारत कितने दिन तक टिकेगी, जैसा उसमें सीमेंट लगेगा, जैसा उसमें ईंट लगेगी उसका वैसा, आपने शुरू में ही बताया था कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा।
0: Correct.
1: और हमारे पहले के लोग कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन।
0: Wow.
1: अगर इसको देखें तो हम समझते हैं कि आपने पूछा कि क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हमारा खाना, हमारा पोषण, हमारा न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है कि हम अगर उचित पोषण, अच्छा थाली, रेनबो थाली, कलरफुल थाली जिसमें सब्जियां, फल, दूध, दही, अंडे ये सारे चीज लेंगे तो हमें दवाइयों से हम बचे रहेंगे। हमारा शरीर उसी तरीके से स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ शरीर पूरा परिवार जो होता है। अगर हम आज अपनी थाली में सिर्फ स्वाद ढूंढेंगे, जैसे हम तले भुने चटपटे खाने खाते हैं और जैसे फास्ट फूड खाते हैं, पैकेट में जो चिप्स कुरकुरे और ये सब बच्चों को पकड़ा देते हैं, ऑब्वियसली वो चटपटी होती हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन तो होता नहीं है कुछ। तो अगर हम वैसे कचरा भरते जाएंगे तो हमारा आउटपुट भी कचरे जैसा ही होगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: इसीलिए हमें अपने थाली पर ध्यान देना चाहिए, घर के पारंपरिक भोजन का प्रयोग करें, इससे आने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम बचे रहेंगे। जैसे अगर हम ये सब कचरे, ज्यादा तेल, जो स्पेशली ज्यादा तेल की बात हम रिफाइंड तेल की कर रहे हैं, ज्यादा चीनी, तो ये जल्दी हमें बीमार कर देंगी। और जल्दी बीमार करने का मतलब कि ये एक दो दिन की बात नहीं होती है, ये जल्दी धीरे धीरे शरीर को खत्म करते हैं। जैसे धीरे धीरे नमक ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, चीनी ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज, आजकल तो बच्चे भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें अपना इस पोषण थाली जो है हमारी उसको मेंटेन करना होगा।
0: यानी आपने सिद्ध कर दिया कि भाई आज का जो खान पान है हमारे कल का भविष्य है, जैसा इनपुट आज हम कर रहे हैं वैसा आउटपुट हमको
1: कल मिलने वाला है।
0: कल मिलने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम चाहते हैं एक अच्छा मन, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा करियर, तो शायद जब शरीर साथ देगा तो मन साथ देगा, मन खुश होगा तो हर पल हम खुलकर जिएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हम सभी जो है पोषण पर जोर दे रहे हैं, जिसको आपने बता भी दिया। अच्छा, अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बच्चे के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं यानी गर्भावस्था से 2 साल तक का मान लीजिए, सबसे जरूरी माने जाते हैं। इस दौरान जो है पोषण की कमी आखिर भविष्य पर उसका क्या असर डालती है, मैं ये जानना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल सर, जो हम देखते हैं ना कि माता है एक और वो अगर कुपोषित है, जो एक गर्भवती माता है और वो कुपोषित है तो उसका बच्चा स्वस्थ नहीं पैदा होगा। उसमें जरूर उसकी डिलीवरी पहले हो जाएगी माँ की और बच्चा लो बर्थ वेट हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम से उसे जूझना ही पड़ेगा। इसीलिए पोषण माह पर इतना ज्यादा जोर भी दिया गया कि कम से कम जो हमारी किशोरियां और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लोग स्वस्थ रहें और एक आने वाले स्वस्थ भविष्य को तैयार कर सकें। तो अगर हम देखें तो हमारा चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि जो बच्चे का जन्म लेने से पहले यानी जब माँ गर्भवती है उससे शुरुआत से जन्म तक का जो 1000 का दिन होता है उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं।
0: ओके।
1: मतलब कि जो, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समय होता है इसमें 1000 दिन, इसमें बच्चे का 85% 85% दिमाग जो होता है वो डेवलप होता है। जो रेस्ट का बचा हुआ वो पूरा जीवन चलता रहेगा, लेकिन मेजोरिटी जो होती है बच्चे के दिमाग के विकास की वो 85% इसी ड्यूरेशन में होती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है, और बच्चे की लंबाई, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके सीखने समझने की क्षमता, इस सब की नींव इसी में पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और वह खूब पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, तो हमें पोषण की शुरुआत माँ के गर्भ से ही करनी होगी। और हम 3 महीने में जब चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। महिलाएं उसको ले तो आती हैं सर, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करती हैं। और जो वो फोलिक एसिड बेसिकली वो दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है, न्यूरॉन्स बनते हैं उस समय, चीजें तैयार हो रही होती हैं, तो महिलाएं उस समय लापरवाही बिल्कुल ना करें। वहीं से बच्चे के भविष्य की नींव पड़ रही है। फोलिक एसिड आयरन जरूर लें अपने डाइट में, संतुलित भोजन करें, और माताएं जो जन्म दे चुकी हैं बच्चे को 6 माह तक स्तनपान जरूर कराएं। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमारे कम्युनिटी साइंस की भाषा में। तो क्योंकि हम कम्युनिटी साइंस को डील कर रहे हैं, तो ये हमारे कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आज आपके बीच में इन चीजों को साझा भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें उज्जवल भविष्य की शुरुआत करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने कि इससे हमको अब शुरुआत करनी होगी, और ये हमारी कम्युनिटी की, हमारे समुदाय की प्रॉब्लम है। और इसी के साथ में, अच्छा ये बात छोटे बच्चों की होगी, अगर मान लीजिए कोई 4-5 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा, अक्सर हमने अपने घर में देखा, मेरा खुद का भी ये था मसला कि नहीं खाना है घर का खाना, बाहर के चिप्स ही पसंद आ रहे हैं, टकाटक ही पसंद आ रहा है, और न जाने क्या क्या
1: ऐसा होता है बच्चों को, क्योंकि वो इतनी टेम्पटिंग चीजें बनाई ही जाती हैं कि बच्चे उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Correct. और एडवर्टाइजिंग भी इतनी हाईली होती है उनकी कि उसको बच्चे देख के तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पापा मुझे ये दिला दीजिए, मामा मुझे ये दिला दीजिए। Correct. और पेरेंट्स उनके लाड प्यार में हम दिला भी देते हैं बच्चों को।
0: मतलब आपका भी क्या सुझाव है, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि ऐसे में मदर या फादर जो भी उनके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स मिला सकते हैं, कुछ रंग बिरंगा हेल्दी जो फूड आइटम्स होते हैं उसको डाल सकते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा उससे भी अट्रैक्ट किया जा सके।
1: जी बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे चॉकलेट तो हमारा पारंपरिक कुछ था नहीं, मतलब चॉकलेट को तो हम बाद में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन अगर हम देखें कि बच्चों को, आपने कहा रंग बिरंगा, तो हम बच्चे हमारे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं खाने में, लेकिन अगर हम उसको क्यूट प्रिपरेशन करें, जैसे सब्जियों को थोड़ा क्यूट काट दें, मतलब उसकी कटिंग थोड़ा अट्रैक्टिव बना दें,
0: आंख नाक बना दें,
1: और उनको बोले कि आप खा लो इसको, ये बहुत मजा आएगा खाने में, तो वो डेफिनेटली खाएंगे। और जैसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उसका दूसरा रूप बना करके, मतलब साग नहीं खाएंगे बच्चे, तो उसको आप साग को चॉप करके और उसको आटे में गूंथ करके और बच्चों को उसको रोटी के थ्रू खिला दो आप। तो बहुत सारी ऐसी अल्टरनेटिव चीजें हैं जो हमें बच्चों को सप्लीमेंट लेने से बचाएंगी। हमारे जो बच्चे हैं आज, वो हमारा भारत एक्चुअली 2 चीजों से डील कर रहा है, एक तो कुपोषण से डील कर रहा है, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन से डील कर रहा है, और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए चटपटी चीजें, तो बच्चे उसी की तरफ भागते रहते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात है आपने कही कि ऑल्टरनेट्स हमको देने होंगे, और मुझे लगता है रंग बिरंगी सब्जियों से ज्यादा और क्या बेहतरीन होगा, पीले में भी आ रहा है और लाल में भी है, टमाटर भी है, मतलब जैसे मैंने देखा है कई बार ऐसे, शायद आपने भी स्क्रॉल करते हुए रील्स में भी देखा होगा, कई माएं ऐसे बड़े क्रिएटिवली बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा क्यूट प्रिपरेशन,
1: क्यूट प्रिपरेशन करके बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से उसको खिलाया जा सकता है, फलों को भी इंटरेस्टिंग तरीके से खिलाया जा सकता है। जैसे हम आइसक्रीम बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली दिला देते हैं, बच्चा रो रहा है, ठीक है बेटा हम आइसक्रीम दिला देते हैं, लेकिन उसमें जो प्रिजर्वेटिव, जो कलर पड़े होते हैं, वो कितने हार्मफुल होते हैं, और एम्प्टी कैलोरी, वो पूरा शुगर होता है। तो क्योंकि अवेयर होना पड़ेगा, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, और हमारे बच्चे के भविष्य की बात है, और हमारा पहले के जैसा लाइफस्टाइल तो रह नहीं गया है, और हमारे बच्चों का तो बिल्कुल नहीं रह गया है, तो इन सब सारी चीजों को हमें ध्यान देनी होगी। हाँ, रंग बिरंगे फलों को आप उसे क्यूट सा काट करके दे दीजिए, जैसे पपीता है तो उसको स्टार में काट के दे दीजिए, बच्चों को स्टिक में लगा कर दे दीजिए कि आप इसको खेल खेल के भी खा सकते हैं, तो वो बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से वो खा भी लेगा,
0: खा लेगा, करेक्ट,
1: और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, इस तरीके से वो सप्लीमेंट लेने से भी बच जाएगा, उसको सप्लीमेंट नहीं देना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत बेहतरीन। ये बात रही बच्चों की, लेकिन बात एक आती एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो हमारा कंसर्न रहता भी है, वो टीन एजर्स को लेकर होता है, जो बड़े भी हो रहे होते हैं और बड़े भी नहीं हुए होते हैं, और बेचारे एक ऐसी एज एक ऐसे फेज में होते हैं जो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जब वो बगावत पे आते हैं, उनको लगता है कि यार ये दुनिया जो है वो उनको अलग ढकेल रही है और उनके हार्मोन्स उनके अंदर का जो उत्साह है वो अलग ही ले जा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे एज ग्रुप के लिए बड़ा कंसर्न रहता है, लेकिन स्पेशली जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, क्योंकि भाई एनीमिया जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आती है। और डेटा मैंने पहले भी कहा कि चौंकाने वाले और डराने वाले हैं अगर हम अपने तरफ की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इस पे कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न ये है कि पोषण की कमी अगर सिर्फ बच्चों में तो होती नहीं है, बल्कि गर्भवती महिलाएं हो गई, किशोरियां हैं, इनको भी प्रभावित करती हैं। सो एनीमिया की जब बात करते हैं मैम, तो एनीमिया से बचने के लिए उन्हें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए?
1: स्पेशली हमारे किशोरियों की अगर हम बात करें, तो एक तो उनके माहवारी का समय, वो उतना ब्लड लॉस जाता है, वो तो जाना ही है, वो तो नेचर का प्रोसेस है, वो तो होना ही है।
0: करेक्ट।
1: लेकिन हम इसको सही कर सकते हैं, हम एक खान पान से सही कर सकते हैं इसको हमारे। और एक बात ये है कि हम बोलते हैं ना कि हम सप्लीमेंट ले लेंगे, लेकिन सप्लीमेंट तो एक अदर ऑप्शन है कि आपको जब हो गई कमी तो वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सप्लीमेंट ना लेना पड़े। हम पहले से ही जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: करेक्ट।
1: तो अगर हम उस चीज से बचे ही रहे तो हमें वो सप्लीमेंट और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो जितना भी हमारे लोकल में सब्जियां हैं, स्पेशली इधर का जो हमारे बेल्ट है, जो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, ये सब तो ज्यादातर वेजिटेरियन है, तो अगर वो वेजिटेरियन में देखें तो अपने पूरक आहार में वो शामिल कर सकते हैं, जैसे मोटे अनाज, उसमें भी आयरन होता है, भुना चना और गुड़ को एक साथ करके खा सकते हैं।
0: okay.
1: हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया और मेथी हो गया, इन सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। और वो जो है उसके साथ साथ विटामिन सी का जरूर सेवन करें, जैसे आंवला ले लें, किसी दिन संतरा, किसी दिन मौसमी और किसी दिन वो अमरूद ले लें। तो इससे क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो आयरन के अवशोषण की क्षमता को 70% बढ़ा देता है। और एक चीज जो बहुत अवॉइड करने वाली है कि खाना, किसी को भी, मेल हो, फीमेल हो, किशोरियां हो, माताएं हो, या हम आप जो भी हो, किसी को भी चाय या कॉफी आधे घंटे पहले खाना खाने के और आधे घंटे बाद के बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो आयरन के जो अवशोषण, जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसको वो रोक देता है।
0: तो मतलब ये बड़ी छोटी छोटी सी लेकिन जरूरी बात है,
1: जरूरी बातें हैं। और कोशिश करें कि सप्लीमेंट से बचें और लोकल के फूड खाएं। यकीन करें, जो हमारा लोकल का फूड है ना, हमारे प्रकृति ने ऐसा डिजाइन किया है कि वहाँ की लोकलिटी के लिए जो फूड होगा ना, वो उनके लिए पर्याप्त होता है, उनको नहीं जरूरत होती है सप्लीमेंट की। लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तभी ये जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट की।
0: तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी और का सपोर्ट लेने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप में सक्षम है। सीधी सी बात, तो जब फूड आप अकेले ले रहे हैं, तो अगर अच्छा फूडिंग आपकी तरफ है, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम सप्लीमेंट की तरफ रुख करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। भांति भांति के फल, भांति भांति की सब्जियां खाएं, लेकिन लोकल हो।
0: हाँ बिल्कुल, लोकल हो। जैसे यहाँ पे भाषाएं इतनी बदलती है, बोलियां बदल जाती हैं, कदम कदम पे कहते हैं, उसी तरह सब्जियां भी बदल जाती हैं।
1: और इतनी सारी वैरायटी है। जो लोकल सब्जियां हैं, जो लोकल फल हैं, एक तो उनमें कोई प्रिजर्वेटिव मिला करके उनको देर तक संरक्षित करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो वो केमिकल फ्री है, वो ताजी है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व है और वो सस्ती भी है। तो हम कहते हैं हमारे मिडिल क्लास के लोग क्या खाएं, हमेशा हमें कमी ही बनी रहती है, तो इस चीज से हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो लोकल चीजें हमारे लिए सस्ती भी हैं, एज वेल एज वो न्यूट्रिशियस भी हैं।
0: ओके, लेकिन यही सवाल जैसे आपने कहा, वो मेरा अगला सवाल भी होने वाला था कि भाई एक आम इंसान की बात करे तो कहता है कि पौष्टिक डाइट हमेशा महंगी होती है। सो जो हम रहने वाले लोग हैं, वो अपने कम बजट में कैसे अपने फूड में ऐसे अप्लाई करें कि भाई हमको सारे न्यूट्रिशन मिल जाए? क्योंकि अगर वो किसी एक्ट्रेस एक्टर को देखते हैं तो बड़े जूसेस पी रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के उनके पास बोल होते हैं जिसमें बहुत सारा काजू, बादाम, ये सब भरा होता है, तो ये सब देखकर इंसान को लगता है कि शायद ये हमारे बस की चीज़ है ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो पहला जो एक इमेज आती है। लेकिन बतौर चूंकि आप इस विषय की एक्सपर्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त जो हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं और जो किसी मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैं खुद ही रखता हूँ, तो हमारे लिए, आप जैसे लोगों के लिए किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने डाइट में पोषण बढ़ा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, खासतौर से तब जब सोशल मीडिया का दौर हो। आपने बोला ना कि जो हम देखते हैं वो बोल भर के अपना काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स ओट्स और चिया पुडिंग और ये सब बना रहे होते हैं, और हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे इसमें तो फाइबर है, फाइबर खाना है, आप एक अमरूद खा लीजिए।
0: सही बात है।
1: आप एक पपीता, आधा पपीता खा लीजिए, आप पालक ले लीजिए, आपको उतना ही फाइबर मिल जाएगा बिना किसी डेकोरेटिव आइटम के, बिना किसी महंगे पैसे वेस्ट किए हुए आपको। तो हमारा जो समाज का सबसे बड़ा भ्रम है, आपने कहा कि मतलब जो हेल्दी चीजें हैं वो महंगी हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी चीजें हैं वो महंगी हैं। क्योंकि अगर हम ना, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एक्चुअली, तो उसमें ये था कि किचन गार्डन का, तो अगर हम अपना एक किचन गार्डन बना लें, हालांकि ये एक दिन में तय नहीं होगा, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप उठाएं, जैसे सीजनल की सब्जियां उगा लें, सीजनल के फल उगा लें, तो उससे हम बहुत आसानी से कम बजट में चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो पारंपरिक थाल होती थी, जो हमारा मोटा अनाज होता था, जो हमारे दालें होती थी लोकल में, वो टोफू और ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, जो हम जापानीज से सीख रहे हैं कि जापानीज लॉन्गेविटी की तरफ जाते हैं, वो इतने लंबा जीते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है, तो हम उनको अपनाएं, नहीं, इसको करने के बजाय हम अपने लोकल फूड पे डिपेंड होकर के हम वैसा ही पा सकते हैं स्वास्थ्य। तो हम किचन गार्डन पर थे कि हम किचन गार्डन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप उठाएं, अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, एटलीस्ट सलाद के लिए तो वहां से तैयार करें। एक दिन में नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। हमारा स्वास्थ्य का खजाना जो है ना, हमारे न्यूट्री गार्डन में ही शुरू हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस अगर हम, जैसे नहीं, हमारे पास उतनी जमीन नहीं है, हम शहर में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि जब हम बाय करने जाते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं, तो हम ये ना देखें अरे ये फल बहुत अट्रैक्टिव है तो हम इसको खरीद लें, पर वो जो अट्रैक्टिव है वो महंगा भी होगा। लेकिन वो जो महंगा होगा उसके बजाय उसका दूसरा अल्टरनेटिव आपको मिल सकता है। जैसे आपको पपीता थोड़ा महंगा लग रहा है तो आप गाजर खरीद लीजिए, या आप गाजर, आप किसी गाजर को तो आप किसी लोकल वेंडर से भी ले सकते हैं। पपीता चलिए फल वाला थोड़ा महंगा दे रहा है, तो हर चीज का अल्टरनेटिव है। आपको अमरूद महंगा लग रहा है तो आप आंवला खरीद लीजिए, आंवले से अच्छा कोई विटामिन सी का सोर्स है ही नहीं।
0: करेक्ट।
1: तो आप ये सारी चीजों को करके हम ड्राई फ्रूट्स पे आते हैं। ड्राई फ्रूट्स पे अगर हम देखते हैं ना कि बादाम खा लो, काजू खा लो, अखरोट खा लो, चलो ठीक है हम खाते हैं उसको, लेकिन जो चीजें बादाम में है वही चीजें मूंगफली में मिल जाती है।
0: करेक्ट।
1: वही जो काजू में है वही सेम चीजें मिल जाती हैं मूंगफली में, जो चीजें अखरोट में है वो चीजें अलसी में मिल जाती हैं। तो उन चीजों का हम, जो हम चिया पुडिंग की तरफ भागते हैं ना कि चिया सीड ले लो, इतना चिया सीड का सर, जब हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो इतना क्रेज है चिया सीड का कि चिया पुडिंग खा लो, चिया पुडिंग खा लो, अलसी के पाउडर बना करके भी आप ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए महंगे ही भोजन की तरफ जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूध, दही, पनीर, अंडा, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके घर में मिलने वाला चीज ही आपके सेहत का खजाना है।
0: वाह, क्या बात है, ये एक टर्म यूज किया कि आपके घर में मिलने वाला ही जो है वो आपकी सेहत का खजाना है। और इसी खजाने पर हम थोड़ा सा चर्चा और करेंगे, चूंकि आपने बताया था भाई एक मिशन के बारे में, मिशन पोषण 2.0, जो कि प्रधानमंत्री का विजन भी है। सो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन लेंगे उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग चॉक। आरजे अदनान आज इवनिंग में हैं और शो लेकर आए हैं गोधुले, वो शो जिसमें हम अलग अलग पर्सनालिटीज से अलग अलग कार्यों के बारे में अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। और आज का जो विषय है भाई, वो हमने आपको बता ही दिया है। और आज का विषय स्वस्थ पोषण उज्ज्वल भविष्य है, जिस पर आज बतौर एक्सपर्ट हमसे बात कर रही है डॉक्टर रमा मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस एंड कम्युनिटी स्टडीज, माँ पाटेश्वर यूनिवर्सिटी बलरामपुर। सो जाने से पहले मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए कि जो माताएं या बहनें ये कार्यक्रम सुन रही हैं, वो सरकार की मिशन पोषण 2.0 या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है, इसका फायदा कैसे उठा सकती है। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी नीडी महिलाएं हैं जिनको इन दोनों योजनाओं की जरूरत है, वो कैसे इसका फायदा उठा सकती है।
1: बहुत अच्छा और बहुत जानकारी वाला प्रश्न आपने पूछा है सर, और हम श्रोताओं से बताना चाहेंगे कि आपके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाना बहुत ही आसान बना दिया है और इसको डिजिटल भी कर दिया है, ताकि इसका कोई आपको इसका ड्रॉबैक ना झेलना, मतलब क्योंकि हम जाते थे हमारा साइन नहीं मैच हो रहा है हमारा ये सब, तो इन सब चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया,
0: आपको स्कैन
1: बायोमेट्रिक कर दिया गया है, तो प्रोसेस आसान हो गई है। पहला कदम कि इसका लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ें, महिलाएं स्पेशली जो गर्भ होती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलें, बायोमेट्रिक आधारित जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद गर्भवती और जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, वो जो 6 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चों को टेक होम राशन मिलता है, तो ये एक हो गया कि बायोमेट्रिक वहाँ होगी तो उनको राशन मिलेगा, और इसके लिए आपको आंगनबाड़ी के जो है वहाँ पे जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलना होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की, तो इसका लाभ गर्भवती महिलाओं को उनके खाते में सीधे पैसे जाते हैं
0: पोषण के लिए,
1: पोषण के लिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनका एक तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो उनका पोषण कहीं से रुकने ना पाए, उनको खाना पीना अच्छा मिले, बच्चे को अच्छा दूध मिले, क्योंकि माता अच्छा खाएगी जभी वो अच्छा दूध दे पाएगी बच्चे को अपने, तो उनको अच्छा पोषण मिल पाए, इसके लिए वय वंदन योजना में एक राशि होती है 5,000 की, वो जाती है। तो इसके लिए बच्चे के पहले जन्म पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता 2 किश्तों में दी जाती है। पहली किस्त 3,000 की होती है जो गर्भावस्था के शुरुआती 6 महीनों के भीतर पंजीकरण और कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने पर दी जाती है। दूसरी किस्त जो होती है वो 2,000 रुपये की होती है, वो बच्चे के जन्म पंजीकरण और 14 सप्ताह तक आवश्यक टीके लगने के बाद दी जाती है। और अगर इन केस दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो अगर वो लड़की है तो सरकार का इस पर ज्यादा फोकस है कि एक ही बार में एक मुश्त राशि 6,000 रुपये की दी जाती है, ताकि बेटियों को बेहतर पोषण मिल सके। इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं सर, जो माता बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, वो इसका लाभ।
0: दो बड़ी योजनाओं के बारे में बताया और उसका फायदा मुझे लगता उठाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में चिंतित है कि किस तरह से माताओं को पोषण मिले, क्योंकि यहाँ सिर्फ माता का पोषण की बात तक सीमित बातें नहीं है। जो बच्चा होने वाला है, बेटा बेटी, वो कैसा पैदा होगा, वो कितना स्वस्थ होगा, वो जाहिर सी बात है हमारे समाज का कल है, भविष्य है। तो भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सारी योजनाएं चलाई जा रही
1: है। बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: और ये हमको खुद भी समझना होगा। अच्छा, एक बात जो बहुत जरूरी है कि अक्सर देखा होता है कि पीछे कोई भी आप फूड आइटम लेते हैं तो न्यूट्रिशन लेबल एक होता है
1: जी,
0: कई अवेयर जो लोग हैं उसको पढ़ते हैं, कई बार हमको भी समझ में नहीं आता था ये क्या, कितने ग्राम क्या लिखा है, मुझे उससे क्या मतलब है, खाना वही चीज है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि न्यूट्रिशन लेबल जो लगा होता है, जो कंपनीज लगाती है, उसको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है, उससे क्या फायदा होता है।
1: जी बिल्कुल सर, अगर ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने बच्चों को पैकेट पकड़ा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये तो हमें जानना ही चाहिए पैकेट पकड़ाने से पहले, या हम जब परचेज करने जाते हैं तो वो पैकेट उठाने से पहले कि वो जो न्यूट्रिशन लेवल लगा हुआ है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक तत्वों की मात्रा जो है उसमें दी गई है, कितना इसमें सैचुरेटेड फैट है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब कि वसा की मात्रा कितनी है, कैलोरी कितना है इसमें, कितना ग्राम प्रोटीन है, कितने इसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हैं। प्रिजर्वेटिव जो सर हम कह सकते हैं सीधे वो कैंसर से जुड़े होते हैं। जो कलरिंग एजेंट पड़ा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे और सर्च करेंगे तो कई सारे ऐसे हैं जो बैंड हैं, लेकिन फिर भी फूड कंपनीज उनको करती हैं क्योंकि उनसे अट्रैक्टिव कलर दिखता है, अट्रैक्टिव फ्लेवर आता है, लोग उसकी तरफ टेम्पटिंग होता है, आकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर वेज और नॉन वेज का भी मार्क लगा होता है, जैसे ग्रीन ग्रीन हो गया, अगर अंडा पड़ा है तो ब्राउन हो गया, नॉन वेज है तो वो रेड हो गया, ऐसे बहुत सारे उसमें होते हैं, टैग भी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज हमें आज के दौर में देखने के लिए है, हम फिर कह रहे हैं कि भारत इस समय दोहरा भार उठा रहा है कुपोषण का। एक तो ओवर न्यूट्रिशन का उठा रहा है और दूसरा माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का उठा रहा है। वजन बच्चों का कम है, बौनापन का शिकार है, हिडन हंगर है। बच्चे खा तो रहे हैं, बच्चे हेल्दी चबी चबी दिखते हैं, क्यूट क्यूट से, लेकिन उनमें हिडन हंगर है सर। उनमें हिडन हंगर का मतलब होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है, जैसे आयरन की हो गई, कैल्शियम की हो गई, वो उतने मजबूत नहीं है, उनके बाल अच्छे नहीं है, नाखून अच्छे नहीं है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो, और दूसरा है मोटापा। मोटापा यही जो हम पैकेट पकड़ा देते हैं सर, इसी से मोटापा बढ़ता है। पैकेट ना पकड़ा करके उनको पारंपरिक तरीके से डील किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो देखनी चाहिए पैकेट पे, वो शुगर कंटेंट कितना है। किसी भी चीज को खाने से पहले, आज का दौर एटलीस्ट ऐसा हो गया है कि किसी भी पैकेट जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको खाने से पहले देखना चाहिए कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है, उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है। कि जितना सैचुरेटेड फैट हम इंटेक कर रहे हैं ना, ये हाई बीपी और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। और क्योंकि कम्युनिटी स्टडीज से डील करते हैं, तो इसके लिए हम जरूर बोलेंगे कि आज से थोड़ा कम, जो हमारे सरकार ने भी लॉन्च किया है आज से थोड़ा कम, तो आज से थोड़ा कम चीनी, और आज से थोड़ा कम नमक, और आज से थोड़ा कम जो रिफाइंड ऑयल है जो हम खाते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें, उसके जगह पर आप घी यूज कर सकते हैं घर के।
0: वाह, मतलब आज से थोड़ा कम, ऐसा आपने एक लाइन बता दी जो काफी इफेक्टिव है कि आज से थोड़ा कम क्या, चीनी, नमक, और जैसा कि आपने बताया रिफाइंड ऑयल होता है या ऑयल होता है, ये हम सभी को पता है कि भाई हमारी हेल्थ के लिए ये सभी बहुत ज्यादा अगर लेते हैं, एक्सेसिव होता है, तो ये नुकसानदायक साबित होता है। बहुत प्यारी बात कही आपने, चूंकि मैंने ये कहा था कि भाई न्यूट्रिशन लेबल जो है उसके पढ़ने से संबंधित आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। चूंकि आपने पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि लोग आते हैं आपके पास में और कहते हैं हमारी डाइट चार्ट बना दिए, तो एक डाइट चार्ट से संबंधित एक प्रश्न की, एक नॉर्मल इंसान की डाइट चार्ट क्या होनी चाहिए?
1: एक नॉर्मल इंसान के लिए हम डाइट चार्ट में बोलेंगे कि जो एक स्टैंडर्ड होता है,
0: राइट,
1: तो उसको एक 30 ग्राम चावल, 25-25 ग्राम की दो रोटी,
0: ये बनने के बाद वो
1: एक
0: ग्राम देखना है कि पहले
1: दाल,
0: अच्छा,
1: अगर आप मेजर करके खाते हैं, नाप करके खाते हैं,
0: okay.
1: और नहीं तो आप अगर ऐसे खाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका 60% जो भोजन होना चाहिए आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो रंग बिरंगा होना चाहिए, जैसे उसमें सैलेड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, दाल हो। उसके बाद आप अपने पोर्शन को रोटी और चावल से भर सकते हैं, लेकिन जो आपका 60% होना चाहिए वो वेजिटेबल और फल होने चाहिए। ऐसी हमारी अगर संतुलित थाली होगी तो हम पोषक तत्वों का भरपूर, जैसे हमने बताया हिडन हंगर को, हिडन हंगर से बचने के लिए अभी सर हम और आप यहाँ स्वस्थ बैठे हैं, लेकिन अगर हमारा चेकअप हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसको रिपोर्ट को देख करके कि हमारे अंदर भी हिडन हंगर हो सकता है। जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, तो ये सारी चीजों को अगर हमें डील करना है और सप्लीमेंट से बचना है तो अपना जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, बैलेंस्ड थाली है, जो वो हमने बताया था ना कि कलरफुल भांति भांति की सब्जियों और फलों से भर दीजिए उसको, और चावल और रोटी के पोर्शन को थोड़ा कम करके आप दालों को, दूध, दही, अंडा, पनीर, इससे आप उसको भर सकते हैं।
0: तो मुझे लगता है कि भैया बहुत ज्यादा पेट भरने से अच्छा है थाली को भरा जाए, और सही चीजों से थाली को भरा जाए। और जैसा कि मैंने पूछा कि भाई एक शख्स के लिए, जो आम इंसान है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड थाली क्या है, जिसमें आपने बताया कि 60% जो है वो फल और ऑफ कोर्स आपके सैलड आइटम्स होने चाहिए, 40% में आपका खाना होना चाहिए, जबकि करते बिल्कुल उल्टा है, खाना भर लेते हैं और दो ठो गाजर काट के खा लेते हैं, हमको लगता रहे वाह क्या बात है आज तो बहुत बढ़िया खाना खा लिया
1: ऐसा ही करते
0: तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है आज के टॉक शो से मैं किसी और को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे भी खान पान में काफ़ी चेंज आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इधर मैं ध्यान भी दे रहा था। सो चलिए अब तो फिलहाल चलने का वक्त हो गया, लेकिन चलते चलते एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ मंत्र आपकी तरफ से बतौर एक्सपर्ट क्या होगा?
1: बहुत जरूरी चीज आपने पूछी, सबका एक सार समझते
0: सार,
1: हैं
0: करेक्ट
1: जी। तो चलते चलते मैं यही कहूंगी कि पहला मंत्र, लोकल खाइए, सीजनल खाइए, जो सीजन में नहीं है प्रिजर्वेटिव वाली चीजें मत लीजिए, वो नुकसान देने के बजाय आपको न्यूट्रिशन नहीं देंगी। दूसरा मंत्र है, थाली की पौष्टिकता संतुलित खाने में है। तो अभी सर ने पूछा था ना कि एक हमारी जो थाली है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें मैंने बताया तो पौष्टिकता संतुलित भोजन खाने में है, संतुलन बना करके खाइए। तीसरा है मंत्र की शुरुआती के जो 1000 के दिन होते हैं, 1000 दिन उनका सम्मान कीजिए, जो 1000 दिन है शुरुआती बच्चों के, और उनका सम्मान कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उठाइए और बच्चों को हेल्दी जीवन दीजिए, क्योंकि वो बच्चे हमारे भविष्य हैं।
0: भविष्य है, करेक्ट।
1: चौथा और सबसे बड़ा मंत्र, पोषण एक जन आंदोलन है, डॉक्टरों, अस्पतालों और आंगनबाड़ियों की अकेले की जिम्मेदारी मानने के बजाय खुद को आगे लाने की जरूरत है।
0: वाओ,
1: हमें खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे आए, सेहत का ख्याल रखें और आइए आज से ही अपने घर के सही पोषण की शुरुआत करें और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। याद रखिएगा, सही पोषण देश रोशन।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे नोट के साथ आपने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया है, और ये मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स जो सुन रहे थे उनको जरूर आज समझ में आएगा कि न्यूट्रिशन आखिर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आज से ही आप इस जन आंदोलन का हिस्सा खुद को मान रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप खुद तो बेहतर होंगे, आपका बच्चा, आपका भविष्य और ये देश सब कुछ बेहतर होगा। कैसा लगा टॉक शो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, अगले बार हम फिर हाजिर होंगे किसी अगले विषय, किसी अगले एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए गोंडा एफ एम 89.6 एफ एम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे सुना
6: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: क्या आप
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: क्या आप गोंडा से हैं?

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अब मेरी याद आए या ना आए, फिलहाल मुझे ये पता है कि जिसे आप चाहते हैं उसकी याद तो आपको हर दिन आती है। और मिलने को दिल क्या करता है भाई, आजकल तो ज़माना, जब ये गाना बना था तब मिलने के ऑप्शंस कम थे और इसलिए ये गाना बना दिया गया था। फिलहाल तो मिलने के लिए आज अवेलेबल है आपका अपना व्हाट्सएप एंड वीडियो कॉल के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि किसी तरह की कोई दुविधा, परेशानी, दिक्कत, कष्ट, मुसीबत नहीं होने वाला है। तो सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में, और आरजे बीना आज आपके साथ लाइव है फिर उसी एनर्जी के साथ। और यस, इंतज़ार था आपको आपके अपने पलों का, क्योंकि आज के दिन ना सिर्फ आप बात करते हैं बल्कि इंतज़ार करते हैं उस शख्सियत का जिसके लिए पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर लव, जिसके इंतज़ार में शायद आपने पूरा हफ्ता बिताया और सवाल पे सवाल मन में छुपाया है, लेकिन उस सवाल के आने से पहले आपको ये याद आया कि आज शनिवार नहीं है। लेकिन आज फाइनली फॉर्चुनेटली शनिवार है। लेकिन शनिवार होने के साथ साथ अगर मैं गोंडा शहर की बात करूं तो गोंडा शहर में भी चहल पहल बहुत हाई फाई है, क्योंकि यस गेस व्हाट, हमारे शहर का जाना माना त्यौहार मनाया जाने वाला है, यानी कि हरतालिका तीज। वैसे तीज को लेकर लोगों के मन में इतने सारे मिथ्स हैं, पर मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको तीज को लेके कई सारे डाउट्स हैं तो मंडे को गोंडा मैसेज मसाला ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आरजे बीना यानी कि मैं ही आपको बताऊँगी बहुत सारी क्वालिटी बातें रिगार्डिंग तीज। तीज क्यों मनाते हैं, तीज कितने टाइप की होती है, इंडिया में तीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाई जाती है, क्या विदेशों में भी मनाते हैं, वो हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको मंडे को। तो फिलहाल दीपेन महेंद्र जी राजस्थान से, गुड इवनिंग, कैसे हैं महेंद्र जी। और साथ ही हमारे साथ हैं रोशनी रावत उन्नाव से, मतलब आज पूरी मतलब इंडिया से सब लोग कनेक्ट हो गए। वैसे तो हर दिन कनेक्ट होते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन आज कनेक्ट होने के पीछे रीज़न कुछ और ही है, क्योंकि आज आपके सवाल और हमारे जवाब, और कुछ तो मेरे ऐसे भी लिसनर हैं जो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं जवाब सुन सुन के, कुछ क्वेश्चन का आंसर तो वो खुद देने आ जाते हैं कि मैम उस वाले लिसनर के लिए ये वाला आंसर सही रहेगा। तो फटाफट से उठ जाओ, क्यों तबाही मचाओ, क्योंकि आरजे बीना अगर साथ है तो डॉक्टर लव से बात करने के लिए जुड़ जाओ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बजाते रहो, और चलो भाई एक ब्रेकअप सॉन्ग सुन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जैसे वायरल फीवर हो।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

सो लिसनर्स, आपके साथ आज आरजे बीना तो है ही, लेकिन आज मैं अपने साथ एक ऐसे अपने एक लिसनर को भी लेके आई हूँ जिसको थोड़ी सी दुविधा है। दुविधा मतलब परेशानी, प्रॉब्लम, इशू, कष्ट, मुसीबत, जो भी आप पर्यायवाची के रूप में समझना चाहें, सनोनम के रूप में समझना चाहें, अपनी भाषा में समझना चाहें, वो समझ लें। ठीक है, सबलू आ गए हमारे साथ। क्या हाल है सबलू जी? मिठाई नहीं खिलाई आपने? तेरी बाहों में मुझे मरना है कि नहीं है? ज से जहाज, झ से झरना, वाह क्या बात है। मतलब मैंने तो सोचा कि आगे कोई बढ़िया सी शायरी आपने लिखी हुई, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपके घर लड़का क्या हो गया, आप शायरी भूल गए। फिलहाल लव स्टोरी की बात नहीं होने वाली है, डॉक्टर लव से बात होने वाली, क्योंकि डॉक्टर लव ही हैं जो आपकी कष्ट मुसीबत को दूर करने वाले। लेकिन हमारी एक ऐसी श्रोता है जिसको थोड़ी से कष्ट हैं, कष्ट किससे जुड़े हैं वो तो खुद ही बताएगी, लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या क्या कष्ट है। फिलहाल कष्ट से मुझे याद आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में भी जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं होती। और कल संडे, एंड कल जो संडे है इसको तो मैं जैसे लगता है कि मतलब इमेजिन ही करना चाहती हूँ, क्योंकि कल गोंडा शहर में लोग मतलब इधर उधर आ जा नहीं पाएंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए आपको थोड़ा सा मैं अपनी जो परेशानी है उससे रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रूर कुछ सुनाऊंगी। अब सोचेंगे कि क्या सुनाने वाली है। तो एक मेरे लिसनर हैं, अभी जल्दी उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम मैं मतलब अपनी एक गर्लफ्रेंड है उसको अपने दिल की बात कहने जा रहा था, लेकिन उसी समय किसी ने आके मुझे रोक लिया। मेरे दोस्त ने बोला कि अभी सही समय नहीं है, और तुम ऐसे कॉलेज में प्रपोज़ करोगे तो सबको पता चल जाएगा। और फिर मैंने उसको प्रपोज़ नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि लाओ उसको व्हाट्सएप पे प्रपोज़ कर दूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट्सएप पे प्रपोज़ करूँ क्या पता ब्लॉक कर दे, तो इसलिए मैंने खुद से व्हाट्सएप पे प्रपोज़ नहीं किया। फिर मैंने एक दिन देखा कि वो चाय पीने एक दुकान पे बैठी थी, और मैंने सोचा कि चलो उससे मिलता हूँ और चाय के साथ ही उसको बता देता हूँ। लेकिन जब तक मैं बताने का सोचता तब तक चाय ख़त्म हो गई। लेकिन मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसको अपने प्यार के बारे में बता सकूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। फिलहाल वो पसंद उनको करती है कि नहीं ये तो मैं निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे डॉक्टर लव आएंगे वही बताएंगे। पर हाँ, मेरे पास कुछ है जो मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ। एक मेरी बहुत फेवरेट सी एक शायरा हैं जिनके बड़े मतलब बड़ी पंक्तियाँ मैंने आप लोग के सामने पढ़ी है, लेकिन उन्होंने इसी सिचुएशन को बयां करते हुए लिखा है एक ज़माने में कि

तो अंजुम जी ने इस कविता को लिखा है और उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है दूसरी लाइन में कि क्यों आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपको पागल समझने लगेंगे। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। और आजकल देखिए बारिश कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, और आज तो मतलब सुबह मैं लगभग जब बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 4:15 बजे मैं उठी, बादलों का एकदम जमावड़ा था। फिर जब मैंने मतलब रोशनी में दरवाज़ा खोला तो पता चला कि धूप निकल रही है, तो बादलों को देख के भी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है।

दिल उसे। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने प्यार का इजहार कर दिया है और उन्हें नहीं पता है कि उनके साथ क्या आगे होने वाला है, उनकी भी बात कर लेते हैं। अब आपको नहीं पता है लेकिन इन लाइनों को सुन के आप समझ जाइएगा क्या हो सकता है आपके साथ। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बहुत सीरियसली प्यार करते हो तो आप उसको लेके थोड़ा कमिटेड हो जाओ, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। भाई डॉक्टर लव नहीं है तो उनकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ कि भाई अगर आपका किसी के साथ कुछ है, मतलब सीरियस वाला मैटर है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी सीरियसली कि आप उसकी अच्छाइयाँ देखिए। दुनिया में हर इंसान जो है उसमें कुछ गुड्स एंड बैड्स दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप जो है आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे तो ये वाली चाहिए, मुझे मतलब वो मेरी पुरानी वाली एक्स में तो ये क्वालिटी थी, वो तो मुझे बॉदर नहीं करती थी जब मैं उसको कॉल नहीं करता था, तो ये सारी चीज़ें सोच के हम कंपेयर ना करें, एक में अपनी सारी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सोचें। तो आखिरी जो मतलब हैं वो यही कह रहे हैं कि

ही ये, तो ये काम हमारे आजकल के लड़के और लड़कियां भी करते हैं कि मतलब इस वाले से समझ नहीं आई। मतलब मैं तो ये भी देखती हूँ कि लिव इन वाले में भी रिलेशन मतलब बढ़िया चलता है, फिर कुछ दिन बाद मतलब ब्रेकअप ही हो जाता है क्योंकि कमियां दिखने लग जाती हमें। तो प्लीज़ स्टे इन वन गमला, डोंट मतलब चेंज गमला, अदरवाइज़ यू विल बी स्पॉइल्ड। क्योंकि फूल को अलग अलग गमलों में प्लांट करेंगे देन फूल विल बी स्पॉइल्ड, मतलब आपका फूल जो है सूख जाएगा। तो चलिए फूलों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं और सुनते हैं एक गाना जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और आपका भी पसंदीदा हो जाएगा।

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह?
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेब।

0: वैसे शोक अदा कौन कहाँ से लाए ये तो मुझे नहीं पता। ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कहने के लिए होती हैं लड़कों की, बाकी हमें भी पता है कि इनकी अदाएं क्या होती हैं। और तारीफों के पुल बांधना तो कोई लड़कों से सीखे। फिलहाल के लिए डॉक्टर लव भी हमारे बीच में ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक श्रोता जो कि हमारे पास मतलब उनका कॉल नहीं लग रहा था पिछले 8-10 हफ्तों से, और वो आज साक्षात स्टूडियो पधारी हैं, वो भी लंबी कतार को चीरते फाड़ते, यानी कि पूरे ट्रैफिक को मतलब इधर उधर बिखेरते हुए। पिछले 15 मिनट से काफ़ी लंबा ट्रैफिक चल रहा था और उसको बेचारी मतलब क्या बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपने श्रोता से आपको इंट्रो करा देती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग निधि, कैसी हैं आप?
1: हेलो मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, और मुझे आपके बारे में सोच के चिंता हो रही है कि आप इतनी दूर से इतनी मतलब 8 हफ्ते आपने इंतजार किया। इट मींस यू हैव पेशेंस। लड़कियों के पास पेशेंस होता है?
1: यस मैम, लड़कियों के पास बहुत पेशेंस होता है।
0: मतलब अक्सर लड़के कहते हैं कि लड़कियां पैनिक होती हैं, ये होती, लेकिन मैंने देखा है कि लड़के ही हैं जो चौराहों पे मतलब माँ बहन की गालियां करते मिल जाते हैं इतनी इतनी छुटकू छुटकू बात पे।
1: यस मैम, बात बात पे पैनिक लड़के ही होते हैं, लड़कियां जल्दी पैनिक नहीं होती।
0: कितना भी इन लोग को सिखाओ, मदर्स डे मनाएंगे, सिस्टर्स डे मनाएंगे और गाली देने के टाइम सबसे पहले आगे आ जाएंगे।
1: जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
0: एनीवे मैं थोड़ी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे मतलब जनरल टॉक कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको समस्या बड़ी गंभीर सी है कि आपके परिवार वाले आपको परेशान करते हैं, ऐसा आपने मुझे बताया था फोन पे, आगे की जो बात है वो आप बताइए, फिर आपकी बात को सुनते हुए मैं डॉक्टर लव को भी बुला लूंगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए।
1: मेरे घर वालों का कहना है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, क्यों सबका होता है, तुम ऐसे क्यों रहती हो, अकेले रहती हो, इन किताबों से निकलो, दुनिया जानो देखो। पर नहीं, मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे लड़कों से बात करते हुए डर लगता है।
0: लड़कों से बात करते हुए डर?
1: मैम चिल्ला देते हैं बात बात पे।
0: ओ माय गॉड, मतलब इनडायरेक्टली आपने तारीफ की है, बेइज्जती मुझे थोड़ी कमी समझ है। हाँ, बिना माइक के लोग बोल सकते हैं, ये बात सही है। और कोई मतलब फोबिया या डर जैसा, मतलब डरने की क्या बात है?
1: मैम पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्यों है, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लगता है।
0: कहीं फ्रिज वाला मामला तो नहीं है?
1: यस मैम, ये हो सकता है, मैंने अपने आसपास ऐसी चीजें देखी होंगी कि मुझे लड़कों से डर रहा है। ऐसा कहते नहीं है कि आसपास का माहौल जैसा रहता है तो अंदर बैठ जाता है वो।
0: हाँ ये तो है, देखिए एनवायरनमेंट आसपास का मतलब को बहुत हमें प्रभावित करता है। भाई आसपास के लोग मतलब गा गा के बात कर रहे तो हमारे अंदर भी थोड़ा म्यूजिक आ जाएगा।
1: यस मैम बिल्कुल।
0: आसपास के लोग अगर हमारे साथ मतलब एक नए कल्चर को फॉलो करेंगे, जैसे 80s वाला ट्रेंड ही ले लो।
1: जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
0: ऐसे लग रहा है कि 80 का दशक चल रहा है, लेकिन बात से तो किसी को देख के लग नहीं रहा है कि 80 का दशक चल रहा है। एनीवे, फोटोज में जो हमने इफेक्ट्स डाले हैं, काश वो जिंदगी में भी आ जाते। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा डॉक्टर लव के पास, वही आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे एकदम बिंदास तरीके से। डॉक्टर लव, स्वागत है आपका।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसी हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर लव, लेकिन आपसे मतलब क्या बताऊँ, आज मेरी एक लिसनर ने आके मेरी आंखें खोल दी जो कि बंद थी।
2: मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि आपकी आंखें बंद थी?
0: मेरी आंखें यही कहना चाहती हैं कि लड़के जो हैं वो चीख चीख के बात करते हैं। इस बात को मैंने पॉइंट आउट किया, लेकिन मुझे लगा शायद मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये और लोग भी पॉइंट आउट कर रहे हैं।
1: जी मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
2: नहीं मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी मैंने चीख चीख कर तो बातचीत नहीं की।
0: अरे एक दिन मैंने देखा था, एक पेशेंट आया था, उसके कान में चीख के बात कर रहे थे।
1: सर क्लास में भी चीख के बात की मैंने देखा, इंग्लिश पढ़ाते हुए, बच्चों सुनो, पीछे में बैठती थी।
0: नहीं ये वैसे इंग्लिश तो नहीं, लेकिन हम ये प्यार की कक्षाएं अक्सर दिया करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है कि आप क्या करते हैं, इनको आपसे बात नहीं करनी है।
2: ठीक है, तो मतलब समस्या क्या है?
1: सर मुझे लड़कों से बात करते हुए डर लगता है।
2: तो मत कीजिए,
1: ऐसे जीवन नहीं चलता है सर, घर वाले ताने दे रहे हैं।
0: जमाना बदल चुका है, अगर लड़की लड़कों से बात ना करे तो डाउट करने लगते हैं परिवार वाले
2: कि मतलब लड़की ठीक ठाक है कि नहीं।
1: यस
0: हाँ, मतलब हर प्रकार के सवाल मन में आते हैं, जमाना बदल चुका है।
2: जमाना बदल चुका है तो मतलब
0: बहुत सारे लड़कियां ऐसी भी हैं जो जिंदगी में ये धैर्य बना चुकी हैं कि वो आइसोलेटेड रहेंगी, मतलब अकेले।
2: हाँ मतलब,
0: और मुझे भी ऐसा लगता है रहना ही चाहिए।
2: हाँ जब भाई जब सिलेंडर हो और टूरिस्ट प्लेस से किसी को फेंका जा रहा हो तो पुरुषों को भी डर लगना चाहिए।
1: बस दो चार में इतना डर सर?
2: नहीं दो चार तो क्या, इधर संख्या करोड़ों में है क्या?
0: डॉक्टर लव करोड़ों में नहीं।
2: हाँ
0: आप अगर थोड़ा सा इतिहास पे ऐसे ऐसे हल्की सी भी नजर घुमाएंगे ना आपकी रूह कांप जाएगी। क्यों खिलजी को भूल गए क्या आप?
2: नहीं रूह कांप जाने वाली कोई बात नहीं है।
0: हंस रहे हैं।
2: इस समय देखिए नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है।
0: सशक्तिकरण भी हो रहा है लेकिन जो कहते हैं ना आरीकरण भी चल रहा है।
2: नहीं सशक्तिकरण का मतलब नारी सशक्तिकरण का मतलब
0: नारी तो है ही लेकिन आरीकरण भी देखा मैंने। लोग आरियां खरीद के, मतलब अभी जल्दी मैंने देखा कि एक लड़के ने क्या किया कि अपनी पत्नी को काट के बैग में पैक कर लिया और उसका फेस जो था उससे रोज बात करता था फ्रिज में। अभी जल्दी का है, परसों मैंने पढ़ा है।
2: देखिए दुनिया ये मोहब्बत से चलती है, नफरत से नहीं चलती।
0: ये कौन सी मोहब्बत है आरी वाली?
2: मतलब
0: फ्रिज में
1: ऐसी मोहब्बत ही किसको चाहिए?
0: डॉक्टर लव,
2: आई एम सेइंग दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं। ये कोई एक इतनी बड़ी जनसंख्या है भारतवर्ष, इतना बड़ा पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है, उसमें छिटपुट घटनाएं अगर हो गई तो उसमें हम पूरे मानव जाति को दोष नहीं दे सकते कि सब खराब होते हैं।
0: बिल्कुल। और धर्मेश त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आप बताइए कि मतलब हमारी जो एक प्यारी सी लिसनर है, आपकी प्यारी सी बहन है, उसको मतलब ये डर है कि लड़के बहुत शाउट करके बात करते हैं। आपको क्या लगता है लड़कों को थोड़ा सा अपना मतलब वॉल्यूम कम करना चाहिए या थोड़ा सॉफ्ट बोलना चाहिए? मतलब हर इंसान से एक टोन में बात नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे साथ सबलू भी हैं, महेंद्र जी भी हैं, रोशनी भी है, सबको सबसे मैं सवाल कर रही हूँ। चैट रूम में जो भी है वो बिल्कुल आंसर करें।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल आंसर करें।
0: आज ज्वलनशील मुद्दा उठाया गया है।
2: ज्वलनशील मुद्दा उठाया गया है और मतलब ये इतना ज्वलनशील है कि हमको लगता है हम हॉट सीट पे बैठे हुए।
0: और आपके मन में भी कोई ज्वलनशील प्रश्न है तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपका अपना नंबर 6 9333 16װ 9 इंतजार कर रहा है आपके टैप का।
2: जी,
0: मतलब डायल करिए और अपने सवाल का जवाब पाइए डॉक्टर लव से, क्योंकि हम डॉक्टर लव को इतनी महंगी फीस दे के यहाँ चाय पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बुलाते हैं।
2: चाय पीते ही नहीं आप
0: और चाय के साथ आप कभी कभी समोसा भी खा लेते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू पे समोसा एंड चाय आपको कि आप हमारे मतलब मरीजों का इलाज भी ना करें। इलाज करने आए हैं आप, मतलब मैं ही नहीं कह रही डॉक्टर लव को हम समोसा नहीं खिलाना चाहते, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ समोसा खा के चाय पी के ना जाएं।
2: नहीं ये बताइए 6 दिन तक तो मैं आपको इडली डोसा सांभर दही बड़ा जो कुछ आप कहते हैं।
0: अरे मैं आप की तरह ही हूँ, मैं भी यहीं समोसे चाय के भरोसे चलती हूँ। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ तो मतलब हम दोनों यहाँ पे मरीजों का इलाज करने के लिए हैं।
2: हाँ मरीजों का इलाज करने के लिए है और मरीजों का इलाज।
0: मेरी इडली और सांभर पे जरा नजर मत रखिए, मतलब खिला देते हैं तो मैं भी तो कंपाउंडर हूँ। चाय पानी तो यहाँ तो भैया वो ईटे जोड़ने वाले आते हैं, मिस्त्री उस्त्री उनके साथ भी आते हैं तो उनको चाय पार्ले जी बिस्किट ये सब दिया जाता है।
1: मेरे सवाल का पर जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक।
2: नहीं देखिए ऐसा है कि हम आपको एक बात बताएं।
1: जी बिल्कुल।
2: हमारा नंबर आप नोट कीजिए।
1: जी बिल्कुल नोट कर लेते हैं।
2: और नोट करने के बाद आप हमसे धीरे धीरे बात करना फोन पर शुरू कीजिए।
1: सर आप जैसा ही हर इंसान होगा?
2: नहीं वो बात नहीं है।
1: धीरे मैं मतलब आप चाह रहे हैं मैं चिल्ला के
0: डर के आगे जीत के पास ले जा रहा
2: हूं। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आप बात करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जो गलत फहमी आपके दिल में है लड़कों के प्रति,
1: यस,
2: वो आने वाले कुछ दिनों के भीतर दूर हो जाएगी जब मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ऐसा
1: मेरे पापा मुझसे पूछते हैं अक्सर हमारे घर में बाबू कहना ये बहुत आम बात है। हाँ, हमारे पापा हमें ऐसे ही कहते हैं।
2: हम भी अपने छोटे बच्चों को बाबू ही कहते हैं, भैया ही कहते हैं। तो खासा जो आपका डर है इसको दूर करने का एक उपाय है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
1: Yes,
2: अब प्रैक्टिकल होने के लिए आपको किसी लड़के से बात करनी पड़ेगी।
1: हमारे घर में 3 लड़के हैं, हमारे बाप हम सबसे बात करते हैं सर। हाँ, ऐसा नहीं है।
2: तब आपने क्यों कहा लड़कों से बात कर दिया?
1: क्यों वो, अरे वो हमारे घर के हैं, नहीं चिल्लाते हैं कभी कभी वो भी चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ।
2: अच्छा मतलब सबसे ज्यादा डर आपको किससे लगता है?
1: वो उनके साथ मैं रहती हूँ, जैसे आप किसी के साथ रह रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप चेहरा देख के जान जाते हैं ठीक है अभी बोलना है नहीं बोलना है. अब आप किसी ऐसे इंसान से अगर कोई आपसे आ रहा है पता पूछने, पर आपने देखा वो लड़का है, मैं वहाँ से हट जाती हूँ, भाई इसने कहीं चिल्ला दिया तो.
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलतफहमी जो है, देखिए एक कहावत कही जाती है संस्कृत में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखती हैं आपको ये दुनिया वैसी ही नज़र आती है. अब हमने पीला रंग का चश्मा पहन रखा है तुमको सब पीला नज़र आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि सब पीला है, वो नज़र आ रहा है. काले रंग का चश्मा पहन रखा है सब कुछ काला नज़र आ रहा है.
0: ऐसा नहीं है डॉक्टर लव, कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि मतलब दुनिया में बड़े ईमानदार लोग हैं लेकिन चुटकी बजाते चोरी हो जाती है.
2: Yes, नहीं, वो बात सही है लेकिन दुनिया में खाली बेईमान लोग हैं ये भी तो नहीं सही है.
0: हाँ ये बात सही है लेकिन मतलब डर को दूर करने के लिए हमें कोई उपाय तो निकालना.
2: हाँ तो वही उपाय निकालने के लिए उपाय की ही तो बात कर रहे हैं कि भाई जिसको भी लड़कों से बात करने में डर लगता
0: है, सोच बदलें दुनिया बदल जाएगी.
2: हाँ क्योंकि हाँ जहाँ सोच वहाँ
0: शौचालय नहीं,
2: नहीं है वहाँ,
0: यहाँ पे प्रगति है.
2: हाँ जहाँ सोच है वहाँ पर विचारधारा है, और जहाँ निगेटिव विचारधारा है तो उसको पॉजिटिव में बदलने का काम ही हमारा है.
0: बिल्कुल, और आपकी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है निधि थोड़ा पॉजिटिव हो रही हैं. और चलिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम हमारे लिसनर से बात करने के लिए और तैयार हो जाते हैं. और फटाफट से आप लोग डायल करते रहिए और अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए चैट रूम में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लव लाइव हैं आपके साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबी वाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 99.6 FM पर, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन. स्टे ट्यून्ड.

0: मस्ती के तराने बजते हैं तो हमारा मन भी सोचता है कि मस्ती में हम, लेकिन क्या बताएं, हम मस्ती में हो नहीं पाते हैं क्योंकि मन में बड़े सारे सवाल हैं जो हमें परेशान कर जाते हैं। तो डॉक्टर लव ये बताइए कि जैसा कि निधि की बात हो गई हमसे, तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप बताइए आपका क्या हाल है, मतलब आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ लोगों के अंदर ये विडंबनाएं हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकता है?
1: देखिए, ऐसे लड़के जो है वो स्वभावतः बहुत विनम्र और बहुत कठोर हृदय के नहीं होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। नारियां कठोर स्वभाव की होती हैं।
0: अरे ये तो ना कहिए, कभी नहीं, कभी।
1: अब मैं इसी बात को सिद्ध करना चाहता
0: हूँ। मैं सिद्ध कर दूँ तो?
1: नहीं, अगर मैं सिद्ध कर दूँ तो, मतलब जो मैंने कहा है कि लड़के कोमल हृदय के होते हैं,
0: करिए सिद्ध।
1: कर दी सिद्ध। अच्छा, एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि बस में एक पुरुष और एक महिला बैठी हुई है, सपोज कीजिए, और मतलब हो सकता है भाई लोग चलते समय कभी कोई थक जा रहा हो, कहीं पलक झपक के कहीं नींद आ गई, तो अगर बेचारी महिला को नींद आ गई और उसका जो सर है वो पुरुष के कंधे पर टिक गया, तो पुरुष को जाना होगा लखनऊ

0: चला जाएगा कानपुर तक, लेकिन ये नहीं कहेगा कि उठो, झिड़केगा नहीं। मतलब कितना कोमल है कि बेचारी सो रही है, थकी हुई होगी, सो जाने दो। इसी सिनेरियो को उल्टा कर दीजिए,
1: ऐसे लोगों को कोमल नहीं मूर्ख कहेंगे।
0: नहीं, ऐसे सिनेरियो को उल्टा कर दीजिए, इसी दृश्य को उल्टा कर दीजिए। पुरुष बेचारा थका है, बगल में कोई महिला है, झपकी आ गई।
1: अब इस बात पे आप बात करेंगे ना तो बहस लंबी
0: नहीं सह, अब सर उसके कंधे पे चला गया। अरे वो हंगामा मचाएगा, तुरंत झिड़केगी, उठो बदतमीज कह के, मामला जो है पब्लिक भी उसको सपोर्ट करेगी। और बताइए बगल में बैठे थे, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, सर रख दिया। तो
1: नहीं, मैंने तो ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा।
0: नहीं तो कभी आपने किसी पुरुष को किसी दूसरी महिला के कंधे पर सर रखते हुए
1: नहीं,
0: देखा?
1: ऐसा मेरे साथ ही हुआ, एक आदमी ऐसे सो रहा था। हाँ? मैंने सिंपली बोल दिया कि भाई सब सीधे बैठ जाइए।
0: हाँ, लेकिन अगर आप कहीं सो गई होती तो बेचारा कहता कि चलो नींद आ गई है।
1: नहीं, वो तो आपको भी पता है कि कौन क्या कहता है और क्या क्या नहीं कहता।
0: नहीं मतलब जनरली एक स्वाभाविक सी बात, आप देखिए तो पुरुष का हृदय
1: नहीं। हम भाई कोरोना काल को लेके बहुत सीरियस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है।
0: सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है।
1: नहीं नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और हम इस बात को लेके बहुत सीरियस हैं।
0: नहीं मतलब सामाजिक दूरी चाहती हैं कि शारीरिक दूरी चाहती हैं?
1: हर प्रकार की दूरी।
0: मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि समाज से दूर हो गए हम, तो इसलिए हम चाहेंगे कि मतलब भाई बगल में ना बैठो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पुरुष जो है वो बड़ा कठोर होता है, पुरुष कोमल होता है।
1: अरे वो मतलब चौराहों पे दिख जाता है,
0: पत्नी की एक
1: शहर में चौराहों पे दिख जाता
0: पत्नी
1: है,
0: पत्नी बेचारी घूर देखा।
1: एक आदमी ऐसे जा रहा था, उसको एक बाइक वाले ने मतलब शायद छुआ भी नहीं होगा, बस वो तो ऐसे हल्का सा उसकी हवा लग के गई होगी। इसी बात पे ईटा पत्थर चल गया, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं लड़के।
0: बात वो नहीं, लड़के लड़कियों के प्रति सॉफ्ट हार्टेड होते हैं।
1: अरे
0: मतलब आप
1: इसको हम कुछ और भी समझ सकते हैं।
0: नहीं उसको
1: मतलब इसका ना मतलब ये फ्लर्टी नेचर है।
0: नहीं नहीं आए, बिल्कुल ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं होता। मतलब देखिए ऐसा है, वो जवानी में कहीं किसी ने ठोकर मार दी, उसके बाद अगला शादी भी नहीं बोल रहा है और उसके पश्चात चढ़ता हुआ चला जा रहा है तो गुस्सा तो लगेगी भाई। अब ये होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने क्रोध को शांत करने का तरीका जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो ये सिंपल सी मुझको लगता है कि ये बहुत ये कहना कि लड़के स्वभावतः क्रूर होते हैं, ये मतलब मुझको नहीं लगता कि ये जजमेंट सही है। आपको लगता है?
1: पता नहीं, सोचना पड़ेगा।
0: हाँ मतलब सोच के देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई आपके घर में आपके पापा बेटा पति कई रूप है पुरुष के, तो मुझे लगता है कि अगर उन कई रूप में आप पुरुषों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर वेरी केयरिंग।
1: ये बात तो सही है। तो चलिए मतलब लड़कों के लिए गाना सुन लेते हैं, और बड़ा प्यारा सा गाना है, माधुरी जी की ऊपर फिल्म आया गया, मुझे बड़ा पसंद है। तो चलिए आप लोग के साथ सुनते हैं और इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
3: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
4: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
3: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
4: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
3: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: अच्छा डॉक्टर लव
1: जी,
0: मेरे एक श्रोता कह रहे थे कि मतलब वो उसमें कस्टमर केयर में काम करते हैं।
1: कस्टमर केयर
0: वो जो मोबाइल पे पहले हम लोग कस्टमर केयर बहुत खेला जाता था।
1: हाँ।
0: लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना फोन करके औरतें लड़कियां पकाती हैं, एक से एक सवाल पूछती हैं, उतना लड़के नहीं पकाते।
1: हाँ, बात सही की है।
0: मैं ऐसा थोड़े है।
1: ऐसे है,
0: ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: क्या मतलब लड़के कटवाते हैं?
0: और क्या, लड़के भी बहुत ऐसे ऐसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। फीमेल कस्टमर केयर वाली मिल गई तो झूठे झूरे रहेंगे। एक मिला तो ऐसा था ना कि मतलब वो फोन किया, फीमेल कस्टमर केयर वाली मिल गई, अब बात तो कर लिया, हिंदी के लिए एक दबाएं दो दबाएं, फिर उतने में तो लड़कियां ही बोलती हैं। हाँ। सुन के फिर आगे जब कस्टमर केयर वाली बोली कि सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपको आइडिया सिम से लेके क्या समस्या है, क्या आपका रिचार्ज प्रॉब्लम, ऐसा करके उसने पूछा। अच्छा जो भैया मतलब, तो उसने कहा कि अच्छा मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर केयर में काम करते हैं उन्हें सब लड़का लोग काम करते हैं या लड़कियाँ लोग, कि सब लोग मिलके काम करते हैं? तो कहे ये कौन सा सवाल है, ऐसे करके वो कुछ देर बात किया, फिर फ़ोन वो काट दी इरीटेट होकर। फिर वो दोबारा फ़ोन किया तो लड़का बोला। तब से वो बेचारा रोज करता है कि वही कस्टमर केयर वाली मिल जाए बात कर लें,
1: मिल जाए बात कर लें, लेकिन हम
0: परेशान
1: तो...
0: है बेचारा वो।
1: मतलब लेकिन एक लड़की ने फ़ोन किया कस्टमर केयर पर तो पूछ रही है कि आप बताइए, वो बाहुबली फिल्म आई थी तो कुछ से पूछ रही है कि आपसे कोई सहायता चाहिए थी, तो उसने कहा जी सहायता कीजिए। तो कुछ नहीं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो उसने कहा भाई हमारा एक प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। तो उसने कहा जी बताइए। तो उसने कहा कि बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब बताइए बेचारा वो बेचारी वो कस्टमर केयर वाली क्या जवाब देती?
0: ये तो वही जाने क्या जवाब देगी।
1: मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के ही कचवाते हैं?
0: अरे ऐसा नहीं है, लड़कियां मतलब बहुत नॉर्मल सवाल करती हैं।
1: जैसे
0: ना हो तो अभी कोई लिसनर कॉल आए फीमेल तो उसे कहिए हम कस्टमर केयर बोल रहे हैं।
1: हाँ।
0: देखा जाए क्या सवाल करती है।
1: अच्छा चलिए ये भी सही रहेगा। हाँ मतलब हम कस्टमर प्रैंक कॉल करेंगे।
0: चलिए इंतजार करते, नहीं प्रैंक कॉल का क्या, वो आए तो बस आप ये मत बताइए हम डॉक्टर लव बोल रहे हैं।
1: हाँ।
0: बता दीजिए कि हम कस्टमर केयर बोल रहे हैं एयरटेल से, आपका सिम किस कंपनी का है, तो बताएगी इस कंपनी का है
1: जी,
0: तो आप बता दीजिएगा कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, तब देखते हैं क्या सवाल वो करती है।
1: हाँ, ये बात सही है।
0: हाँ, तो चलिए हम लोग गाना सुनते हैं और इंतजार करते हैं एक कॉलर का, फॉर्चुनेटली कोई फीमेल कॉलर हो।
1: जी बिल्कुल, फीमेल कॉलर जरूर आएगी।
0: हाँ बिल्कुल। और तब तक के लिए धमाकेदार गाना सुनते हैं, क्योंकि अक्सर लड़के कहते हैं कि हम लूट गए, लेकिन कैसे लूटते हैं ये तो हमें ये गाना सुन के पता चलेगा।

0: जी हाँ, और इसी के साथ एक कॉल आ गई है मेरे साथ भाई, देखते हैं कौन जुड़ा है मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम थोड़ा सा अपनी मोबाइल को तेज कीजिए, या आपकी आवाज़ यहाँ तक आ नहीं रही है। जी अब बताइए। हेलो, ये फ़ोन आया और स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया। देखते हैं दोबारा फिर। हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: डॉक्टर से बोला जाता है?
0: जी नहीं, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो मैम, कैसी हैं आप?
1: दिन नहीं, रात हो गई है।
0: अच्छा, मतलब हम आने वाले दिन की बात कर रहे थे कि आज रात में आप सोकर उठे तो अगला कल वाला दिन आपका शुभ हो, क्योंकि
1: रात में शुभ रहेगा।
0: नहीं नहीं, रात शुभ रहे, रात शुभ रहे, रात बहुत शुभ रहे आपकी। भाई दिन शुभ बोला जाता है, रात शुभ नहीं बोला जाता, तो हमने कहा भाई दिन शुभ हो।
1: तो कौन कंपनी कस्टमर केयर हो भैया?
0: हम अब वोडाफोन से बात कर रहे हैं।
1: वोडाफोन से?
0: जी जी, बताइए मैम, आपका क्या रिचार्ज वगैरह, आपको प्लान बताऊं मैं, या आप डेटा संबंधी जानकारी कुछ चाहेंगी?
1: नंबर गलत लग गया है, हम तो डॉक्टर लव से बात करना चाहते रहे।
0: नहीं, डॉक्टर लव नाम के यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, ये मतलब वोडाफोन।
1: अरे चलो, तो कस्टमर केयर से हो तो तनिक कुछ बताओ, बताओ कितने रुपए रिचार्ज रखे हो?
0: देखिए माता जी, हम आपको बताए कि
1: माता जी
0: नहीं, चलिए आपको माता जी नहीं कहेंगे, हम आपको दादी माँ कहेंगे। अच्छा दादी माँ, तो आप सुनिए हमारी बात को, जैसे आप नेट वगैरह चलाती है कि नहीं चलाती?
1: दादा जी तू, हम भैया अभी हम बहुत छोटे, हमारी शादी नहीं हुई है।
0: अच्छा शादी नहीं हुई है आपकी?
1: जी।
0: मतलब क्या लड़के वाले देखकर मना कर देते हैं क्या?
1: काहे भैया, लड़के वाले अभी देखने आ नहीं रहे हैं।
0: अच्छा अभी लड़के वाले आपको देखने नहीं?
1: भादो चल रहा है, हमारे यहाँ भादो में नहीं लड़का लड़की देखा जाता।
0: नहीं जैसे मतलब भादो तो इस साल
1: लड़कियाँ वाले हैं वो, कि शादी डॉट कॉम वाले?
0: नहीं, हम जैसे शादी की बात नहीं करें, कहा कि हमने आपको जो है माता जी पढ़ा।
1: आपने पूछा ऐसे कौन, मतलब हमारी शादी हुई है कि नहीं हुई है? कस्टमर केयर वाले हो तो कस्टमर केयर की तरह बात करो ना।
0: कस्टमर केयर ही तरह तरह से हमने आपको माता जी प्रणाम कहा था, तो आपने कहा कि हम माता जी नहीं बोल रहे हैं, तो हमने कहा था दादी माँ बोल रही होंगी। भाई माता
1: नहीं, तो आप कुछ भी ना बोलिए, हम तो देखे हैं जो कस्टमर केयर वाले होते हैं सर और मैडम बोलते हैं।
0: जी सर मैडम बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि भाई आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आप काफी जो है वो
1: अच्छा, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप कहीं से रिटायर हो के कवर से बात कर रहे हैं अपने, जो कवर का टिकट कटा है उसी बैठ के बात कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं माता जी, आप बुरा ना मानिए। तो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आप जो मोबाइल चलाती हैं वो बड़ी वाली चलाती हैं या कीपैड चलाती हैं?
1: पहले मैडम बोलो।
0: हाँ ठीक है भाई, अब आपको मैडम सुनने में इच्छा जाए तो मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो फोन चलाती हैं वो छोटा वाला चलाती हैं या बड़ा वाला चलाती हैं?
1: तू चलाओ छोटा मोबाइल, दुनिया बड़ा चलावा थे, हम रील बनाए थे।
0: अच्छा रील बनाती हैं आप?
1: बड़ा मोबाइल चलाती हूँ मैं।
0: अच्छा बड़ा मोबाइल चलाती हैं, तो मतलब जो आपका डेटा है वो क्या दिन भर में पूरा खर्च हो जाता है या बच जाता है?
1: अरे आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आप बताइए आपके पास कौन कौन सा रिचार्ज है, क्या क्या रुपया का है, कितना डाटा वाटा मिलता है? हम डाटा नहीं आटा जानते हैं।
0: देखिए हम आपको डाटा आटा सब बताएंगे, आटा 60 रुपए किलो है, स्वाद कंपनी का, आशीर्वाद कंपनी का भी है, लेकिन अगर आप 249 रुपए से रिचार्ज कराती हैं मैडम तो आपको जो है वो 1.5 GB रोज।
1: अभी बताओ तनिक, 249 करे सच्चा का है, 250 कह दियो। एक रुपया के छूट ना दियो।
0: एक रुपए की छूट इसलिए दी जाती है मैम कि जब आप अपने ही फोन से अपना फोन रिचार्ज करती हैं तो वो एक रुपया ज्यादा कर।
1: तू कौन कंपनी मोबाइल सिम चलावत हो?
0: हम तो वोडाफोन ही चलाते हैं मैम, अपनी कंपनी का ही सिम।
1: रुपया के रिचार्ज कर, तू का कंपनी को छूट उठ दिया थी?
0: हम लोगों को कंपनी कोई छूट नहीं देती है, सबके लिए व्यवस्था एक जैसी है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। वोडाफोन में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी को मतलब पारदर्शिता कहते हैं कि सब कुछ क्लियर है, चाहे आप यहाँ पर वो कस्टमर केयर हो चाहे कस्टमर हो। और हम लोग कभी कस्टमर को कस्टमर की तरह डील नहीं करते।
1: अरे भैया हाँ बिल्कुल, कष्ट दे के बताओ कस्टमर, खाली कष्ट है नेट नहीं चलते, खाली कष्ट है कस्टमर नाम रख देनी कस्टमर। अरे कुछ और रख देते हो कस्टमर, नवम कष्ट है तो कस्टमर ही भाई।
0: कष्ट के बाद आप आगे देखिए दो अक्षर है मर, यानी जब
1: कष्ट से मर जाओ। हाँ तुम्हारे नाक फोन न लगे।
0: नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई कष्ट से न मरे, इसलिए यहीं पर बैठे हुए हैं।
1: अच्छा ये तो तहा शादी आदि भाई कहे कि तू वोडाफोन के बारे में ज्यादा जानकारी रखत ना हो तो नहीं, तो हम जानते
0: 249। अब आप देखिए जब
1: बताओ कहा शादी आदि भाई?
0: नहीं अभी तो नहीं मैडम।
1: अच्छा कौन मतलब कौन कास्ट है आप?
0: जी हम कास्ट में बहुत ऊंची कास्ट है।
1: अरे कौन सी कास्ट है, मतलब हिंदू है मुस्लिम है जैन है कहाँ है?
0: जी इंसान है, और सबसे बड़ी बात है सनातन
1: पंजाबी है।
0: हाँ जी कोई भी समझिए बस इंसान है।
1: अरे मैंने किसी भी कास्ट में शादी कर लेंगे?
0: हाँ हाँ किसी भी भाई, शादी लड़का लड़की की होती है कि कास्ट
1: है? कोनो दिक्कत नहीं है?
0: कोई दिक्कत नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: आप जैसा कहें और जहाँ हमको बुलाएंगी हम वहाँ चले आएंगे। शादी में
1: मतलब जी आप अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप अपनी शादी तय कराने के लिए परेशान हैं।
0: नहीं ये तो आपने पूछा है कि मतलब आपकी शादी हुई कि नहीं।
1: अरे हमने बस कास्ट पूछा, आप बता रहे हम शादी कर लेंगे।
0: नहीं आपने पूछा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि नहीं हुई है। अब इसके बाद आप कह रही है मतलब कास्ट, तुमने कहा कास्ट से कोई लेना देना है नहीं जहाँ।
1: अच्छा ये बताओ आगे कोनो कॉल आल करे थे कि नहीं के होगे?
0: नहीं बहुत कॉल करनी है आप।
1: अरे रुका रहो तनी बार होल्ड करो। हाँ? हम थोड़ा काम कर ली जैसे दिया बत्ती कर ली तो फिर फोन करी था।
0: नहीं आपने इतना ही फोन किया माता जी इसके लिए?
1: नहीं अभी हमारी बात संपूर्ण नहीं हुई है।
0: संपूर्ण नहीं हुई है तो घर में भागवत बिठा लिया उसको संपूर्ण।
1: अरे अंग्रेजी माँ कंप्लीट नहीं हुई है।
0: कंप्लीट नहीं हुई तो कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी कौन सी
1: हम बीए पास है, हमको अंग्रेजी आता है।
0: अच्छा आपको अंग्रेजी आता है, हमको लगा आपको अंग्रेजी आती है। अच्छा वहाँ अच्छा अंग्रेजी के बारे में
1: मात्रा छोटी ई भी है मात्रा बड़ी ई भी है। हाँ। हमका जो मन करेगा हम वो लगाएंगे।
0: हाँ ये तो बात सही है,
1: हमको जो सी मात्रा अच्छी लगेगी हम वह लगाएंगे।
0: चलिए तो अच्छा है कि आपको अंग्रेजी आती है। और अंग्रेजी पीने के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ मतलब अगर पीना हो तो पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
1: अंग्रेजी पीना हो?
0: हाँ पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
1: ड्रिंक।
0: अच्छा ड्रिंक कहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया अंग्रेजी, आप लगता है सीधे इंग्लैंड से आपने फोन किया है।
1: बिल्कुल
0: एकदम। और आप जल्दी वीजा बनवा करके इंडिया आइए।
1: नहीं बस यही झंझरी से फोन कर रहे हैं।
0: झंझरी ब्लॉक से?
1: जी जी।
0: अरे वाह झंझरी ब्लॉक, तो झंझरी ब्लॉक गोंडा में है।
1: दिया बत्ती करने टाइम दे रहे हैं आप और होल्ड रखा है?
0: जी जी बिल्कुल होल्ड रखते हैं। जी भाई तो ये जो है वो अभी हमारी कंपाउंडर साहब कह रही थी कि वो कस्टमर केयर वाले जो लड़के हैं वो बहुत कछुआते हैं। और देखिए ईश्वर ने सुन लिया और कस्टमर केयर वाली ने लड़की का फोन आ गया।
2: डॉक्टर लव, हम तो डर के मारे चुपचाप ही बैठे, हमके ऐसा ना हो कि चार बात मुझे भी मिल जाए। क्या धुलाई आपकी हो रही थी?
0: नहीं, धुलाई नहीं हो रही थी, वो माता जी समझ नहीं पाई।
2: अरे क्या समझ नहीं पाई, आपकी तो जो धुलाई हो गई। ओ माय गॉड, राम बचाए ऐसे कॉलर से।
0: हमने कहा कि भाई हमको लगा कि माता जी बोले, तुमने कहा भाई प्रणाम कर ले सर, मैडम वाला काहे रखा जाए।
2: तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसका कॉल आता है।
0: जी

0: जी हाँ भाई, और इसी बीच हमारे साथ कोई और श्रोता जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ।
1: हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार मैम,
1: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम। बिल्कुल, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त।
1: आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम है मैम पवन कुमार मिश्रा।
1: पवन जी, पहले तो स्वागत है आपका। ये बताइए डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहते हैं आप?
2: डॉक्टर साहब से क्या सवाल करेंगे मैम, अभी वही सुन रहे थे।
1: तो मतलब डॉक्टर लव क्या पता आपके भी दिल का इलाज कर सके। दिल का मतलब कि दिल में बैठे किसी अपने से अगर आपकी भी नोक झोंक हो जाती है तो उसका समाधान।
2: हेलो
0: जी।
2: जी मैम।
0: जी नमस्कार।
2: हेलो। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं?
0: जी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जी आप कैसे हैं?
2: बढ़िया बढ़िया सर।
0: आपको कोई दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका कुछ हो तो बताइए।
2: सर जी शिकायत नहीं है, गिला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिक्कतें हैं।
0: क्या, जैसे क्या दिक्कतें हैं बताइए?
2: बस वही सर, दिल की दिक्कतें चल रही हैं इस समय।
0: जैसे दिल में क्या हो?
2: मरीज इश्क वाला सर।
0: मरीज इश्क है आप?
2: जी जी जी।
0: अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं कि मतलब आप किसके इश्क में पागल है?
2: सर इश्क में तो दुनिया के पागल हैं हम।
0: अच्छा अच्छा, दुनिया के इश्क में नहीं, मतलब कि आपका इश्क किसी एक से चल रहा होगा?
2: नहीं सर, कोई इश्क तो हुआ ही नहीं आज तक, क्या बताएं।
0: अच्छा मतलब आप विवाहित?
2: गाना सुनना था सर जी, गाना सुनना था
0: जी। आप विवाहित है कि सुखी है?
2: नहीं जी विवाहित है हम।
0: अच्छा मतलब सुखी नहीं है?
2: नहीं नहीं सुखी तो नहीं है फिलहाल।
0: मतलब जनरली विवाहित लोग सुखी नहीं होते हैं।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर जी।
0: ये मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है।
2: जी जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिलहाल आपने बताया कि गाना सुनना चाहते हैं, आपसे पहली बार बात हो रही है, और बिल्कुल क्या सुनना चाहेंगे आप? 7:45 से फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है।
2: अरे सर जी अगर सुना सकते हैं तो सुना दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सुना देंगे, आप कहेंगे तो बिल्कुल सुनाएंगे। बताइए क्या सुना दें आपको?
2: बस सर गाना सुना दीजिए, मुझे 9 लाखा मंगा दे सैया दीवाने।
0: मुझे क्या शराबी फिल्म,
1: मतलब खुश करने की तैयारी में गाना ही सुनाया जा रहा है, क्या बात है क्या बात है।
0: मतलब आप क्या 9 लाखा खरीदने के मूड में है?
2: नहीं नहीं सर, अब उतना सर है ही नहीं, लेकिन अब कुल मिला के सुन तो सकते है ना।
0: आ,
2: सपने
0: मतलब,
2: देखने में कौन सा पैसे लगे।
1: अरे 9 लाखा पहनने की जरूरत ही क्या है, हैं? इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज है।
2: जी जी जी जी मैम, मैम हमारी फीलिंग को समझ गई हैं।
1: और ये बताइए 9 लखा पहन के किसी का दिल करे जा धड़कन साथ देगी? वो घर में
2: कुछ नहीं देगी मैम, कुछ नहीं।
1: तो चलिए आपके लिए हम सुनते हैं ये गाना, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
2: जी जी।
1: और ऐसे ही आपकी आवाज सुनने का मौका हम दोबारा देखेंगे। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू थैंक यू
0: जी।
1: तो चलिए हमारे श्रोता से बात हो गई और इनके लिए 9 लखा हार मंगवा देते हैं। लेकिन देखिए भाई, 9 लखा हार जिसके भी पास है भाई खुश होइए, लेकिन भाई दुनिया को दिखाने के चक्कर में जरा पोस्ट थोड़ा कम करिए। आए दिन मैंने देखा है कि लोग अपने ज्वेलरीज के वीडियोज बनाते थे और 2-3 बार चोरी हो गई, मतलब अपने आप, मतलब टू द पॉइंट। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से तो दूर ही हो गए होंगे। तो प्लीज़ मतलब दिखावे की दुनिया में आप जीने का जो एक ट्रेंड अपना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यार अपने घर की हर बात को हर तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट करना आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़रूरी टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश ये करिए कि आप चीज़ों को उतनी ही लोगों तक साझा करिए जो कि एक नॉर्मल फ्रेंड से आप कर सकते हैं, हर वो चीज ना साझा करें। क्यों डॉक्टर लव?
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब शो ऑफ होना ही नहीं चाहिए।
1: तो चलिए चलिए चलिए आगे बातें करेंगे और ऐसे ही एक दूसरे के साथ हम जुड़ते रहेंगे हर दिन, क्योंकि आपकी आरजे बीना लाइव होती है आपके वाले शो गोंडा मैसी मसाला में, और शनिवार को स्पेशल आपके साथ होते हैं आपके अपने डॉक्टर लव जो करते हैं आपके दिल का इलाज, वो भी अपने खास अंदाज से।
0: जी तो फिर घड़ी की सुइयां बता रही हैं कुछ।
1: हाँ हाँ, बस यही कह रही हैं कि अभी ना जाओ छोड़ कर, क्योंकि लिसनर्स अभी सुन रहे हैं। यस, तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करिए ये गाना नौलखा फॉर यू ऑल।
0: जी हाँ,
1: आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपनी पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 1039.6 FM पर, जो है गोंडा शहर की धड़कन।

शो फरमाइशी वीडियो आज सिंपल नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

बात करोगे? तुम हार कर अब खेल की शुरुआत करोगे, क्या बात करते हो अब क्या बात करोगे? तुम इन आंखों को देखकर ही थर्रा उठे, तुम इन आंखों को देखकर ही थर्रा उठे, अरे अब क्या सामने आकर मुलाकात करोगे? कैसे नादां हो जुगनुओं को साथ ले आए कैसे नादां हो जुगनुओं को साथ ले आए, अमा क्या इनसे रोशन अब ये रात करोगे? हमारे नाम से ही शहर में सन्नाटा है।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की कटरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। इस्तकबाल है आपका महेंद्र राजस्थान से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, और राजेश कुमार सिसवा गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, नरेश सीतापुर से, रौनक तिवारी गोंडा से, अंश कश्यप गोंडा से, नाजिया अंसारी गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, सुरेश कुमार जी चौक से, निबरजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, आप सभी का तहे वे दिल से स्वागत और इस्तकबाल है। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले किसी का कहना है, मीन्स हमारे एक लिसनर का कहना है कि लोग कहते हैं कि जमीन पर किसी को भगवान

गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टेडियम एवरीवन।

मिलेंगे हम, कितनी खूबसूरत बात है ना ये। और ऐसी बातें मुझे तो ऐसा लगता है खाली फिल्मों में और गानों में ऐसे अच्छे लगती है ना, रियलिटी में तो ऐसी बातें भाई राम राम शुभ शुभ बोलो तौबा तौबा यही कहने का मन होता है मेरा इन बातों पर। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है। तो फरमाइश थी बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश थी जुल्म के पुकार पिक्चर की हमारे महेंद्र की तरफ से जो कि है राजस्थान से। अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है बंजारन फिल्म का गाना मेरे दिल की गलियों में। से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुरीला सा नगमा अलका याग्निक और सुरेश जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मेरा एक सवाल था आप सभी से, अगर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना चाहें कहीं किसी और चीज में लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो हमें कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना।

गॉड, मतलब पक्का उंगलियों पे काउंट किया गया है कि हम 100 बार मिले और बिछड़े, मतलब सतत मिलने और बिछड़ने का भी हो गया दोस्तों। क्या कमाल की बात है, हमने एंजॉय किया अलका याग्निक और सुरेश जी की आवाज में बंजारन पिक्चर का ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारे बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे से जग्गू दादा की, जो की है MP से हमारे जुगल किशोर वर्मा की। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की, मालवे नगर गोंडा से। मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सो एंजॉय करते हैं दीवाना पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है मोहित की जो कि है मालवी नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो हरीश चंद्र सविता जी, आपका स्वागत है।

से प्यार करते हैं। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी मोहित की तरफ से, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से कुछ कहना चाहेगी। तो अर्ज किया है कि वो फिर से मेरी चौखट तक पैगाम लेकर आया, वो फिर से मेरी

के एक कतरा कहाँ जाता, उतरा जब गुरूर उसका तो वो तन्हा कहाँ जाता। मगर मेरे मिजाज सर्द का बस यही उसूल है, जो एक बार नजरों से गिरा वो अश्क महज एक धूल है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना मेरे महबूब मेरे सनम। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में ये वाला नगमा हमारी सोनिया तिवारी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। एडवोकेट सुनील मझारा आपका तहे वे दिल से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आपके फरमाइशी गीत का आपके आरजे सिंपल को है बेसब्री से इंतजार।

हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। लेकिन इस गाने में एक खासियत है, इसका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हमने एंजॉय किया ये गाना सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारे आज के अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना दिल दीवाना ढूंढ रहा है मेरे रूठे यार को। अच्छा जी, जो यार रूठ जाए ना उसको अपने आप से वापस आने देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो डोरी टूट जाए अगर उसको जोड़ो, चाहे कितने भी कायदे से जोड़ो, उसमें गांठ पड़ ही जाती है। चाहे बहुत ही छोटी सी दिखाई ना देने वाली गांठ हो, लेकिन गांठ तो गांठ होती है। सो एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। कितना ज्ञान देती हूँ ना, जितना ज्ञान मैं देती हूँ, अगर इतना ज्ञान का अमल मैं अपनी जिंदगी में कर लेती ना दोस्तों, तो बाय गॉड क्या जिंदगी होती आज मेरी, है ना। फिलहाल आज भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप लोग का साथ मिला, मतलब सब कुछ बढ़िया है। थैंक्स टू यू गाइस, थैंक्स।

दोस्तों हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजू की फरमाइश पर जो कि है सीतापुर से, और ये गाना था सलमान खान और श्रीदेवी का चांद का टुकड़ा पिक्चर का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे ढेर सारे लिसनर्स का, मींस आशा मिश्रा जी का लखनऊ से स्वागत है, महेश रस्तोगी आपका भी स्वागत है, और शिवाजी यादव बजाज मिल गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और आप सभी के फरमाइशी गीत को जरूर प्ले किया जाएगा। एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार की सिसवा गोंडा से, और सिसवा गोंडा से राजेश कुमार को सुनना है गाना दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। और वैसे प्यार एक ऐसा शादी का लड्डू होता है, मीना आगरा का पेठा होता है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो तो ऑब्वियसली पछताता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का लड्डू, आगरा का पेठा, शादी का लड्डू, जो भी इसको कहते हों, खा लेना चाहिए एक बार यार, तभी तो मजा आता है। स्टे ट्यून्ड, फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा।

तो ये फरमाइश थी सिसवा गोंडा से राजेश कुमार की। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपका तहे हुए दिल से स्वागत है। इसी के साथ में आशु मिश्रा जी का लखनऊ से कहना है कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। वाओ कितनी खूबसूरत बात कही है आपने, सच में मैं मानती हूँ ये सारी चीजें। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लव यू सो मच आशु जी। एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती, एक सच ये भी है कि जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। अरे आशु जी, अगर इस टाइम आप मेरे पास होती ना तो सच में मैं आपको गले लगा के लव यू सो मच बोलती। थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अलॉट। अगर दुनिया इतना सब कुछ जान जाए ना तो कभी कोई किसी के सामने रोए ना, और रोना भी नहीं चाहिए दोस्तों। मतलब रोना चाहिए अच्छी बात होती है, आंखों का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। क्यों सही कहा ना मैंने आशु जी। तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से। उनको सुनना है गाना ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा श्यामा का सिर्फ और सिर्फ, आर पार पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ, उषा कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: ये लो मैं हारी पिया, हमने एंजॉय किया है आर पार पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सनम। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। एंड दोस्तों आपको क्या पता है कि हमारे पास में फरमाइशें इतनी ढेर सारी आ चुकी हैं, आज इतनी ढेर सारी फरमाइशें हैं और वक्त अभी भी बहुत कम है उन फरमाइशों को प्ले करने के लिए। इसी के साथ में शिवाजी यादव का बजाज मिल से आया है एक फरमाइशी गीत। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आपने थोड़ी सी देरी कर दी है, इसलिए थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा। जुबिन नौटियाल की आवाज में आपको गाना जरूर सुनने को मिलेगा। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में नरेश की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना जिस पथ पे चला। सो एंजॉय करते हैं यादगार पिक्चर का ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नरेश की फरमाइश पे जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड। I love this song. I really love this song. आए कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
1: ओहो। मुझे साथ

साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। ओह माय गॉड, जब ये लाइन बजती है, जितनी बार ये बजती है लाइन, उतनी बार मेरा कलेजा, मेरा दिल दहल जाता है। दोस्तों, लता जी की आवाज और ये शब्द, ये गाना, ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी नरेश की, एंड थैंक यू सो मच। ये गाना सुने मैं हर दूसरे तीसरे दिन, शायद ये गाना सुनी लेती हूँ, और मैं अभी तक इस गाने से बोर नहीं हुई हूँ। सो थैंक यू सो मच, ये गाना सच में बहुत अच्छा है। और बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश है रौनक तिवारी की और उत्कर्ष कश्यप की, इन दोनों को सुनना है गाना पार्वती। सो इंजॉय करते हैं हनुमान अंश का ये ट्रेंडिंग सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ रौनक और उत्कर्ष की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनूप मिश्रा जी नमस्ते एंड स्वागत है आपका आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल, एकदम चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त है। हर हर महादेव।

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण,
1: हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

राधे, सब कहते हैं भोलेनाथ भोलेनाथ। हमने एंजॉय किया पार्वती, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। एंजॉय करते हैं जोड़ी नंबर वन का ये गाना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। स्वदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। जिन मेरे मित्रों ने दोस्तों ने अभी तक पेट पूजा नहीं किए, फटाफट से जाके पेट पूजा कर लेना, सीधे 9 बजे मिलते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है पेट भरा रहता है तो दिल अपने आप खुश रहता है। एंजॉय करते हैं अजय मिश्रा की फरमाइश, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document...
3: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खुद से अब बताओ। मैं कई रोज से खफा हूँ खुद से अब बताओ, तुम इस सर फिरे का क्या इलाज करोगे। मैं चंद टुकड़ों के लिए किसी का गुलाम तो नहीं, मैं चंद टुकड़ों के लिए किसी का गुलाम तो नहीं, मेरी पहचान के लिए मुझे मोहताज क्या करोगे। कैसा लगा आप सबको जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, उनको सुनना है गाना देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। सो एंजॉय करते हैं क्लासिक रेट्रो सॉन्ग, लेकिन एआई वर्जन वाला, सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। हमने एंजॉय किया है ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारे आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है भोलेनाथ मिश्रा जी की। उनको सुनना है गाना तेरी उंगली पकड़ के चला ममता की आंचल में बंधा। सो एंजॉय करते हैं लाडला पिक्चर का ये गाना उदित नारायण की आवाज में हम सब की मम्मा के लिए पंडित भोलेनाथ मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: लाडला। पंडित भोलेनाथ मिश्रा की फरमाइश पर लाडला पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है हम सबकी मामा के लिए। बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश है हरीश चंद्र सविता जी की, उनको सुनना है गाना रूठे रब को मनाना। एंजॉय करते हैं रोमांटिक गाना वो भी 70s का, सिर्फ और सिर्फ हरीश चंद्र सविता की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो डीके मौर्य, आपका स्वागत है। स्टे
1: ट्यून्ड। सच कहता था कि रूठे रब को मना।

मनाना मुश्किल है। हमने एंजॉय किया है ये गाना हरीश चंद्र सविता की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों एडवोकेट सुनील मझारा की, और एडवोकेट सुनील मझारा को सुनना है गाना चोरी चोरी। सो इतिहास पिक्चर का ये गाना एंजॉय करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: प्यार किया जाता है। हमने एंजॉय किया है इतिहास पिक्चर का ये गाना अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। हमारे एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवाजी यादव की बजाज मिलगोंडा से, और बजाज मिलगोंडा से शिवाजी यादव को सुनना है गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। सो एंजॉय करते हैं ये गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में शिवाजी यादव की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम मुझसे शादी करेगी?
2: हाँ।
1: प्रॉमिस?
2: प्रॉमिस।
1: तो फिर मैं अभी आया।
2: उफ़ो, ये फिर कहाँ चला गया?
1: तो फिर साइन कर इस पे।

एंजॉय किया जुबिन नौटियाल की आवाज में। शिवाजी यादव की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जो की है बजाज मिलगोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है महेश रस्तोगी की। उनको सुनना है गाना आजकल याद कुछ और रहता नहीं। मोहम्मद अजीज की आवाज में एंजॉय करते हैं ये नगमा। इसी के साथ लेना चाहेगी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि मतलब बहुत सवाल बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं कल नहीं मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं मंडे को, बाय बाय। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल मींस मंडे को, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल, आप सभी को आदाब, आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणस्लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज तो भाई शनिवार है, शनिवार की प्यारी सी शाम है और कार्यक्रम है गजलें हमारी, गीत आपके। तो भाई चलिए हम आज इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, गीत आपके और गजलें हमारी, क्योंकि हमारे पास फोन आ चुका है और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो एक मिनट रुकिएगा, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
1: हाँ नमस्कार
0: भैया। अरे नमस्कार।
1: हाँ
0: मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
1: हाँ पहुंच रही है। हाँ
0: जी जी जी। और बताइए आप कैसे हैं, आप क्या बात है भाई?
1: हाँ ठीक है।
0: आज की बहुनी आपने की है, मतलब हमारे साथ दर्द कुमार जी है, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे हैं आप?
0: जी जी आपका आशीर्वाद। और आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: हाँ ठीक है, सही है।
0: क्या बात है। तो आज आपने शुरुआत मतलब बहुनी आज आपकी से होनी है हमारी।
1: आवाज जा रही है हमारी ना?
0: अरे आवाज एकदम पूरे वादियों में गूंज रही है, आप बता रहे हैं जा रही है, आवाज गूंज रही है। तो आज
1: तो शुरू कर रहे हैं। हेलो
0: जी, जी जी बिल्कुल।
1: मोहब्बत के सोने दिन जवानी की हसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन जवानी की हसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन ये तन्हाई नहीं थी इस जगह की, प्यार की महफिल ये तन्हाई नहीं थी इस जगह की, प्यार की महफिल तेरे गम से कहीं मिलकर यही अब रो रहा है दिल, यही हंस हंस के होती थी कभी अपनी मुलाकातें, मोहब्बत के सुहाने।

0: तेरे गम की कहानी है मेरे मासूम तो पर, तेरे गम की कहानी है, कहानी ये नहीं तेरी, ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आए मोहब्बत की है सौगातें, मोहब्बत के सुहाने दी जवानी की हसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या दर्द है, क्या मतलब क्या नज्म है आपके पास और क्या गीतों का कलेक्शन होता है। बहुत ही शानदार ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं और गीत भी बहुत चुन कर लाते हैं।
0: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, इस दर्द ने दर्द को ढूंढ ही लिया।
0: बहुत
1: जी
0: इजाजत तो एक तो और सुना दे, तो किसी और को मौका दे।
1: नहीं तो सुना दीजिए, और हम चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो जब याद की बदली छाती है तो हो जाए, या आगे जाओ जो आपकी इच्छा करे।
0: चलो कुछ जो उनको सुना दे तो बाद में सुना देंगे अभी।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: चले तो मौका मिले तो फिर।
1: जी आप जो
0: मेरा मौका,
1: जी आप जो सुनना चाहे वो सुनाए।
0: ठीक
1: सुनाइए, हम सुन रहे हैं।
0: अच्छा कौन सी, वही मतलब जो
1: जो आप चाहे, जो आपकी इच्छा।
0: अच्छा, हाय रे इंसान की मजबूरियां, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रह कर फिर भी कितनी दूरियां, हाय रे इंसान की।

0: खबर खत्म होगी या जलेगी रात भर, समके अंजाम को किसकी खबर। खत्म होगी या जलेगी रात भर, जाने सोला ये बनेगी या धुआं, जाने सोला ये बनेगी या धुआं। इंसान की मजबूरियां, पास रह कर फिर भी कितनी दूरियां। हाय रे इंसान की मजबूरियां, कुछ अंधेरे में नजर आता नहीं, कोई तारा राह दिखलाता नहीं, कुछ अंधेरे में नजर आता नहीं, कोई तारा राह दिखलाता नहीं। जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ। आए रे इंसान की मजबूरियां, पास रह कर फिर भी कितनी दूरियां। हाय रे इंसान की मजबूरियां। थैंक यू सर।
1: क्या भाई क्या गीत चुना आपने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि हाय रे इंसान की मजबूरियां। और वास्तव में इंसान की मजबूरियां दिखाई भी पड़ती है कहीं ना कहीं, और आपने उसको एकदम दर्द में ढाल दिया।
0: थैंक यू मेरे भाई, निकल गया दर्द तो।
1: अरे बहुत,
0: अब हम निभा नहीं पाए, लेकिन
1: अरे आपने निभाया, आपने मतलब क्या मतलब, हम तो दूसरी ही दुनिया में चले गए थे कि वाह इसे बोलते हैं आवाज, इसे बोलते हैं गीत, शायद इसी को बोलते हैं दर्द, और जो हमारे दर्द कुमार जी के पास है।
0: थैंक यू मेरे भाई,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। चरण
0: नमस्कार
1: जी। जी हाँ, तो भाई अब गजलें हो चुकी हैं और हमारे साथ श्री तेज नारायण शुक्ल जी हैं। शुभ संध्या मनु जी, बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको। और बुधवार को हमने आपसे मतलब प्रार्थना की थी कि कुछ सुना जाए आपसे, और अब तो हरितालिका तीज भी है, हिंदी दिवस भी है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप चूँकि एक वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं, तो हमारे कॉलेज में आज हिंदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि हरितालिका तीज के कारण यहाँ पर स्थानीय अवकाश रहता है। और आज सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली ने मतलब दिखाया कि क्यों वो बच्चियों की सबसे पहली पसंद का कॉलेज है। तो बहुत कुछ हिंदी के बारे में सीखा गया, सुना गया, और बहुत अच्छा लोगों ने बोला। और आप चूँकि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो और जब बुधवार आएगा तब तक ये हिंदी दिवस जा चुका होगा और उस दिन कालीन नहीं रहेगी, तो अगर आप हम तक हमारी आवाज़ जा रही है तो ज़रूर हम आपसे कुछ स्वरचित आज सुनना ही चाहेंगे। और गीत हो चुके हैं, एक गज़ल सुन लेते हैं, और गज़ल के बाद हम उम्मीद करेंगे कि श्री तेज नारायण शुक्ल जी की आवाज़ हमारे कानों में अवश्य पड़े, सुनते रहिए। और रेडियो 89.6 FM, ये अब गोंडा की ही नहीं, हम सभी के दिलों की है धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

0: हाँ जी, अगर देख लेते जो सूरज को ढलते। और फिलहाल भाई गजल हुई, और गजल के बाद देखिए हमारे पास कोई श्रोता जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: शुभ संध्या मनु जी।
0: जी शुभ संध्या। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज श्री तेज नारायण जी की है।
1: जी जी जी, मैं तेज नारायण शुक्ला ही बोल रहा हूँ
0: जी। चरण स्पर्श, और बहुत दिन से आपको सुनने की इच्छा थी
1: जी। बहुत सारा आशीर्वाद, और जितने भी श्रोता हैं, जितने भी नए मतलब जुड़े हुए लोग हैं ज्ञानी अक्षरी से, सबको मतलब शुभ संध्या और हार्दिक शुभकामना। तो ऐसा है कि अभी शिक्षक दिवस बीता है और आज हिंदी दिवस है। तो शिक्षक दिवस के दिन आपने कहा था, तो थोड़ा मैंने उस दिन कोशिश की थी, और वो मैं चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि हिंदी भी शिक्षा से ही जुड़ी हुई है
0: जी, जी।
1: और शिक्षा का स्रोत अध्यापक है, टीचर है, गुरु है
0: जी।
1: तो मैं पहले मतलब ये डेडिकेट करता हूँ आपको या जितने गुरु लोग हैं जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। तो पहले कुछ थोड़ा पहले उन्हीं को समर्पित करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी देखी जाएगी
0: जी।
1: तो शुरू करता हूँ मनोज
0: जी। जी निसंदेह।
1: बेजा पत्थर तराश कर एक बुद्ध की शक्ल देता है।
0: बेजा
1: जी जी जी धन्यवाद जी। बेजा पत्थर को तराश कर एक बुद्ध की शक्ल देता है, जिससे भी आगे वो ठोकरों से संभलने की अकल देता है।
0: क्या बात है।
1: जी जी, इससे भी आगे शुक्रिया। वो ठोकरों से संभलने की अकल देता है, सरमाया है वो हमारी तहजीब का, सरमाया है वो हमारी तहजीब का, एक इमारत बना देता है।
0: क्या क्या क्या बात है।
1: सरमाया है वो हमारी तहजीब का, एक इमारत बना देता है। यहाँ सर झुका के चलो, यहाँ सर झुका के चलो, ये मंदिर है, ये इबारत बना देता है।
0: क्या क्या बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात है।
1: धन्यवाद धन्यवाद। पुष्ट दर पुष्ट वो पौधे को एक बाग बना देता है, पुष्ट दर पुष्ट वो पौधे को एक बाग बना देता है। इल्म से अपने कुछ कर गुजरने की आग लगा देता है, इल्म से अपने कुछ कर गुजरने की आग लगा देता है। इससे कुछ ले लो इसके साए में रहने वाले, इससे कुछ ले लो इसके साए में रहने वालों, थाम लेगा तुम्हें बन के चप्पू है मजधार में बहने वालों।
0: क्या क्या क्या उपमा दी है, क्या उपमा दी है
1: जी। शुक्रिया शुक्रिया। खाली पन्ने हो तुम, खाली पन्ने हो तुम, ये किताब बना देगा, खाली पन्ने हो तुम, ये किताब बना देगा। रहो इसकी सरपरस्ती में, रहो इसकी सरपरस्ती में, चमका देगा महका देगा, ये तुम्हें महताब बना देगा।
0: क्या बात, मतलब हिंदी के साथ साथ आपकी उर्दू के शब्दों का संग्रह भी बहुत शानदार।
1: अरे क्या बात, धन्यवाद। थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, कर लेता हूँ। तो जी मतलब लिखा तो इसके बाद भी लास्ट इसका अंतरा वो नहीं मिल रहा है, तो इसको यहीं पे मैं विराम देता हूँ। और वास्तव में अध्यापक जो भी हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, ये उन्हीं को डेडिकेटेड था। और वो एक रीढ़ है समाज की, हमारे दिशा देते हैं। और आगे की लाइन भी बड़ी अच्छी थी, मतलब क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है शिक्षा का आयाम, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, यहाँ तक कि पूरे जो देश का स्ट्रक्चर है इसी पे अध्यापक ही मतलब गुरु ही शिक्षित करता है जी।
0: नहीं बिल्कुल सही।
1: और एक बस एक छोटा सा और
0: जी,
1: और इसके बाद अगर आप कहिएगा तो दो चार लाइन कुछ आज गाने की भी कोशिश करूंगा।
0: अरे वो तो वही तो हम सुनना भी चाहते हैं जी।
1: जी जी जी जी जी
0: नहीं, और कौटिल्य ने भी कहा था कि सृजन और विनाश ये दोनों अध्यापक की गोद में पलते हैं।
1: जी जी जी जी जी जी,
0: वो बात आपकी बात से वो बात मुझको याद आ गई।
1: अब देखिए, जब गुरु की बात है तो एक नाम आता है हमारे यहाँ कौटिल्य का, चाणक्य का,
0: जी,
1: जिसने एक मतलब पूरा समाज ही बदल दिया, दिशा ही बदल दी। हाँ। एक मतलब हमने तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं, मेरा मेन हॉबी अभिनय का रहा है, तो मैं एक्टर भी हूँ
0: जी,
1: और बहुत बढ़िया मतलब इसीलिए गुरु से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, समझ लीजिए,
0: इसीलिए आप सीख पाए, इसीलिए ये हो पाया।
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: कही जाती है कि खुद बखुद नहीं चल के तर्जे सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। तो आपके शब्द बता रहे हैं कि आपने गुरु सेवा की है।
1: अब थोड़ा सा बस ये भी छोटा ही है, क्योंकि प्रोग्राम है गाने का और बहुत सारे लोग अच्छा गाते हैं, और फिर मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत हाइट पे चला जाता है, और इसीलिए मैं श्रोता बन के सुनने में भी बहुत आनंद आता है। तो जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करके उसके बाद फिर मैं वो करता हूँ। तो थोड़ा सा बस अर्थ के ऊपर आधारित है ये
0: जी।
1: अर्थ के दो मायने हैं, एक तो अर्थ मतलब मुद्रा से होता है, दूसरा अर्थ तो अर्थ ही है। तो बस उसी से आधारित है, मैं शुरू करता हूँ कि जीवन में यदि अर्थ नहीं, जीवन में यदि अर्थ नहीं तो जीवन का भी अर्थ नहीं
0: है। क्या क्या बात है, क्या
1: जी
0: बात?
1: जीवन में जी, धन्यवाद धन्यवाद। जीवन में यदि अर्थ नहीं तो जीवन का भी अर्थ नहीं है। संघर्षों की इस बेला में, संघर्षों की इस बेला में टिके हुए सब इस धुरी पर, अर्थ समाहित संबंधों में यह भी कहना व्यर्थ नहीं है, यह भी कहना व्यर्थ नहीं है। धन्यवाद। रिश्ते भी वस्त्र विहीन हुए, रिश्ते भी वस्त्र विहीन हुए, संबंधों की भाषा बदली, रिश्ते भी वस्त्र विहीन हुए, संबंधों की भाषा बदली, सब कुछ पहले जैसा ही है, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस थोड़ी सी आशा बदली। जी धन्यवाद। क्या कहना है जी, क्या कहना है, क्या सुनना है, सब कुछ पहले से तय था। क्या कहना है, क्या सुनना है, यह सब पहले से तय था। पौधे तो सूख चुके पहले, पौधे तो सूख चुके पहले, बस सच्चाई खुलने का भय था। अक्सर होता है, मोह भंग होता है
0: जी, जी
1: जी। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, वैसे भी कुछ गया नहीं है। सब सहयात्री हैं, जीवन के गंतव्यों पर उतरेंगे, ऐसे पड़ाव कई हैं, बाकी जीवन क्रम में गुजरेंगे। संबंधों के इस पतझड़ में हरियाली की उम्मीद व्यर्थ है, जीवन में यदि अर्थ नहीं तो जीवन का भी अर्थ नहीं।
0: ये समाज का कड़वा सच आपने इतने बारीकी से बयां किया, जीवन में यदि अर्थ नहीं है तो जीवन का भी अर्थ नहीं है।
1: मतलब कहा जाता है कि हमने महसूस किया कि मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो वैसे मतलब समझ लीजिए अर्थ यानी मुद्रा यानी पैसा, अगर सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो है ही इस भौतिक जगत में, आजकल की जगत में। तो
0: नहीं, लोग तो कहते भी हैं कि मैंने पढ़ा था कि जवानी में जो है बचपने में खिलौना, जवानी में जोश और बुढ़ापे में धन इंसान का सच्चा साथी होता है। इसीलिए पहले शायद जो पेंशन की व्यवस्था थी कि घर के जो बूढ़े रहेंगे वो अगर जॉब में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, तो 60 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनको एक अमाउंट मिलेगा, जिसकी वजह से शायद उनके घर वाले उनकी देख रेख अच्छी तरीके से।
1: जी जी जी जी जी,
0: मतलब
1: जी,
0: ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि मतलब
1: वही बात है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि अगर शहद हो गया तभी तो मक्खियाँ छत्ता लगाएंगी
0: जी।
1: बहुत कड़वा सच है, तो शहद होना चाहिए, अब चाहे जिस रूप में हो।
0: हाँ, चाहिए।
1: थोड़ा सा मनु जी, मतलब वैसे गाने की कोई वैसे तैयारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरूर आज मैं सोच रहा हूँ
0: जी,
1: और अब जब भी मेरा फोन लगेगा तो मतलब कोशिश इसलिए करूँगा कि लगातार सुनता रहता हूँ, तो मेरे मन के अंदर भी
0: भाव
1: ये मेरा नाम जोकर का है मुकेश की आवाज में।
0: हाँ अरे क्या बात है, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है
1: जी। बस कोशिश है, मैं आप जानते ही हैं कि गाता नहीं हूँ।
0: अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं मुझे पता है
1: जी। जाने कहाँ

हम आएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम आएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने मुझको।

साथ था, साया भी अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम जाएंगे, चाहे कहीं

0: न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। धन्यवाद मनोज जी।
1: अरे वाह, एकदम आज आपने हमको श्रीमती सविता शास्त्री जी की याद दिला दी। मतलब वो भी ऐसे ही ठहराव के साथ बहुत प्यारा गाती हैं, और आपने इस गीत को गाया नहीं है, इस गीत को निभा दिया है। मतलब उसी एहसास को लेकर के मुझे लगता है कि हमको लगता है एहसास बहुत बड़ी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं।
0: जी जी, एहसास तो है। असल में मनोज जी ऐसा है कि आपके प्रोग्राम में मैं थोड़ा अब स्पष्ट बताऊं तो रिक्रिएशन करने के ही लिए जुड़ता हूं। तो देखिए, ये मेरी बात थोड़ी सी अन्यथा हो जाएगी। मैं अब चूंकि दर्द तो जीवन में रहता ही है
1: जी।
0: और हमेशा आदमी तो थोड़ा यहाँ पर बस थोड़ा इसलिए कि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए, ताजा हो जाए, इस वजह से। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि और इसीलिए मेरा जो है मेरे फेवरेट गायक किशोर कुमार हैं, और मैं थोड़ा सा दर्द जीवन में है तो कम से कम हम जहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ हम रिक्रिएशन करते हैं, वहाँ कम से कम कुछ आनंद हो जीवन में।
1: जी।
0: थोड़ा सा व्यवधान है तो मैं अब आपसे इजाजत लेता हूँ मनोज जी। शुभरात्रि। आशीर्वाद
1: जी। हाँ, तो भाई ये श्री तेज नारायण शुक्ला जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति। और आइए भाई, अब गीत हो चुकी है, फिर आपको सुना चुके हैं बहुत ही प्यारी सी नज्म, बहुत ही प्यारा सा गीत। अब फिर चलते हैं एक प्यारी सी गज़ल की ओर, और फिर लौटेंगे अगर आप जुड़ेंगे हमसे तो इस गज़ल के बाद। फिर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करेंगे। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आपके लिए, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: हाँ, जब दीप जले आना, क्या बात है, बहुत ही शानदार सी गजल, जब सांझ ढले आना। और इसके साथ ही साथ कोई आ चुका है भाई, देखते हैं कौन हमारे साथ। दीप जल चुका है, सांझ ढल चुकी है, और देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार भैया।
0: अरे क्या बात है दर्द कुमार जी, काम कैसे
1: हैं भैया? और कैसे हम?
0: जी जी, आशीर्वाद आपका।
1: तो एक महेंद्र कपूर की आवाज में आवाज तो आपको सुनाई दे रहा हूँ।
0: हाँ, जो मैंने आपसे प्रार्थना की थी तो आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
1: चलो ठीक है
0: जी,
1: तो शुरू कर रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है, जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। मुझे सुनाने की खातिर रात भी थक थक जाती है, मुझे सुनाने की खातिर रात भी थक थक

तेरे दर तक जाती है जब याद बदली छाती है तब आँखुरी भर आती है ओ, ओ, तू क्या तेरा वादा क्या हर बात तेरी शर्माती है तू क्या तेरा वादा क्या हर बात तेरी शर्माती है मर जाएंगे मर जाएंगे प्यार में तेरे दिल की जलन बताती है जब याद बदले छाती है तब आँखों में भर आती है चार दीवारी मंदिर की याद तेरी दोहराती है चार दीवारी मंदिर की याद तेरी

0: खाली मंदिर में पूजा की तो मन की थकन बढ़ाती है, जब याद की बदल छाती है, जब आँखों मेरी भर आती है।
1: क्या बात है भाई। ओ श्री अनूप जी लिखते हैं कि वाह, याद में डूबे हुए सुरेश जी का बहुत प्यारा गीत। तो वो करें कि आप कहीं याद में डूबे हुए हैं, अब ये कहाँ तक सही है तो आप जानेंगे या वो जानेंगे। एक फिलहाल गीत बड़ा शानदार रहा, महेंद्र कपूर की आवाज में प्यारा सा गीत, जब याद की बदली आती है।
2: पेंटर बाबू
1: बहुत
2: अनु मिश्रा को मेरा नमस्कार। नमस्कार,
1: बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। और सुरेश जी, इसके बाद हम आपको जो नगमा सुनाने जा रहे हैं वो बहुत पसंद आने वाला है, तो सुनिए।
2: अरे वाह, क्या बात है।
1: मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पसंद अच्छी लगेगी।
2: ठीक
1: ठीक, अच्छा, प्रणाम।
2: ठीक, प्रणाम।
1: जी हाँ भाई, तो ये जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है, बहुत ही पैसा गीत ये हमने सुना। और अब चलिए भाई, चलते चलते आपको क्यों ना कुछ तोहफा दे दिया जाए। बहुत सारे तोहफे हैं और जिंदगी हमको बहुत सारे तोहफों से नवाजती है, लेकिन एक तोहफा ऐसा है मुझे लगता है दोस्ती का, जो शायद जब कोई नहीं होता तो शायद हमारे दोस्त हमारे पास होते हैं। तो आइए अपने दोस्तों के नाम एक प्यारा सा तोहफा रेडियो गणेशलीट 9.6 FM के माध्यम से मैं आप सभी को दे रहा हूँ। उम्मीद है ये तोहफा आपको पसंद आएगा। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां भी बता रही हैं कि अब आपसे इस नगमे के बाद अनुमति लेने का वक्त भी आएगा। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार है, ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में, आपका FM है। अगर आप हमको सुन रहे हैं और आपके पास कल संडे को वक्त है तो बेहतर होगा कि 12:30 बजे आप स्टूडियो में आए, हम और आप एक दूसरे के रूबरू हो करके एक दूसरे को देखें, सुनें और समझें। जी हाँ, तो प्रतीक्षा भी रहेगी श्रोताओं, अगर आप आ सकते हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे आपसे मुलाकात होगी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की नहीं बल्कि अब तो बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, रात का ये समय हमेशा कुछ अलग होता है। दिन का शोर थम चुका होता है, लेकिन यादों की आवाजें जाग जाती हैं। कई लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं और कुछ लोग अपनी अधूरी बातों के साथ जाग रहे होते हैं। मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसमें ना कोई खूनी हवेली है, ना कोई चीखती हुई आत्मा, लेकिन यकीन मानिए, कहानी समाप्त होने के बाद आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं, सिर्फ अपना वादा निभाने लौटती हैं। आज की कहानी का नाम है आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे हरि प्रसाद। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर सादगी और आंखों में बरसों की ईमानदारी। पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने डाकिया बनकर लोगों के घर घर खत पहुंचाए। किसी के बेटे की नौकरी का पत्र, किसी की बेटी की शादी का निमंत्रण, किसी माँ के नाम विदेश से आया संदेश, हर खुशी और हर दुख उनकी इस पुरानी चपड़े की थैली से होकर गुजरता था। रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी एक आदत आज भी नहीं बदली थी। हर शाम वो अपनी पुरानी डाक थैली साफ करते, उसे बड़े प्यार से कपड़े से पोछते और मुस्कुरा के कहते, जब तक ये थैला मेरे पास है, मुझे लगता है मैं अभी भी लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूँ। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डाक बाबू कहते थे। उस दिन भी शाम से बारिश हो रही थी। हरि प्रसाद आराम से बैठ गए, अपनी थैली की फटी हुई सिलाई ठीक करने लगे। फिर अचानक उनके मन में आया, क्यों ना अंदर भी टटोल के देख लें। और फिर अचानक उंगलियां भीतर किसी कागज से टकराई। उन्होंने हैरानी से अंदर हाथ डाला, धीरे धीरे एक पुराना पीला लिफाफा बाहर निकला। धूल जमी हुई थी, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पे लिखा नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था। श्री अर्जुन मिश्र, भेजने वाली मीरा, तारीख 16 जुलाई 1994। हरि प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान, ये खत मेरी थैली में आज तक कैसे रह गया? उनके हाथ कांपने लगे। 40 साल की नौकरी में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं हुई थी। उन्होंने लिफाफा मेज पे रखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा घिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद उन्हें बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रही हो। हरि प्रसाद ने टॉर्च जलाई। कमरा एकदम खाली था। उन्होंने खिड़की की ओर रोशनी डाली। बारिश की बूंदे कांच पे फिसल रही थी। कोई नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद पड़ोस में से कोई आवाज आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेज पे गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेज खाली थी। वो पुराना लिफाफा मेज से उड़के उनकी गोद पे आ गया था। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कभी उठाया भी था। उन्होंने धीरे से हाथ में लिया। लिफाफा बिल्कुल सूखा था, जबकि खिड़की खुली हुई थी और बारिश की फुहारें कमरे में आ रही थी। उसी समय हवा के साथ चमेली की भीनी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हरि प्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, कौन है? कोई है क्या इस कमरे में? कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस रात हरि प्रसाद ने
चाहकर भी वो खत नहीं खोला। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह चाहे हमें जहां भी जाना पड़े, ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक खत नहीं, बल्कि 32 वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी थी, जो अब खुद अपना अंत लिखने के लिए बेताब थी। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हरिप्रसाद को खत की मंजिल तक ले जाना चाहती थी, या ये सब एक बूढ़े डाकिये का भ्रम था? इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुबह हो गई, बाहर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। हरिप्रसाद की आंख में तो नींद थी ही नहीं, बार बार उनकी नजर उसी पुराने लिफाफे पर चली जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खत उन्हें बुला रहा हो। सुबह की पहली चाय पीकर उन्होंने अपना पुराना झूला उठाया, लिफाफा उसके अंदर रखा और निकल पड़े उस पते की तलाश में जहां उन्हें 35 साल पहले पहुंचना था। सड़कें अभी भी कच्ची पक्की थी, लोग आ जा रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी और बूंदाबांदी वो तो हो ही रही थी, मगर किसी ने भी हरिप्रसाद को रोका नहीं। वो अपनी साइकिल पे चलते गए। गांव बहुत बदल चुका था, जहाँ कभी मट्टी के घर थे अब वहाँ पक्की दीवारें थी। पुराने बरगद की जगह एक छोटा सा बाजार बन चुका था। हरिप्रसाद कई लोगों से पूछ रहे थे, बेटा अर्जुन मिश्र का घर किधर है? हर कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा, नाम तो कभी सुना ही नहीं। किसी ने कहा, शायद ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, यहाँ तो कोई इस नाम का रहता ही नहीं। आखिरकार गांव के चौराहे पर एक बूढ़े चाय वाले ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अरे आप तो डाक बाबू है ना? हरिप्रसाद मुस्कुराए, बोले, हाँ भाई, पहचाना तुमने? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी पहली नौकरी का खत भी तो आप ही लाए थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ये चाय की दुकान पे बैठता हूँ। दोनों कुछ पल मुस्कुराए, पुरानी पुरानी बातें अपने मन में याद किया। फिर हरिप्रसाद ने धीरे से पूछा, अर्जुन मिश्र कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही चाय वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, आपको इतने साल बाद उनका नाम किसने याद दिलाया? एक खत, हरिप्रसाद ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। क्या ये वो मीरा का खत है? हरिप्रसाद चौंक पड़े, तुम मीरा को भी जानते थे? चाय वाले ने गहरी सांस ली, पूरा गांव जानता था उनको। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दो दिन पहले मीरा अचानक गायब हो गई। डाकिया बाबू ने पूछा, गायब हो गई? हाँ, 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली, लेकिन मीरा वो तो कभी मिली ही नहीं, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना। हरिप्रसाद ध्यान से सुनते रहे। चाय वाले ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं उसने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं वो नाव में बैठ करके कहीं दूर चली गई और अर्जुन मिश्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। हरिप्रसाद ने अपने झोले को कस कर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो भीतर रखा लिफाफा हल्का सा गर्म हो गया है। उन्होंने झट से झोला खोला, लिफाफा वही था, लेकिन उसमें चमेली की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी जो पिछले रात उनके कमरे में फैली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने रास्ता बताया। गांव के आखिरी छोर पे एक पुराना मकान है, वहीं रहते हैं अर्जुन बाबू अकेले, बिल्कुल अकेले। धीरे धीरे हरिप्रसाद उस मकान के सामने पहुंचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर समय की धूल जमी थी, उन्होंने धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला, फिर अंदर से बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने लगभग 75 वर्ष का एक वृद्ध खड़ा था। चेहरे पे गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। जी कहिए, क्या काम है? हरि प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। क्या आप अर्जुन मिश्र हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। जी मैं ही अर्जुन हूँ। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने झोले से वो पुराना लिफाफा निकाला, दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और बस इतना कहा, अर्जुन जी मैं बहुत देर से आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसी उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थरथरा उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा। उसी क्षण घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक टिक टिक करके चलने लगी। हरि प्रसाद और अर्जुन दोनों एक साथ उस घड़ी की ओर देखने लगे। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया। उसने धीमे स्वर में बोला, डाक बाबू, ये घड़ी तो 30 साल से बंद है। टिक टिक की आवाज और स्पष्ट हो गई और फिर अचानक चमेली की खुशबू उस कमरे में फैलने लगी। श्रोतागण, क्या ये केवल संयोग था या किसी ने सचमुच समय को फिर से चलाना शुरू कर दिया था? क्या मीरा की कहानी अब खुद अपने शब्दों में सुनाई जाएगी? जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सजा मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो इंतजार होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। 32 साल, 384 महीने और 11,000 से भी ज्यादा दिन अगर कोई किसी का इंतजार करे तो क्या प्रेम बचा रहता है या सिर्फ आदत बन जाती है? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। हर शब्द जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। पत्र समाप्त हुआ लेकिन अर्जुन उसी कागज को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ रोते रहे। हरिप्रसाद ने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, बोला, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, नहीं डाक बाबू, आज मुझे बोलने दीजिए। 32 साल से जो शब्द मेरे भीतर कैद है, आज उन्हें बाहर आने दीजिए। मीरा, मीरा तुम्हें याद है, तुम कहती थी अगर कभी हम बूढ़े हो गए तो शाम को इसी बरामदे में बैठकर बारिश देखेंगे। मैंने ये बरामदा कभी नहीं बदला। हर साल इसकी टूटी हुई कुर्सी ठीक करवाई क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम आओगी और फिर मुझे बहुत डांटोगी। अर्जुन, तुमने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पता है मीरा, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा दिल हर बार कहता था नहीं, मेरी मीरा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर लौटेगी क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। अर्जुन ने खत को चूम लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने लिखा है तुम मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मीरा, कभी कभी किसी को उसकी सांसों से अलग करके क्या बचाया जा सकता है। मैं जिंदा था लेकिन जिया नहीं, लोग मुझे अकेला कहते रहे, उन्हें क्या पता मैं अकेला था ही नहीं। हर शाम मैं तुमसे बातें करता था, तुम्हारे हिस्से की चाय भी बनाता था। आज भी रसोई में 2 कप रखे हैं। हरिप्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन ये खत मेरी नजर में आ जाता तो शायद। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं डाक बाबू, आज अपने आप को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। अगर ये खत पहले आ जाता तो शायद मैं मीरा को कभी जाने ही नहीं देता और तब हर दिन वो अपने दर्द के साथ मरती रही। हरिप्रसाद फूट फूट के रो पड़े, लेकिन एक डाकिये की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं हार गया, मैं अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे, नहीं आप हारे नहीं हो, आप तो आज भी एक प्रेम कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। घड़ी में 12 बज गए। 12वीं घंटी बजते ही पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज जैसे किसी ने धीमी कर दी हो। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे कांपने लगी और तभी वही चमेली की भीनी सी खुशबू जो पिछली रात हरिप्रसाद के घर आई थी पूरे कमरे में फैल गई। हरिप्रसाद ने चौक के चारों ओर देखा, अर्जुन क्या तुमने? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, उनके होंठ कांपे। हाँ वो आ गई है। हरिप्रसाद ने घबरा के पूछा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? अर्जुन मुस्कुराए, अरे ये तो वो अपना पसंदीदा गीत गा रही है, जब भी बारिश होती थी वो यही गुनगुनाती थी। गुनगुनाहट धीरे धीरे और पास आने लगी, फिर बरामदे में रखी खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्के से हिलने लगी। हरिप्रसाद का गला सूख गया, उन्होंने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। फिर गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे की ओर दिखाई देने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर आते आते वे निशान सूख नहीं रहे थे, बल्कि हल्की चमेली की पंखड़ियों में बदलते जा रहे थे। हरि प्रसाद ने जीवन में पहली बार डर और शांति दोनों को एक साथ महसूस किया। अर्जुन अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़े। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो बहुत शांत थे। मीरा, अगर सचमुच तुम हो तो प्लीज इस बार छिपना मत। 32 साल से मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूँ, आज एक बार अपनी आवाज सुना दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी अर्जुन के ठीक पीछे एक बहुत धीमी, बहुत परिचित और बहुत ही स्नेह भरी आवाज आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास। इस बार अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोतागण, कहानी अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां शायद प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होने वाला है। क्या सचमुच 32 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है, या रात अभी कोई और रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी खत का सबसे भावुक और सबसे अलौकिक पल अभी बाकी है। सुनते रहिए 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ 32 वर्षों का इंतजार पहली बार आवाज बनकर लौटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में एक युवती खड़ी थी। वही मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी सी प्यारी आंखें, समय जैसे उसके लिए कहीं रुका ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन भागकर उसके पास नहीं गए, वो बस उसे देखते रहे जैसे डर हो कि पलक झपकते ही फिर वो खो जाएगी काफी समय के लिए। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती रही। फिर मीरा मुस्कुराई, इतने सालों बाद भी सिर्फ देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अर्जुन की आवाज टूट गई, अगर बोलने लगा तो शायद रोना बंद नहीं कर पाऊंगा। मीरा की भी आंखें भर गई, रो लो अर्जुन, आज 32 साल का है।

हिसाब आंसुओं से ही पूरा होने दो। अर्जुन एक एक कदम उसकी ओर बढ़े। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस संसार में नहीं हो या तुम मुझे छोड़ के चली गई। सब कहते थे भूल जाओ, लेकिन जिसे दिल हर सांस में महसूस करे उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं हर शाम तुमसे बात करता था, तुम्हारे पसंद का दीपक जलाता था, तुम्हारे पसंद की चाय बनाता था, और जब बारिश होती थी तो एक कुर्सी हमेशा खाली छोड़ देता था। मीरा धीरे से बोली, मैं आती थी अर्जुन। अर्जुन ठिठक के, क्या? हाँ, हर बारिश में जब तुम बरामदे में बैठते थे मैं यही होती थी। जब तुम कहते थे मीरा आज बारिश बहुत हो रही है, तो मैं मुस्कुराती थी। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाती थी, सिर्फ तुम्हारे पास बैठी रहती थी। अर्जुन फूट फूट के रो पड़े। तो फिर मीरा इतना दर्द क्यों दिया, एक बार सामने क्यों नहीं आई? मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अर्जुन तुम्हें जीना था। जब तक तुम्हारी सांसों में किसी का सहारा बनने की ताकत थी, मुझे लौटने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है। हरि प्रसाद चुपचाप कोने में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैंने जीवन में लाखों खत पहुंचाए, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे दो धड़कनों के बीच लिखे जाते हैं, और उनका पता सिर्फ ईश्वर जानता है। मीरा ने सर झुकाकर प्रणाम किया। डाकिया बाबू, अगर आप उस दिन ये खत पहुंचा देते तो शायद अर्जुन मुझे जीने के लिए मजबूर करता। मैं बहुत बीमार थी और मैं हर दिन उसे टूटते हुए देखती। आज जो कुछ हुआ वो शायद ईश्वर की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर योजना थी। हरि प्रसाद की आवाज भर्रा गई, तो क्या प्रेम का अंत यही होता है? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबूजी, सच्चे प्रेम का अंत नहीं होता, उसकी प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। मीरा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन आज चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर अचानक उन्होंने हरि प्रसाद की ओर देखा। डाक बाबू? जी बेटा, अगर कभी ऊपर भी डाक खाना हुआ तो वहाँ भी नौकरी कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत से खत अब भी पहुँचना बाकी हो। तीनों हंस पड़े और उसी हंसी में तीनों की आंखें भीग गई। मीरा ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब वहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों साथ होंगे। धीरे धीरे कमरे में एक उजली शांत रोशनी फैलने लगी। हरि प्रसाद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हो। गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाजा खुला देखा। सब अंदर पहुंचे। अर्जुन अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, सिर हल्का सा पीछे टिका हुआ था, होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो शायद 32 वर्षों से कहीं खो गई थी। उनकी मुट्ठी बंद थी। जब हरि प्रसाद ने धीरे से उसे खोला तो उसमें वही पुराना खत था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कल रात वहाँ नहीं थी। उस पे लिखा था, डाक बापू धन्यवाद, आपने मेरा खत नहीं पहुँचाया, आपने मेरा इंतजार खत्म किया है, धन्यवाद मीरा। हरि प्रसाद की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने खत को अपने माथे से लगाया। धीरे से बोले, आज मेरी 40 साल की नौकरी सफल हो गई। उसी समय बरामदे से हवा का एक झोंका आया, खाली कुर्सी धीरे से अपने आप हिली और चमेली की दो ताजा कलियां अर्जुन के चरणों के पास आकर ठहर गई।
श्रोताओं, हम जीवन भर लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन शायद प्रेम में कोई कभी खोता नहीं। कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमारी यादों में और कुछ हमारी हर बारिश में। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने बरसों से बात नहीं की, तो उसे याद कीजिए। अगर वो इस दुनिया में है तो उसे अपना समय दीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी यादों को अपनी मुस्कान दीजिए, क्योंकि सच्चे प्रेम को आखिरी खत की जरूरत नहीं पड़ती। वो दिल से भेजा जाता है और रूह तक पहुंच जाता है। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। अगली मुलाकात तक अपने अपनों से अपनी बातें अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि कुछ खामोशियां पूरी जिंदगी का इंतजार बन जाती है। नमस्कार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

तो मेरा देश है और सब तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसे अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीज़ों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हue उस पद पर आगे गई जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया। और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीजों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी ना भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी, जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो। यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

और गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आर डी वर्मन साहब जी हैं और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी बस, तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में 4 चांस लग गए थे। संगीत

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गाकर के अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके।

शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर यह साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे खयाम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो की गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ए वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया, पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

भारत की कोकिला, स्वरों की देवी लता मंगेशकर दीदी को शत शत नमन। उनकी मधुर आवाज सदा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थी जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी हैं। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूँ आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9 81 9 76। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हजारों तो हुई आज शाम। ना कहो सुर्खी मेरी नकली है तमाम, कल है दिन जो हजारों तो हुई आज शाम। ओ दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर

बिके जवानी बिके बुढ़ापा सब बिकता है डर हो पाता। लूट चुके हो दुनिया सारी इस

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ए जय माताजी ने हम कहीं कहूशू के वाह फरे वादळ फरे ने वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

ready for the ride?

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।